0: घर ही मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

0: नमस्कार आदाब। आज राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी रखे जाएंगे। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के गैर हाजिरी में आया नवमाह अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान जवाब देंगी। सन 2014 से 2024 तक के मुशरस द्वारा बेचे या खरीदे गए हवाई जहाज़ों पर सवाल किए जाएंगे। एमरश्रस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राज रामलगन ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब इन वॉलंटरी शासन के तहत थी तब विमानों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाज़ों को बेचा गया था जबकि रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया। इनसे बड़े नुकसान हुए। राज रामलगन क्रोल जाँच के बारे में भी पूछ रहे हैं। मुशरस में पर्यावरण को लेकर एक बड़ा कदम तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में नए एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू करने पर मंजूरी जताई गई। इस ढांचे के जरिए हवा की किस्म और कारखानों तथा इंसिनरेटरों से प्रदूषित उत्सर्जन पर काबू रखा जा सकेगा। कैथबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते अधिकारी हल ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम करने का इरादा रखते हैं। अगर बहुतों के लिए मेट्रो एक तेज जरिया और कारगर परिवहन है लेकिन कैथबोन के बाशिंदों के लिए शहर में ही आने जाने के लिए ये प्रणाली मसला पैदा करती है। विदेश में ग्रेट ब्रिटेन में गृह सचिव शबाना महमूद कई कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं जो सर के एस थॉमस से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं जिसकी वजह से सरकार के उच्च अधिकारियों में तनाव पैदा हो गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत, कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह और दोपहर बाद बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। खासतौर पर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटों में कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा। आज रात घने बादल होंगे, ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुन्दर खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊँची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में। इसी वजह से दूर समुंदर में ना जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 23 से 25, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह 6:30 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:42 पर सूरज ढल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
3: सुबह के 6:04 होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई ये विज्ञप्ति। विलबाग दिपिने के आसपास के इलाके जिनमें हैं पिचिजूली और गोंद गुजाली, इन इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 12 मई यानी आज सुबह 9:30 से लेकर दिन के 2:30 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।

0: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम एवार्ड 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। माइक पर आप सभी का साथ दे रही है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। 12 तारीख मई महीना 2026 का साल और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6:05:45 मंगलवार की सुबह है और आप सभी का साथ हम दे रहे हैं और अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में रहेंगे। आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे संतवाणी कार्यक्रम के साथ और ये पाक्षिक कार्यक्रम कबीर मंदिर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य श्यामदास जी। कुछ सदाबहार गीतों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तुरंत उसके बाद और ठीक 6:30 बजे हम जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ। समाचारों की समाप्ति के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का ये दिन आप सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, मंगलमय हो और ढेर सारी ऊर्जा आपके साथ आगे बढ़े। तो चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के इस सुविचार के साथ। भगवान हर जगह है। भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, व अर्थात वायु, अ अर्थात अग्नि, न अर्थात नीर। भ ग वा न बने भगवान। ईश्वर पर श्रद्धा रखें और इसी के साथ आइए आचार्य श्यामदास जी का स्वागत करते हैं कबीर मंदिर द्वारा ये कार्यक्रम संतवाणी में।
1: संतवाणी आपका अपना कार्यक्रम, आइए सुनते हैं संतों की वाणी में।

परम श्रद्धालु श्रोतागण, यह कार्यक्रम कबीर मंदिर कबीर धर्म महासभा बोनतेर की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है कबीर का घर, अर्थात आत्मस्वरूप की स्थिति। सद्गुरु कबीर साहब एक साखी के माध्यम से कहते हैं कि कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल पाँव न टीके पिपील का, तहाँ खलकन लादे बैल। मनुष्य की शाश्वत स्थिति उसके अपने सर्वोच्च स्वरूप चेतन में है, और उस तक पहुँचने का रास्ता फिसलन भरा है। जहाँ चींटी के पैर भी नहीं टिकते, वहाँ संसार के लोग बैल के समान बैल के पीठ पर लाद कर वहाँ पर जाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से बताते हैं कि जीवन की सर्वोच्चता शिखर क्या है। सारी वासनाओं को छोड़कर अपनी चेतना में ही सदैव स्थित रहना जीवन का सर्वोच्च शिखर है। इस जीव की अपनी नित्य स्थिति उसके अपने

चेतन स्वरूप में है। जीव का अपना चेतन स्वरूप ही तो सर्वोच्च है। इस स्थिति में जो पहुंच जाता है वह सदैव के लिए कृतकृत्य हो जाता है। परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि इसका रास्ता रपटीला अर्थात फिसलन से भरा है। पहली बात तो यह है कि लोग नाना मान्यताओं कल्पनाओं एवं भ्रांतियों में पड़े हैं। वे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वे परमात्मा और मोक्ष को भी अपने से अलग ही देखते रहते हैं। इसीलिए स्वरूप का सच्चा बोध होना ही दुर्लभ हो जाता है। दूसरी बात है विषय वासनाओं का त्याग। अच्छी संगत और दृढ़ पुरुषार्थ के बिना मन एकदम निर्विषय नहीं होता। साधना में निरंतरता और सावधानी की महती आवश्यकता है। वस्तुतः सावधानी ही साधना है। थोड़ा सा असावधान हुए कि विषयों का चिंतन आ सकता है और विषयों का चिंतन करने वाला मन स्वस्वरूप चेतन में नहीं स्थित हो सकता। इसीलिए स्वरूप स्थिति का मार्ग फिसलन से भरा है। परंतु इससे घबराने की जरूरत नहीं है। खतरों को ना बताया जाए तो सावधानी कैसे आएगी। वस्तुतः खुद से खुद तक पहुंचने का रास्ता स्वच्छ है, उसमें फिसलन तो है ही नहीं। फिसलन तो विषय वासनाओं का रास्ता है, जिससे मन वाणी तथा कर्मों से विषय वासनाओं का त्याग कर दिया उसके जीवन में स्वरूप स्थिति का मधु है, अमृत है। यदि व्यक्ति ठीक से समझकर विषयों से सावधान हो जाए और स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति के मार्ग पर चलने लगे तो कृतार्थ हो जाए। राजा होकर कोई धूर पर तथा कचड़े में दाने क्यों बिनेगा। स्वरूप स्थिति का साम्राज्य पाकर विषयों के कीचड़ की ओर नज़र भी क्यों उठाएगा। जिसकी निर्विषय स्वरूप स्थिति का सिंहासन मिल गया वह आनंद कंद हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, पाँव न टीके पिपील का तहां खलकन लादे बैल। संसार के लोग समझदार नहीं हैं। जिस रास्ते में चींटी के पैर न जमते हो वहां बैल ले जाकर व्यापार करने की बात ही नहीं सोची जा सकती। अभिप्राय यह है कि स्वरूप स्थिति एवं मुक्ति होती है सारे विषयों का त्याग करके। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए लोग नदी स्नान, मूर्ति दर्शन, व्रत, उपवास, हवन, तर्पण, नाम संकीर्तन आदि करते हैं। यह ठीक है कि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए सात्विक उत्साह उत्पन्न करते हैं, परंतु इतने ही में रुक जाना अविवेक है। अलग से मोक्ष पाने का भ्रम तथा ईश्वर दर्शन की शनक यहाँ पर बैल के समान बैल पर लाद कर व्यापार करने जैसी ही बात है। जहाँ चींटी के पैर ना टिकते हो, मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जो कहीं बाहर से मिले। ईश्वर कुछ ऐसा नहीं जिसके दर्शन होते हो, दर्शन रूप विषय के होते हैं जो जड़ माया है। वस्तुतः सब वासनाओं को छोड़कर चेतन का अपने आप शांत हो जाना ही मोक्ष है। यही ईश्वर की प्राप्ति है। या और कुछ कहना चाहो तो इसे कह सकते हैं। इसके अलावा परमार्थ की कोई परिनिष्ठित परिभाषा नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, बिन देखे वह देश की बात कहे सो क्रूर, आपो ही खारी खात हैं बेचत फिरे कपूर। ज्योति दर्शन, अमृत, वल्लरी पान, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, अनाहतनाद, शब्द श्रवण आदि करके हठ योगी लोग इंद्रियजन्य विषयों एवं जड़ भावों के भीतर ही अपना अनुभव रखते हैं। दूसरी तरफ
शास्त्र ज्ञानी एवं वाचिक ज्ञानी लोग भी विषय वासनाओं एवं राग द्वेष में ही रात दिन उलझे रहते हैं, परंतु ये लोग अपने व्याख्यान में जीवन मुक्ति मोक्ष की बात कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि बिना जाने ये सब कहना मूर्खता कायरता का लक्षण है। स्वयं उस तत्व को ठीक से समझो और साधना द्वारा उस दशा में स्थित हो, तब उसे साधिकार दूसरों के सामने कहने के अधिकारी बन सकते हो। क्योंकि साहेब कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, ओ तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख ही परख ही कर लेव। सभी लोग शब्द ही शब्द को अपना उपास्य एवं लक्ष्य कहते हैं, परंतु व्यक्ति का जो उपासनीय एवं लक्ष्य है वह तो शब्दों के जालों से सर्वथा रहित शुद्ध चेतन है। लोग ईश्वर, ब्रह्म, सोहम, खुदा, गाड आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु क्या वह परम तत्व शब्द है? वह तो शब्द विदेह है। वह शब्द काया से रहित है, अर्थात वह शब्द स्वरूप नहीं, वह जीव पर आने वाली वस्तु नहीं, किंतु उसकी सत्ता से शब्द बोले जाते हैं, शब्द सुने जाते हैं, दृश्य देखे जाते हैं, गंध सूंघे जाते हैं, स्पर्श ग्रहण किए जाते हैं। वह शब्द नहीं, शब्दों का ज्ञाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने इसको समझने के लिए निरख परख का रास्ता बताया है। निरख का अर्थ होता है देखना, परख का अर्थ होता है परीक्षा करना। निरख शब्द का प्रयोग कर यहाँ आँख से देखने की बात नहीं है, निरख परख का संयुक्त अर्थ है गहराई से समझना। विषयों से बाहर लौटकर जब व्यक्ति अंतर्मुख होता है तब वह अपने निरख परख कर पाता है। जब साधक संकल्पों का त्याग कर देता है तब उसे अपने स्वरूप का पूर्ण अनुभव होता है। ईशावास्योपनिषद में कहते हैं, लिखा है, हिरण्यमेव पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्, अर्थात सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका है। रमणीय प्रतीत होने वाले विषयों के स्मरण से स्वरूप ज्ञान आच्छादित रहता है। उसके हटने पर साधक स्वरूप स्थिति का साम्राज्य पाता है। जो अपने स्वरूप को ना समझकर केवल शब्दों के पीछे भागते हैं, उनके लिए साहेब कहते हैं, पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ी बसे गांव, बिना फूल भंवरा रस चहे, कछु बिरवा को नाव। अपनी आत्मा को परम तत्व न समझकर शब्द जालों में पड़े हुए जो अलग परमात्मा या मोक्ष खोजते हैं, वे मानो पत्थर पर हल चलाना चाहते हैं, घोड़े पर चढ़कर उस पर गांव बसाना चाहते हैं, और उनका मन भंवरा बिन फूल के रस चाहता है। पत्थर के ऊपर हल नहीं चलता, चंचल घोड़े पर गांव नहीं बसता, बिन फूल के भंवरे को रस नहीं मिलता, वैसे इन बातों का होना असंभव है। स्वरूप ज्ञान तथा स्थिति छोड़कर एवं स्वात्मराम में रमण से हटकर कहीं भी बाहर सुख शांति नहीं मिल सकती है। लोग पुराणों, महाकाव्यों एवं धर्मशास्त्रों की बातें पढ़ते और सुनते हैं और उनमें वर्णित मनोरम दृश्यों में खो जाते हैं। सभी परंपरा वालों ने अपने मन को बढ़ाने के लिए स्वर्ग से सुंदर सुंदर सा रूप खींचा है। लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि जब तुम स्वर्ग में पहुँचोगे तब तुम्हारी आँखों की रोशनी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम ईश्वर को देख सकोगे। ऐसे लोगों की बुद्धि कितनी दीन है यह सहज समझा जा सकता है। यह ठीक से समझना है कि हमारे चित्त की निर्मलता के समान कोई स्वर्ग नहीं है, शांति के समान कोई भोग नहीं है, संत जन के समान कोई देवता नहीं है, जीव के समान कोई शिव नहीं है, अर्थात आत्मा के समान कोई परमात्मा नहीं है। मन की कल्पनाओं को छोड़ो, अपने स्वरूप को समझो और अपने आप में रमो। आज का वक्तव्य इतना ही। बंदगी साहेब।

हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर इसका हिसाब भी होगा। बस श्रद्धा रखिए, ईश्वर में केवल श्रद्धा ही हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सहायक रूप होता है। फिल्म शागिर्द का ये गीत लता जी की प्यारी सी आवाज में गूंजा रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6:26 होने जा रहे हैं। बिल्कुल, सब सुबह का जो समय होता है सभी बहुत ज़्यादा गतिवान होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार से अपना काम अपने कामों में लग जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, सुबह होते ही ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है, और इसी के साथ हम आपका साथ दे रहे हैं। तो चलिए, लाजवाब गीतों के साथ सजाई हुई आज की यह सुबह आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और किसी ने क्या खूब लिखा है कि खुद के करीब रहो, खुद के करीब रहो, हमेशा खुश रहेंगे। दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद की कई बार हमारे जीवन में दुख का कारण बनती है। चलिए, फिल्म हम दोनों का ये लाजवाब बहुत ही प्रसिद्ध गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। वैसे आपको ये भी याद दिला दें कि यही गाना हमें जोड़ेगा सुबह के 6:30 के समाचारों के साथ। तो फिलहाल अब तक के लिए इतना, मिलते हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आज की तारीख 12 मई 2026 है। नमस्कार, आदाब। समाचार बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी में आज अगियान नवोमागी राष्ट्रसभा में उनकी भूमिका निभाएंगी। पीएमक्यूटी सत्र के प्रश्न, कार्यवाहक प्रधानमंत्री को संबोधित। राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत थी तब विमानों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाजों को बेचा गया था, जबकि रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया। एमोरशस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राजराम लगन ने दी ये जानकारियां। एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू किया जाएगा। इस ढांचे के जरिए हवा की किस्म और कारखानों एवं इंसिनरेटरों से प्रदूषित उत्सर्जन को पर काबू रखा जा सकेगा। और ग्रेट ब्रिटेन में राजनीतिक तलातुम, सर केस टॉमस से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। नमस्कार और आदाब। आज राष्ट्रसभा के कार्य जारी रखे जाएंगे। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम की गैर हाजिरी में अगियान नवोमागी अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान जवाब देंगी। सन 2014 से 2024 तक एमोरशस द्वारा बेचे या खरीदे गए हवाई जहाजों पर सवाल किए जाएंगे। लुवीना सूफी और प्रणव विहार की रिपोर्ट पर पूजा सुकालू का विवरण।
2: घोंबे पुद्रदो के सांसद नीतीश बिजान ने 2014 से 2024 के बीच एयरमार्शल्स द्वारा बेचे गए विमानों, उनकी सेवा अवधि तथा खरीदे या लीज पर लिए गए विमानों के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने कुछ विमानों के सेवा से बाहर रहने की घटनाओं की संख्या, उनके कारण और इन घटनाओं की अवधि के बारे में भी जानकारी चाही है। याद रहे कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2021 के बीच वॉलंटरी प्रशासन के दौरान एयर मार्शल्स के 5 विमान बेच दिए गए थे, जबकि उनकी जगह 2 पुराने एयरबस A330 विमान लीज पर लिए गए थे, जिनमें तकनीकी समस्याएं भी थी। फ्लीट प्रबंधन की फोरेंसिक जांच अंतर्राष्ट्रीय क्रॉल नामक फर्म द्वारा की गई थी। इसके अलावा एयर मार्शल्स और ग्रांट टॉन्टन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के बीच हुई लेन देन के मामले में ग्रांट टॉन्टन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ और एयर मार्शल्स के पूर्व प्रशासक सातव हाजी अब्दुल्ला को पिछले 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
1: एमोरशस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राजराम लगन ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत थी तब जहाजों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाजों को बेचा गया था, जबकि रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया। इनसे बड़े नुकसान भी हुए। राजराम लगन क्रोल जांच के बारे में भी पूछ रहे हैं। उनको सुनते हैं, लुवीना सूफी ने उनसे बात की।
3: Bien et la transparence, c'est pas nous pas pécose 5, nous pécose 10 sous, nous pécose pas milliards d'euros qui finalent. Et à Mauricheuse, je vous dis, les papes qui ont desservi beaucoup de destinations malgré qu'ils finalement reprise avec des problèmes qui n'ont pas Moyen-Orient et n'ont pas d'opportunités qui peuvent venir. Mais nous pécose, nous pécose avions, finis aussi délester beaucoup de personnel qualifié. C'est un scandale, mot pensé. Tant qu'il n'y a pas de preuves et de clarité de tout ce qu'on a fait là, mais mot pensé, la question au Parlement s'impose. Moi, mot pensé, qui même si vous avez un comité parlementaire pour faire la lumière sur tout ce qui ne passait sous le règne de l'administration volontaire, même sous EHL après, jusqu'à ce qu'il y ait un Mauritius délisté en le 31 mars 2022 de la bourse de Boris.
1: राष्ट्रीय सभा में मॉरिशस और चीन के व्यापारिक संबंधों पर सवाल जवाब होंगे। इसके अलावा बिजली के दामों में बढ़ोतरी, स्पोर्ट्स में शासन की बात, सार्वजनिक स्वास्थ्य और विदेशी कामगारों पर बहस की जाएंगी। लो एंड ऑर्डर को लेकर भी कई सवालात पूछे जाएंगे, खासतौर पर बोबासन कैदखाने में 2 कैदियों की मौत के सिलसिले में। लुवीना सूफी, पूजा सुकालू।
2: 3 प्रश्न जेल व्यवस्था से संबंधित है। रोड्रिक्स के सांसद जैनेट ऑगियत मनन ये जानना चाहती है

0: कि दिसंबर 2025 से बोबासा जेल में कितने कैदी मृत पाए गए, साथ ही इन मौतों का कारण प्राकृतिक या संदिग्ध थे और कैदियों के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदम कौन कौन से हैं। सांसद अनाबेल सवाबादी अंतरिम प्रधानमंत्री आरियन नावामारी से जेफ एलेक्स पेरिन की 1 मई को हुई मृत्यु के संबंध में पूछताछ करेंगी, साथ ही जांच की प्रगति और संभावित न्यायिक जांच के खोलने के बारे में भी सवाल करेंगी। 5 मई को बोबासा जेल में जान सोमी की मृत्यु का मामला भी सांसद रुबना दोगियाओ द्वारा उठाया जाएगा। और आखिर में सांसद रोशन जमन ये जानना चाहेंगे कि 2014 से अब तक कितने पुलिसकर्मी मादक पदार्थों के तस्करी के आरोप में गिरफ्तार या निलंबित किए गए, कितनी सजा हुई है और अन्य मामलों की प्रगति की स्थिति क्या है।
1: विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मुर्शन परिवर्तन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के सिलसिले में पर्यटन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर रोशनी डालती हैं। पर्यटन सेक्टर की स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए माध्यम और दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश पेश की गई है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के समन्वयन के वास्ते एक क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया गया है। यचना मिश्रा।
2: यदि ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील बना रहता है तो साल 2050 तक पर्यटन से होने वाले कारोबार में 17% तक की गिरावट आ सकती है। खतरे अनेक हैं, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, पीने योग्य पानी की कमी तथा तटीय रिसाव। IFC के विशेषज्ञों और स्थानीय ऑपरेटरों के सर्वेक्षण के अनुसार ये खतरे वास्तविक हैं और इन पर जल्द से जल्द ध्यान देने की आवश्यकता है। मौजूदा मॉडल को बदलना होगा ताकि अधिक टिकाऊ और उच्च आमदनी वाली पर्यटन प्रणाली को बढ़ावा मिले।
3: दिस रिपोर्ट कैन हेल्प।
2: इस रिपोर्ट से मॉरिशस एक सकारात्मक चरण से ज्यादा विकास की ओर बढ़ सकता है। अगला चरण मात्र ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करना नहीं बल्कि धनराशि बढ़ाना भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन क्षेत्र को नया आयाम देना चाहिए। पर्यटकों को मात्र समंदर ही नहीं बल्कि संस्कृति, प्राकृतिक विविधता और अलग अनुभवों की ओर आकर्षित करना होगा। इन खतरों का सामना करने के लिए रिपोर्ट में तटीय सुरक्षा, पर्यावरण प्रिय बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन में अधिक निवेश की सिफारिश दी गई है, लेकिन वित्तीय संसाधनों तक पहुंच अब भी एक बड़ी चुनौती है।
4: 90% nous l'offre d'hébergement trouve sur les côtes.
2: 90% आवास समुद्री इलाकों में हैं। पर्यावरण संकट के बारे में सब जानते हैं। 2075 तक 50% तट लुप्त हो जाएंगे। ये आपात स्थिति है। टिकाऊ विकास मात्र कहने के लिए नहीं बल्कि इसके पीछे एक ठोस योजना कायम करना जरूरी है जो निर्धारित करे कि आगे क्या किया जाए। सरकार की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक समावेशी उत्तरदायित्व भी है। हालांकि मॉरिशस ने कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी आकर्षण क्षमता बनाए रखी है, आगमन और कारोबार दोनों के संदर्भ में, लेकिन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसे अपने पर्यटन क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करना होगा।
1: मॉरिशस में पर्यावरण को लेकर एक बड़ा कदम तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में नए एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू करने पर मंजूरी जताई गई। इस ढांचे के जरिए हवा की किस्म और कारखानों एवं इंसिनरेटरों से प्रदूषित उत्सर्जन पर काबू रखा जा सकेगा। शैलिनी अबन, पूजा सुकालू।
0: डाइऑक्सिन, फुरान, भारी धातुएं और मर्क्यूरी, ये अत्यधिक टॉक्सिक पदार्थ बेहद कम स्तरों पर मापे जाते हैं। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रति क्यूबिक मीटर 0.1 नैनोग्राम तक, और इन्हें कैंसर, हार्मोनल डिसऑर्डर और विकास संबंधी समस्याओं के बढ़ते जोखिम से जोड़ा जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम ये है कि अब इंसिनरेटर को न्यूनतम 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चलाना होगा ताकि इन टॉक्सिक कंपाउंड्स को सीमित किया जा सके। ये आवश्यकता यूरोपीय संघ की प्रथा

0: आवश्यकताओं के अनुरूप है। उद्योगों को इन नए मानकों का पालन करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। ये अपेक्षाकृत छोटा समय सीमा है जो कभी कभी लाखों रुपए तक की लागत वाले फिल्ट्रेशन तकनीकों में निवेश की आवश्यकता पैदा कर सकता है। हालांकि ये सुधार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इस दिशा में जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन याद दिलाता है कि दुनिया का अधिकांश आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेती है, ये आर्थिक चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। सरकार हालांकि कुछ मामलों में छूट देने की संभावना रखती है जो इन नए मानकों के प्रभावी अनुपालन को लेकर सवाल खड़ा कर सकता है।
1: कैथरबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते अधिकारी हल ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम करने का इरादा रखते हैं। अगर बहुतों के लिए मेट्रो एक तेज जरिया और कारगर परिवहन है, लेकिन कैथरबोन के बाशिंदों के लिए शहर में ही आने जाने के लिए ये प्रणाली मसला पैदा करती है। पीक वक्त पर ट्रैफिक की वजह से बहुत मुश्किलें होती हैं। अगर एक इमरजेंसी हो तो ये स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बन जाती है। कैथरबोन की मेयर गुदी ब्रायन केनू का कहना है कि इस हालत में सुधार लाने पर गौर किया जा रहा है। देश में बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से सुरक्षित रखने के मकसद से मुर्शिद टेलीकॉम ने कल माइटी प्रोटेक्ट पेरेंटल कंट्रोल सेवा की लॉन्चिंग की। इसके तहत नौजवानों को इंटरनेट और स्क्रीन के इस्तेमाल के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये पहल बढ़ते ऑनलाइन खतरों को लेकर माँ बाप की बढ़ती चिंताएं दूर करने का मकसद रखती है। उर्वशी भिखारी बंजन, यचना मिश्रा।
2: डिजिटल दुनिया से जुड़े खतरे जैसे अनुचित सामग्री, साइबर उत्पीड़न और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग कई अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
3: Aster avec Mighty Protect Parental Control, nous l'esprit plus tranquille.
2: Mighty Protect Parental Control application बच्चों के इंटरनेट उपयोग को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक समाधान प्रदान करता है।
4: Avec ça, appelant, les capables de dire qu'il est à ses enfants pour gagner accès à un téléphone.
2: इस एप्लीकेशन से माता पिता निर्धारित कर सकेंगे कि बच्चे कब इंटरनेट का प्रयोग करें, दिन के दौरान बच्चा कहाँ है, दूसरे ऐप पर जाने से उन्हें रोकना सब संभव है। ये सेवा माता पिता को कई उपकरणों पर अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगा।
3: Et de ce fait, Zodi, Aster, votre parent, a accès à un tool que vous êtes capable d'installer dans votre mobile devices, Android.
2: अभिभावक इस टूल को अपने मोबाइल, पीसी आदि पर इंस्टॉल कर सकते हैं। 15 डिवाइसेस को सुरक्षित किया जा सकता है।
3: Cela comme un parent, vous pouvez protéger up to 15 devices.
2: यह एप्लीकेशन 2 पैकेज में उपलब्ध है।
1: क्या मीडिया के लिए मॉरिशस में एक ओम्बुड्स पर्सन होना चाहिए? इसी हफ्ते नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और पूर्व डीपीपी वकील सत्यजीत भुलेल ने फ्रीडम ऑफ प्रेस वैश्विक सप्ताह के संदर्भ में पत्रकारों के लिए मीडिया ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान फिर से ये मुद्दा उठाया। वकील भुलेल ने सन 2013 में जुरिस्ट जियोफ्रे रॉबर्टसन की मीडिया लॉ एंड एथिक्स इन मॉरिशस नामी प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिश का हवाला दिया। इस दस्तावेज में एक आज़ाद मीडिया ओम्बुड्स पर्सन की बात की गई, जिसकी जिम्मेदारी ये होगी जनता की शिकायतें लेना, गलतियों में सुधार लाना और जर्नलिज्म पेशे को बाकायदगी से निभाने का दर्ज देना। इसके जरिए न सिर्फ मीडिया पर नियंत्रण रहेगा बल्कि उनकी आज़ादी की हिफाजत करते हुए उनकी क्रेडिबिलिटी को मजबूत किया जाएगा। और अब नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुराने बयानों को तर्क करने की मांग की, यानी अफ्रीका के लिए दूसरों का फैसला। अफ्रीका राष्ट्र एवं सरकारी नेताओं के सामने इमैनुएल माक्रों ने बड़ी मजबूती के साथ ये बात कही। ग्रेट ब्रिटेन में गृह सचिव शबाना महमूद उन कई कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं जो सर केस थॉमस से उनके इस्तीफे का ऐलान करने की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के कुछ उच्च अधिकारियों में तनाव पैदा हो गए हैं। ये समझा जा रहा है कि कैबिनेट में महमूद उन लोगों की माइनॉरिटी में हैं जो चाहते हैं कि सर के अपने पद छोड़ने का टाइम टेबल दें। आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई जाएगी। यूरोपीय संघ के 27 विदेश मंत्रियों

ने कल इसराइलियों के लिए नई पाबंदियों पर सहमति जताई, क्योंकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 में गजा जंग शुरू होने के बाद इसराइलियों के हमलों में काफी तेजी आ गई। ईयू के विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कदम उठाया जाए। आम हालत, कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दोपहर बाद बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो में। खासतौर पर कोहरे छाए रहेंगे, आज रात घने बादल होंगे और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 23 से 25, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 5:42 पर सूरज ढल जाएगा।

0: आज की बड़ी खबर एक बार फिर से पेश है। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी में आज अगियान नवमागी राष्ट्रीय सभा में उनकी भूमिका निभाएंगे। पीएमक्यूटी सत्र के प्रश्न, कार्यवाहक प्रधानमंत्री को संबोधित। राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत थी तब विमानों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाजों को बेचा गया जबकि रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया। एमरसस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राजराम लगन ने दी ये जानकारियां। एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू किया जाएगा। इस ढांचे के जरिए हवा की किस्म और कारखानों तथा इंसिनरेटरों से प्रदूषित उत्सर्जन पर काबू रखा जा सकेगा। और ग्रेट ब्रिटेन में राजनीतिक तलातुम, सर केस थॉमस से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी कादिया कुदादीन की मदद मिली है, बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार सुनिए। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: सीबी रोड गुडलैंड्स में 87 साल की 87 years old श्रीमती मुतिया परमा, पैदाइशी नाम बोईरामबोली जो दानू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके घर सीबी रोड गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहोश गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM एवेन्यू सामी मोका में 47 साल के 47 years old श्री विक्रम सुरनाम जो विक्रम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। आज सुपहर तीन बजे इनके पिता ईश्वरलाल सुरनाम के घर एवेन्यू सामी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्तांस साहिबिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में 46 साल की 46 years old श्रीमती कल्याणी देवी कार्तिक पैदाइशी नाम सुंदर जो कल्याणी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनकी रिश्तेदार बुनियाद संध्या के घर रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM ब्रांच रोड लालमाची में 78 साल की 78 years old श्रीमती रुमावती बसोवा जो रुमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके पति रामानंद सिंह बसोवा के घर ब्रांच रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM मौसलमा औजी फ्लैक में 72 साल की 72 years old श्रीमती मांगती हरदोस पैदाइशी नाम नौरंग जो मिलानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके पति सूरजलाल हरदोस के घर मौसलमा औजी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM पावे रोड पिचराफे में 72 साल के 72 years old श्री ज्ञानदत्त बोला जो ज्ञानदत्त के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज डेढ़ बजे इनकी पत्नी नालिनी बोला के घर पावे रोड पिचराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्कार पिचराफे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 1:30 PM एडूलेन ओरिएटा वाकुआ में 71 साल की 71 years old श्रीमती दुर्गावती पौसन पैदाइशी नाम शेर सिंह जो शालू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 12 बजे इनके बेटे आशीष पौसन के घर एडूलेन ओरिएटा वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट नून रॉयल रोड क्लेमोसिया में 58 साल की 58 years old श्रीमती कुंती वुसाई पैदाइशी नाम चितामन जीउल जो कल्याणी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनके बेटे अखिलेश वुसाई के घर रॉयल रोड क्लेमोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्लेमेंसिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बुजुलेन पायुत कैथ्रोबोन में 72 साल के 72 years old श्री भानुदत्त बटू, श्री भानुदत्त बटू जो आनंद बटू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज दो बजे इनके घर बुजुलेन पायुत कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वामामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रेलवे रोड केवल नगर बेलरीव में 84 साल की 84 years old श्रीमती बसंती बागीरथी, श्रीमती बसंती बागीरथी पैदाशी नाम तोकोई जो सांता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके बेटे धीरज बागीरथी के घर रेलवे रोड केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड पायुत कैथ्रोबोन में 93 साल के 93 years old श्री हे रामन अनूप जो जगदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे के घर रॉयल रोड पायुत कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लॉश में 69 साल की 69 years old श्रीमती पारो सियुनट पैदाशी नाम सुबा जो पारो के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके पति धनराज सियुनट के घर शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रामलोल स्ट्रीट कोंकारोल रिविया दी क्रियोल में 70 साल की 70 years old श्रीमती सुमित बर्ना पैदाशी नाम लड्रू जो सरोज के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज डेढ़ बजे इनके पति किशुन बर्ना के घर रामलोल स्ट्रीट कोंकारोल रिविया दी क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बो लेन में बर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। जॉर्ज विक्टर किवन पोर्ट लुई में 69 साल के 69 years old श्री जयन कुमार पुलबसिया जो जयन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और काली माई काशी के अध्यक्ष थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 12 बजे इनके घर नंबर 4 जॉर्ज विक्टो केवेंस पोर्ट लुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:00। रॉयल रोड लालमाची में 72 साल के 72 years old श्री सच्चिदानंद रामास्वामी जो सत्यानंद कॉन्ट्रैक्टर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनकी पत्नी मनीता रामास्वामी के घर रॉयल रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदेमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टोटनहम हॉटस्पर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अच्छा मौका था रिलेगेशन जोन से 4 अंक ऊपर जाने के लिए, पर मौके का फायदा नहीं उठा पाए द स्पर्स। लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ 1-1 का ड्रॉ मैच रहा, आगे जाकर पछताने वाला रिजल्ट हो सकता है। टोटनहम हॉटस्पर का गोल टेल ने स्कोर किया। उसी टेल ने अपनी टीम को गरम तेल में फेंक दिया एक पेनाल्टी कंसीड करके। कैल्वर्ट लेविन ने लीड्स के लिए इक्वलाइज किया। टोटनहम हॉटस्पर के गोलकीपर किंस्की ने कई बार अपनी टीम को बचाया। प्रकार रिलेगेशन बैटल में टोटनहम हॉटस्पर अभी वेस्टहैम से केवल 2 अंक आगे हैं, बचे हैं 2 मैच। चेल्सी खेलेगा टोटनहम हॉटस्पर के खिलाफ, यानी टोटनहम हॉटस्पर के लिए एवे मैच, और टोटनहम हॉटस्पर का आखिरी मैच होगा एवर्टन के खिलाफ, ये होम मैच होगा। वेस्टहैम यूनाइटेड जाएगा न्यूकासल यूनाइटेड के मैदान में, और उसका आखिरी मैच होगा लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ। कल एक मैच है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, और फ्राइडे को शुक्रवार को एस्टन विला लिवरपूल से लोहा लेगा। इस सैटरडे को, इस शनिवार को प्रीमियर लीग के मैच नहीं है, क्योंकि एफए कप का फाइनल खेला जाएगा मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच। संडे को कई मैच हैं। आर्सेनल खेलेगा अगले मंडे को, अगले सोमवार को बर्नले के खिलाफ। प्रीमियर लीग में आने के लिए प्रमोशन प्लेऑफ के फाइनल में पहुंची हल सिटी की टीम। सेमीफाइनल के रिटर्न लेग में एवे जाकर हल निकल पाया। मिलवॉल की दीवारें कमजोर थी, 2-0 से हल की जीत। आज साउथम्पटन का मुकाबला मिडल्सब्रो से है। फर्स्ट लेग में मैच ड्रो गया था 0-0। इटली के सेरी आ में नापोली की हार, बोलोनिया ने उसे 3-2 से हराया। स्पेन के ला लीगा में रायो वालेकानो और जिरोना के बीच मैच ड्रो 1-1। आज 3 मैच खेले जाएंगे। सेल्टा वीगो लेवेंटे, बेटिस एल्चे और ओसासुना एटलेटिको मैड्रिड। इंडियन सुपर लीग में कल ईस्ट बंगाल और पंजाब के बीच मैच ड्रो 0-0। आज मोहन बगान का मुकाबला इंटर काशी से होगा। प्रीमियर लीग सीजन समाप्ति पर है। नए खिलाड़ियों की तलाश में कई टीमें धार तेज करने लगी हैं। वेस्टहैम यूनाइटेड के कप्तान याहूद बोएन के लिए लिवरपूल के अलावा न्यूकासल और एवर्टन लाइन में हैं। लिवरपूल मोनाको से मैग्नस अक्लियुचे के बारे में सोच रहा है। फ्रांस का इंटरनेशनल खिलाड़ी 24 साल का लामिन कामारा भी द रेड्स के रडार में है। इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड अटलांटा से ब्राजीलियन मिडफील्डर एडेसन के पीछे है। कैसेमिरो के स्थान पर उसका हमवतन आ सकता है। 5 नए खिलाड़ियों को साइन करना चाहते हैं द रेड डेविल्स। टेनिस इटालियन ओपन में इगा श्वाटेक ने नाओमी ओसाका को एलिमिनेट किया। होम फेवरेट यानिक सिनर भी आगे जा पाया अलेक्सी पोपेरिन को हराकर। कल रुबलेव, पेलिग्रिनो, मेडवेदेव, चिरांते, क्रिस्टिया, कोकोगोफ, ओस्तापेंको, अंद्रीवा, विटोलिना, पेगुला और रिबाकिना जीत पाए। आज मुसेती का मुकाबला कास्पर रूड से, योदा चेन, दादेरी वेरेव, सीना खेलेगा पेलिग्रिनो के खिलाफ, कोकोगोफ अंद्रीवा ये क्वार्टर फाइनल है, सियस्टिया ओस्तापेंको ये भी क्वार्टर फाइनल। क्रिकेट में आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज में कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से है। बैडमिंटन में टूर्नुआ इंटरनेशनल दु सेंट डेनी में हमारे खिलाड़ियों के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहे। बेंजामिन, मिनिम, कैडेट, सीनियो और वेटेरन कैटेगोरी थे। बुडन, सावराम, दुस, लिफाई, सियुइंग योंग, चेंगिया, नंदा, इरामन और विशाल सावराम गोल्ड मेडल जीत पाए। और एथलेटिक्स में आज से यूनिवर्सिटी ऑफ गाना स्पोर्ट्स स्टेडियम में अफ्रीकी चैंपियनशिप शुरू हो रहे हैं। वहीं पर फैसला लिया गया कि 2030 में ये प्रतियोगिता मॉरिशस में लगेगी। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। टोटनहम हॉटस्पर कल टूटते टूटते बच गया। बस एक ड्रॉ मैच रहा 1-1 का लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ। वो अभी वेस्टहैम से केवल 2 अंक आगे है। और वर्ल्ड कप में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, 1 महीने से कम। 11 जून को शुरू होने वाली है ये प्रतियोगिता कनाडा, फिर यूएसए और मेक्सिको में। उद्घाटन समारोह तो होगा ही मेक्सिको में। और आपको ये भी बता दें कि एमबीसी रेडियो मस्ती RM2 में हर सुबह और शाम रोड टू वर्ल्ड कप पर एक खास प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जरूर सुनिएगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
0: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आज की सूचनाएं। हनुमान जयंती के अवसर पर स्वामी श्रीनिवासाचार्य बद्रिका आश्रमम द्वारा विशेष श्री पंचमुखी हनुमान प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा। ये प्रार्थना 12 मई 2026 को शाम 5:30 बजे से रात्रि के 8:30 बजे तक फॉरेस्ट साइड सिजेमिल स्थित मंदिर परिसर में होगी। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त करें।

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: Ministry of Labor and Industrial Relations और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नु त्रावाय नु लावेनिया। मैन्युफैक्चरिंग के सिकते में डीना आराबी बेकरी लिमिटेड जन रॉयल रोड मेड इन कॉन डमास्क में पावल जाला दू गो मेल बेकरी ऑपरेटर्स खोजता जिनकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न त टेलीफोन करिया 770561 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 21 मई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में मेधी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड जन रॉयल रोड बेल्विमोरल में पावल जाला एगो मेल पेस्ट्री मेकर खोजता जेकर ऐसी बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी ईमेल द्वारा ई दिया गल पता पर विदा कर दी है patbrioche2@gmail.com। जस्ती जानकारी खोजबा तो टेलीफोन करिया 412-81-17 नता 77-91-57-55। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 मई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सेक्टर में डी क्राफ्ट एंटरप्राइज लिमिटेड जुन मामजल जान गुडलैंड में पावल जाला 3 मेल सुविंग मशीन ऑपरेटर्स खोजता जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। साथ में 2 गो मेल स्क्रीन प्रिंटिंग ऑपरेटर्स जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोन करिया 52-50-20-43 नता अपन सीवी ईमेल द्वारा दिया गल पता पर विदा कर दी है माने कि dcraft0211@gmail.com। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 मई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सिक्ते में तुलसी फर्नीचर लिमिटेड जन बेले रिविया सेश में पावल जाला 3 मेल ग्रेड 1 कारपेंटर्स खोजता जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न त टेलीफोन करिया 52-55-23-03। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 23 माने की 30 मई 2026। टूरिज्म के सेक्टर में शुगर वर्ल्ड लिमिटेड जन बोप्लान पॉम्पलेमुसेस में पावल जाला एगो फीमेल क्लीनर खोजता जेकर 1 से 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोन करिया 204-08-08। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 22 मई 2026। एग्रीकल्चर के सेक्टर में मोजांडे जी लिमिटेड जन एवेन्यू दे बेंगालिस मोचिदा में पावल जाला 3 मेल ग्रेड 2 स्किल्ड फार्म वर्कर्स खोजता जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोन करिया इन नंबर पर 52-53-57-51 नता 57-87-47-62। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 20 मई 2026। एग्रीकल्चर के सेक्टर ही में रोज लेंस एग्रीकल्चरल कंपनी लिमिटेड जन मोस्क रोड बेल्विमोरल में पावल जाला 4 मेल शुगरकेन एग्रीकल्चरल लेबरर्स खोजता जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोन करिया 57-26-29-55। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 मई 2026। सेल ऑफ मोटो व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स के सेक्टर में जापा मोटोज लिमिटेड जोन फ्रांसवा मिटेरन रोड सेंट्रल फ्लैक में पावल जाला एगो मेल ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिशियन खोजता जेकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न त टेलीफोन करिया 52-53-29-38 न त 52-54-52-97। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 मई 2026। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में लाइट हाउस टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड जन रॉयल रोड लाल माची में पावल जाला एगो मेल प्लम्बर खोजता जेकर फोम सैंक बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न त टेलीफोन करिया 417-30-69 न त 52-57-05-70। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 23 मई 2026। कंस्ट्रक्शन के ही सेक्टर में क्यूब डील्स कंपनी लिमिटेड जिन गोविंदन रोड गुडलैंड्स में पावल जाला एगो मेल टाइल्स सेटअप हो जाता जिकर दू बारी स्किल एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोने करिए 52 50 05 16 न तो अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है ashwin.durgachan@gmail.com। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 मई 2026। सिक्योरिटी सर्विसेज के सेक्टर में कोडाउन सिक्योरिटी सर्विसेज जन ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड सैपिया में पावल जाला 35 मेल और 5 फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स खोजता, साथ में 5 मेल ड्राइवर्स जिनकर एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बाटे और खोजता 10 मेल अलार्म टेक्नीशियंस जिनकर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्टिफिकेट बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइए न तो टेलीफोने करिए 403 50 10 और याद रखिए कि ये तीनों पोस्ट खातिर कौजिदा लोग के चाहेला एगो सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर प्रोड्यूस करे के। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 मई 2026। जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजत हुआ तो ये भी सुनते चला कि लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के तले लोकल गवर्नमेंट सर्विस एगो हेल्थ इंस्पेक्टर खोजता और एप्लीकेशन करे खातिर की वेबसाइट विजिट करिए https://ljsa.gov.org और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 13 मई 2026। साथ में लोकल गवर्नमेंट सर्विस एगो कारपेंटर खोजता, एप्लीकेशन करे खातिर यही वेबसाइट विजिट करिए https://ljsa.gov.org और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 18 मई 2026। एगो प्राइवेट हाउसहोल्ड पीतों के रिज्यूमे में एगो सोफे खोजता जिन कौजिदा एतरसे होवन चाहेला 10 बरिस के एक्सपीरियंस हो के और एप्लीकेशन करे खातिर गुडलैंड्स EIC टेलीफोने करिए ई नंबर पर 2 8 2 59 17 2 8 2 59 18। तो ई रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और MBC के मिलल जुलल सहयोग से नू ट्रावाई नू लावेनिया।
2: इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:09 हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नज़र डालते चले। ये विज्ञप्ति है पिच तगाफ़े के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर मौसेश, मो मास्काल, गिन्यो मोगेल, काप मालोगे, ऑसलागे, कालोजिन, सैन फ्रांसवाज, लाहूद कुछ ये ग्रां गोब के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 12 मई को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई

0: में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
3: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: 7:10 ये सुबह का नजराना कार्यक्रम मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के लहरों पर हम आप पहुंचे हैं रेडियो मॉरिशस पर आपका साथ देने के लिए। मैं हूं रत्ना और आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो चुकी हूं। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम रहेंगे आपका साथ देने के लिए। मंगलवार की सुबह है, 12 तारीख है, 2026 का साल और मई का महीना। चलिए सर्द के मौसम में बिल्कुल सुबह ठंडी, दिन में थोड़ी गर्मी, पर इस प्रकृति के रूप को हम दिल से अपनाते हुए अपने आप को बहुत ही ऊर्जा से भरपूर महसूस करें और आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे चिंतन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन। आइए उनका स्वागत करते हैं और उसके तुरंत बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: मनुष्य जितना ही चाहता है उतने ही उसकी प्राप्त करने की शक्ति बढ़ती है। अभाव पर विजय पाना ही जीवन की सफलता है। उसे स्वीकार करके उसकी गुलामी करना ही कायरपन है।

सुबह का नजराना कार्यक्रम और एक बार फिर लाजवाब गीत के साथ हमने की है पहल अमर फिल्म के इस गीत के साथ मोहम्मद रफी साहब की प्यारी सी आवाज। भाई जिंदगी आसान तब भी होगी जब हम ये सीख जाएंगे कि अपनाना क्या है, बदलना क्या है और छोड़ना क्या है। जहां अपनाना होता है वहां हम छोड़ देते हैं, जहां बदलना होता है वहां हम अपना लेते हैं, तभी तो सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं, है ना। चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में झलकियों के साथ आपको बताते चले आज दिन भर में कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं आप सभी के लिए। जी हाँ, इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और मैं हूँ रत्ना, साथ दे रही हूँ आपका। इसी के साथ आपको याद दिला दें 8 बजे भोजपुरी समाचारों के साथ हम जुड़ेंगे और उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे मोहिनी के साथ। जी हाँ, माधुरी दीक्षित के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे एक छोटी सी मुलाकात कार्यक्रम में जो होगा बिल्कुल 8:15 बजे 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ेंगे 9 बजे के समाचारों के साथ। और 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस की लहरों पर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की जाएगी सुमिता सरकार द्वारा जो चलेगा 10 बजे तक। इसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस पर, देख पाएंगे MBC के तीसरे चैनल पर और फेसबुक पेज पर इसे आप फॉलो कर पाएंगे। इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। बिल्कुल 10 बजे के समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगी भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर, जिसमें आप सुन पाएंगे भजन और इसी के साथ 10:15 आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। 11 बजे तक ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और 11 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे विविध भाषाओं के कार्यक्रम जिसकी शुरुआत होगी शम्मे फरोजा कार्यक्रम के साथ और इस कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी सैयदा सुबाई द्वारा। 12 बजे सौंदर्य लहरी इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी वर्षा। 12:30 बजे सीताबाई दरमिया का साथ होगा मराठी गीतों के कार्यक्रम में। 1 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम RSE की प्रस्तुति में। 1:45 बजे आपका साथ देंगे अमिता गुजराती गीतों के कार्यक्रम रंगारंग में। 2 बजे मैंडरीन का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे जिसे प्रस्तुत करेंगे डेविड। 2:30 बजे आपका दैनिक पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी रोशनी। 4:00 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम। 4:00 बजे पुनः आप सुन पाएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम, इसे प्रस्तुत करेंगी कलाईवानी वीरन। 5:00 बजे भूले बिसरे गीत जिसे प्रस्तुत करेंगी गिनीशा। 1 घंटे का ये सफर रहेगा 6:00 बजे तक। 6:00 बजे देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन में। 6:30 बजे एक बार फिर विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का गुलदस्ता सजाया जाएगा जिसकी शुरुआत होगी मैंडरीन कार्यक्रम के साथ, इस कार्यक्रम को सजाएंगी हांगकांग। 7:00 बजे कलाईवानी मुरुगन द्वारा कार्यक्रम तमिल भाषा में। 7:30 बजे कृतिका लेकर आएंगी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 7:50 पर मराठी गीतों को सुन पाएंगे आप शिरीष रामा की प्रस्तुति में। 8:10 पर भक्तिमय कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम देवीना की प्रस्तुति में। रात के 8:40 पर निसार अख्तर की पेशकश में महफिल-ए-शब कार्यक्रम होगा जो चलेगा उर्दू भाषा में।

9 बजे से 11 बजे के बीच भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और 11 बजे से 12 बजे के अंतर्गत आप सुन पाएंगे सुनहरे पल का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगी नीतूषा। रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक ओवरनाइट प्लेलिस्ट, जिसे सजाएंगी हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट। तो ये थी सूची हमारे रेडियो मॉरिशस के सभी कार्यक्रमों की। चलिए इस समय

7:24 और मजेदार गीतों का ये सफर जारी रखते हैं। कुछ पुराने गीतों के साथ सजाई हुई ये सुबह हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 1955 के दौर की बात करें तो इस दौर में आई थी एक फिल्म कुंदन, और इस फिल्म में नजर आए थे सौरभ मोदी, सुनील दत्त, निम्मी और प्राण साहब, और संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद का, बोल सजाए थे शकील बादायुनी के। वैसे आपको ये भी याद दिला दें 1955 का दौर जहां पर तकनीक ने उतनी प्रगति नहीं की थी, पर फिर भी उस समय में, उस जमाने में निम्मी ने फिल्म में किया था डबल रोल, और उस जमाने में माँ और बेटी की भूमिका में वे नजर आई थी, जो लोगों को बेहद पसंद आया था। चलिए इसी फिल्म का ये गीत हम लेकर आए हैं, और आवाजें हैं मोहम्मद रफी की, और साथ दिया है लता जी ने, बहुत ही प्यारा सा अनसुना सा गीत।

7:36 हो चुके हैं और बस बढ़िया बढ़िया गीतों का ये सफ़र सुबह का नजराना कार्यक्रम। और चलिए अभी थोड़ी ही देर में छोटी सी बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। भाई जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, जिंदगी तो अपनी है पर हम जीते दूसरों के लिए है। और इसी के साथ फिल्म वारिस का ये गीत, जी हाँ फिल्म वारिस और 1954 के दौर का ये गीत है, तलत महमूद और सुरैया की प्यारी सी आवाज़ में।

7:41 और छोटी सी बात में आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आपका सबसे फेवरेट सेगमेंट बन चुका है छोटी सी बात। और आज की छोटी सी बात, बस इस कहानी का शीर्षक बहुत ही मज़ेदार कि चिराग से रोशन सपने। ये छोटी सी कहानी है एक नौजवान की। एक बार एक नौजवान फौज में भर्ती होने से रह गया, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अपनी तकदीर से नाराज और निराश होकर वो वापस लौटने लगा। रात को एक सराय में ठहरा, यानी एक गेस्ट हाउस जैसी जगह पर। वहां का चौकीदार एक लंबी टहल के बाद आया और ड्योढ़ी में मिट्टी के तेल की डिबिया रोशन करते हुए उस रात रुकने की जगह देने लगा। अब वो नौजवान उस गुलाबी रोशनी में देर तक यों ही अनमना बैठा रहा, मायूस था, उदास था। तब तक चौकीदार ने उसको चटाई बिछौना दे दिया। उस नौजवान की निराशा को चौकीदार ने भांप लिया था। खाने को दाल रोटी देते हुए वो बोला, चिराग रोशन है, खा लो। जब तक रोशनी है तब तक जो दिख रहा है उसे देख लो। न जाने क्या हुआ कि उस नौजवान के दिमाग की बत्ती जल उठी। उसने उमंग से दाल रोटी खाई और चिराग को एक बार फिर गौर से देखा। कोई बात नहीं, अब गांव लौटना है तो कोई और काम करना होगा। जब तक भुजाओं में दम है तब तक किस लिए घबराना। अब उस नौजवान की आंखों में निराशा के आंसू नहीं थे, एक बेहतरीन किसान बनने के सपने सज गए। दोस्तों, कई बार ये कहानी हमें लगता है कि ठीक है, कहानी है तब तक ठीक है, पर जिंदगी में जब ऐसी घटना घटती है तब जाकर हमें जिंदगी का सही सामना करना पड़ता है। पर सच में देखा जाए तो ये कहानी हमें बहुत कुछ समझाती है कि अगर जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, या आप आगे नहीं बढ़ पाते, या आप फेल हो जाते हैं, तो हारना नहीं है। जिंदगी हमें मौका दे रही है कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का। बस उस मौके को हमें समझना है, मौके को ढूंढना है। कई बार हम काम से भी इतना ज्यादा लगाव कर बैठते हैं कि बस काम ही हमारी जिंदगी बन जाता है। हमें लगता है कि अगर काम नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। पर कहते हैं ना कि हमेशा जिंदगी हमें मौके देती है, पर हम मौके ढूंढ नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते। अगर ये काम छूट गया तो बेशक जिंदगी हमारी हिम्मत बढ़ा रही है हमें कुछ अलग हटकर करने के लिए। जिंदगी परीक्षा लेती है पर वो आपसे नाराज नहीं है, इसीलिए हमेशा जिंदगी को पॉजिटिव रखिए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए जिंदगी को गले लगाइए। आज की ये छोटी सी कहानी आशा करते हैं आपके जीवन में भी आशा की एक नई किरण जगाएगी।

पुराना था पर लाजवाब था। ये गीत फिल्म अलबेला से लिया हुआ चितलकर की आवाज में 1950s के दौर का ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है हमारी आज की छोटी सी बात को लेकर। और बिल्कुल जिंदगी ऐसी ही है, बस उसे आप कैसे लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है। कहते हैं ना कि आपकी किस्मत आपके फैसले से तय होती है। आप कौन सा फैसला किस समय कब लेते हैं ये निर्भर करता है, ये तय करता है कि आपकी किस्मत कैसी होगी। वैसे आपकी कंडीशन या आपकी परिस्थिति आपकी किस्मत तय नहीं करती। तो चलिए इसी के साथ 7:50 होने को हैं और बिल्कुल आपके नामों को आज के इस कार्यक्रम में शामिल करने का समय हो चला है। वैसे आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस के लिए हम तहे दिल से आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लोरियाल से हमारा साथ दे रही है माधुरी जी, बहुत बहुत प्यार आपको। काथखबोन से माला सुबारू जी, आपका भी सुबह सवेरे बहुत ही प्यारा सा मैसेज आ जाता है जो हमारे दिन को बिल्कुल टकाटक कर देता है, थैंक यू अगेन। रोजबेल से साथ दे रहे हैं नवीन लक्ष्मण जी, साथ है आपकी प्यारी पत्नी चित्रा जी, निवेदिता और सच्चिदानंद जी मेबक से, ललिता और धनराज चरण जी प्यारी बेटी स्वीटी के साथ मोडालबिया से, न्यूग्रोव से साथ दे रहे हैं राज और अमृता उबिलक, और गौबुआ से रमेश और प्रीति जी हमेशा की तरह साथ देते हुए, नोएल फ्रांस से गायत्री जी, बेटा अज

जय मामी है कल्याणी मोहन, भाभी शकुंतला मोताइलोंग से और आपकी सखी गीता बाई भी इस वक्त हमारे साथ है। चलिए गीता जी, आपकी तबीयत कुछ नासाज है, ऊपर वाला आपको बहुत बहुत हिम्मत दे। आपकी प्यारी बेटी सुधा जी से आज हमारी बात हुई, साथ है आपके बेटे शिवाजी, बहू है श्वेता बाई, साथ है बिजवी बाई, दिया बाई और प्यारा सा मल्हार। बहुत बहुत प्यार आप सभी को। घोंघोप से श्यामा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्यामा रघुनंदन भैया हैं, जयप्रकाश भाभी है, नम्रता केशव और युधीश साथ देते हुए, और आपकी प्यारी सखियां विश्वानी और वीना जी भी हमेशा साथ देती हैं। क्लाविट से जुड़े हुए हैं विजय बंधन और उनकी प्यारी पत्नी रेखा, साथ है उनकी बहनें चंदनी, बिंदु, कुमारी और आपके सभी दोस्त जो बहुत ही प्यार से काम से हमारा साथ देते हैं, थैंक यू सभी को। पोम्फेया से गीता जी भी जुड़ चुकी हैं हमेशा की तरह, आपके प्यारे पति रोहित, साथ है आदित्य, आरव और तनीश, प्यारी परी जानवी, तीन बेटे दो बहुएं। राजन लक्ष्मण जी हमेशा साथ देते हैं लाफलोगा से, आपकी प्यारी पत्नी माला, प्रगति और प्रगति और प्रेरणा आपकी दो प्यारी बेटियां। और यहाँ एक और प्यारा सा मैसेज आया है, ये है सूरज शर्मा सजादा जो हैं त्रियोले से, थैंक यू सो मच। वाकवा से जुड़ी हुई हैं शोभा जी, साथ है अनुषा, शर्वीना, अवनीश, अर्णवी और आपकी प्यारी सखी राधा बाल गोबिंद मोर्चिदा से, आपकी बहन प्रेमिला जयमंगल और वीना जी। क्योपिप से गीता जी भी साथ दे रही हैं, बस कहती हैं बहुत ठंड है, बिल्कुल आप हमारा साथ देते हैं और इसी के साथ ठंड के लिए बिल्कुल आप अपने आप को तैयार बना के रखिए, बिकॉज अब ये साल कितनी ठंड होगी ये तो कहना मुश्किल है, पर ज़रूर आप अपना साथ दीजिए और हमारा साथ दीजिए, हम आपको गीतों से स्फूर्ति देते रहेंगे, एनर्जी देते रहेंगे। और यहाँ पर कौंदे मास से हमेशा की तरह साथ देती हैं प्रेमिला सी गुलाम जी, प्यारी बहने रागिनी, साधना जो है बेचू परिवार से, ग्रीष्मा फ्लाक से साथ दे रही हैं आप, त्रियोले से हैं आपकी प्यारी बहन अनसुया, राम के अलावा। और यहाँ मानती जी भी साथ जुड़ चुकी हैं अनवलफॉन्स से, साथ दे रही हैं अनंती, आरती, अमृता और चिंता जी, और कहती हैं आज हमारे एसोसिएशन में मातृ दिवस मनाया जाएगा, तो चलिए आपको बहुत बहुत प्यार। और यहाँ पर अनीता लाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ईतु परिवार, गोगा परिवार, नागेश्वर परिवार के साथ, लीला जी हैं बॉशेगी से, ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से साथ दे रही हैं शीला जी, पति साजन, बेटा है विकास और गौसों, और आपकी प्यारी गुतनी का जन्मदिन था 6 तारीख को, माफ कीजिएगा 9 तारीख को, शनिवार को उनका जन्मदिन था, 9 तारीख को, बहुत बहुत प्यार आपकी गुतनी, उनका नाम है शकुन, दो प्यारी बेटियां प्रीति और अनु की ओर से और सभी नाती पोतों की ओर से शकुन जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। रिवेजुपुस से जुड़ी हुई हैं, माफ कीजिएगा रिवेजुपुस से जुड़े हुए हैं उदय जी, और आज आपकी प्यारी भगिनी की बेटी प्रणवी का जन्मदिन है जो 1 साल की हो चुकी है, प्रणवी बंगी जो है रोजबेल से, और सभी बंगी सिबनोत और धनीराम परिवार की ओर से, और मोताबा से है मुहाबिया, खासकर ममा विनुषा और पापा है राकेश, नानी नाना की ओर से ढेर सारा प्यार जाता है प्रणवी को, बहुत बहुत प्यार आपको हमारी एमबीसी की पूरी टीम की ओर से प्रणवी। दीपिने से जुड़ी हुई है शीला जी, चलिए थैंक यू सो मच कहेंगे, आपने भी गीतों के सिलेक्शन को बहुत पसंद किया और गीतों का ये सफर आप बहुत एंजॉय करती हैं। यहाँ पर बॉम्बू से लक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है अक्षय और आशनी के साथ, पोम्फेया से देजीना भी साथ दे रही हैं, और पूनम, माफ कीजिएगा पुमन का जन्मदिन है, यही आपने लिखा है यहाँ पर मैसेज में, और उनके बेटे हैं शेख, पति हैं अजय, साथ है सी शंकर और दीपचंद परिवार। और यहाँ पर शिवरानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गौबुआ से, आज आपके लिए कुछ दुख का समय है, आप अपनी प्यारी बहन देवरानी सी नंदन को बहुत ही मिस करती हैं जो इंग्लैंड में थी और वो गुजर चुकी, और आपकी बहन कृष्णा कुमारी गौरी शंकर।

चलिए, हमारी दिल से सहानुभूति है आपको और आपके परिवार को। और इसी के साथ रेडियो मॉरिशस हमेशा सुख दुख का साथी रहा है। चलिए, इस वक्त 7:55 और यहाँ पर इंदिरा लॉटन भी हमारे साथ मोडालबिया से जुड़ चुकी हैं और आप हमारा साथ दे रही हैं। और सुंदरपाल सिंह साथ है गोपी। और यहाँ पर शकुंतला जी भी हमारे साथ है जो है मोत आइलोंग से। मीला जी भी साथ दे रही हैं न्यू ग्रोव से। और आपके सभी बच्चों का नाम जोड़ना चाहती हैं जो है लंदन से। सरिता जी भी इस वक्त हमारे साथ है, काट्रबोन से साथ दे रही हैं। थैंक यू सरिता जी। माला जगी भी हमारे साथ है। वैसे माला जगी जी, आपका मैसेज बहुत लंबा है, बस सारा मैसेज तो अभी ऑन एयर नहीं पढ़ पाऊंगी, पर थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारा साथ देती हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कमला जी काटकुकु से हमारा साथ दे रही हैं, रामन और सीपोल परिवार के साथ। सुदेवी जी मौका से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर नीता खेदनी भी हमारे साथ हैं सेंट जूनियर विलाज से। और 13 तारीख को आप अपना जन्मदिन मनाएंगी, बहुत बहुत प्यार आपको, यानी कि कल। आपकी बेटियाँ हैं रूमा, रीना और साथ है आपके दामाद कृष्णानंद और भीम। 5 नाती पोते विभा, वैभव, वैष्णव, विधि और चैतन्य। और आपकी प्यारी भतीजी आयुषी और आदर्श की ओर से भी ढेर सारा प्यार। और आपकी भाभी है बबीता और रीटा। नलिनी जोखन आप भी हमारा साथ दे रही हैं वाकवा से। लीलो जी घोबुआ से जुड़ी हुई हैं, इस वक्त खेत में काम कर रही हैं। और आपके सभी दोस्त, गीता जी है साथ, है शीला जी और आपके साथ है किशोर जी भी जो काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। और किरण बारोट जी यहाँ पर हमारे साथ है लिस्पेगोंस त्रिबुशे से। प्यारी पत्नी नम्रता, बेटा है मयूर, बेटी नियति, दामाद है सर्वेश और दो नाती के साथ प्लान मायों से। नानी जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं और कहती है आज तो जैकपॉट लग गया, चाय पीते पीते तलत महमूद का गाना क्या चल पड़ा, चाय का तो टेस्ट ही बदल गया, जायका ही बदल गया। और यहाँ पर मुन आप भी हमारे साथ है, आपके पति चांद का जन्मदिन था कल। अभिषेक, अविनाश, अविशा, 3 प्यारे बच्चे जिनसे नीलम और अश्ले, साथ है नीव और निक्षु। तो चलिए ये प्यारा सा गाना आपके नाम करते हैं और यही गाना हमें जोड़ेगा 8 बजे के भोजपुरी समाचारों के साथ। मिलते हैं समाचारों के बाद, मुलाकात करवाएंगे आपकी मोहिनी के साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्ते और सलाम, फजर के 8 बजल बा। आज राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी रखल जाला नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री के गैर हाजिरी में अगयान नावोमाही अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से प्रधान प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान जवाब देले बा। सन 2014 से 2024 ले एमर्शस द्वारा बेचे या खरीदे गल हवाई जहाज पर सवाल करल जाला। एमर्शस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राज रामलगन याद दिलाई ले बा कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत रहेला तब जहाज के संख्या 15 से 9 तक घटगल, कम दाम में जहाज के बेचल गर रहल, जबकि रिपोर्ट में उच्च दाम के जिक्र करल गर रहल। मोरिस में पर्यावरण के लेके गोबरा कदम उठावल जाला। कैबिनेट के बैठक में नए एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 के लागू करे के मंजूरी जतैलन। ई ढांचा के जरिए हवा के किस्म और कारखाना और इंसिनरेटर से प्रदूषित उत्सर्जन पर काबू रखल जाए सके बातें। कैथोबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलत अधिकारी हल ढूंढे खातिर एगो मास्टर प्लान पर काम करेला। अगर बहुतों खातिर मेट्रो एगो तेज जरिया और कारगर परिवहन बाते, लेकिन कैथोबोन के बाशिंदा लोग खातिर शहर में ही आने जाने खातिर ई प्रणाली मसला पैदा करता। विदेश में ग्रेट ब्रिटेन में गृह सचिव शबाना महमूद उन कई गो कैबिनेट मंत्री में शामिल बाते जोन सर के एस थॉमस से उनकर इस्तीफे के मांग करेला, जिकर कारण सरकार के उच्च अधिकारी में तनाव पैदा हो गल बाते। रहर समाचार, नमस्ते और सलाम।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: सीबी रोड गुडलैंड्स में 4 करोड़ 7 बरिस के कथों में से तो श्रीमती मुटिया परमा, श्रीमती मुटिया परमा पैदाइशी नाम बोईराम बोली जुंदानो के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर गल हवन। इन करमाती आज दो बजे कर घरे सीबी रोड गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बागूज गुडलैंड्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM एवेन्यू सामी मौका में 2 करोड़ 7 बरिस के कारण से तो श्री विक्रम सरनाम जन विक्रम के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर कल हवन। इंकर माती आज तीन बजे इंकर पिता ईश्वरलाल सरनाम के घरे अवनी सामी मौका से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सियाकुस्तों सैपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टुडे 8:30 PM रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में 2 करोड़ 6 बरिस के कारण सीजों श्रीमती कल्याणी देवी कार्तिक, श्रीमती कल्याणी देवी कार्तिक पैदाइशी नाम सुंदौ जिन कल्याणी के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर गल हवन। इनकर माती आज एक बजे इनकर रिश्तेदार बुनियावाद संध्या के घरे रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठा के अंतिम संस्कार खातिर ब्रह्मस्थान के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमेशन टुडे 1 PM ब्रांच रोड लालमाती में 3 करोड़ 18 बरिस के श्वसन जीवितों श्रीमती रुमावती बसवा जन रुमा के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर कल हवन। इनकर माती आज एक बजे इनकर पति रामानंद सिंह बसवा के घरे ब्रांच रोड लालमाती से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी रोड लालमाती के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमेशन टुडे 1 PM मोहसिन मौ औजी फ्लाक में 3 करोड़ 12 बरिस के स्वसंधुजों श्रीमती मांगती हरदोस पैदाशी नाम नवरंग जुन मिलानी के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर गल हवन। इनकर माती आज दो बजे इनकर पति सूरजलाल हरदोस के घरे मोहसिन मौ औजी फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुआ मौसों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टुडे 2 PM पावे रोड पे चिकाफे में तीन कोरी बारह बरिस के श्वसन जूसों श्री ज्ञान दत्त भोला, श्री ज्ञान दत्त भोला जिन ज्ञान दत्त के नाम से जस्ती जाना जातरलन गुजर कल हवन इंकर माती काल एक बज गया था, काल एक बज गया था इंकर पत्नी नालिनी भोला के घरे पावे रोड पे चिकाफे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोमास्कल पे चिकाफे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। एडुलेन ओरिएटा वाकवा में तीन कोरी ग्यारह बरिस के 71 श्रीमती दुर्गावती पहसन, श्रीमती दुर्गावती पहसन पैदाइशी नाम शेर सिंह जन शालू के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर कल हवन इंकर माती आज 12 बजे, आज 12 बजे इंकर बेटा आशीष पहसन के घरे एडुलेन ओरिएटा वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट नून। रॉयल रोड क्लेमेंसिया में दो कोरी 18 बरिस के 58 श्रीमती कुंती उसाई

0: श्रीमती कुंती बुसाई पैदाइशी नाम चिंतामन जीवुल, पैदाइशी नाम चितामन जीवुल जिन कालियानी के नाम से जस्ती जाना चात्रलन गुजर कर हवन इंकर माती आज 11 बजे आज 11 बजे कर बेटा अखिलेश बुसाई के घरे रॉयल रोड क्लेमोसिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर क्लेमोसिया की शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमिशन टू डी रेवेन्यूएम बुजुलेन पायुत कत्रबोन में तीन कोरी 12 बरिस के स्वसंधुजों श्री भानुदत्त भट्टू श्री भानुदत्त भट्टू जन आनंद भट्टू के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजरगल हवन इंकर माती आज दो बजे इंकर घरे बुजुलेन पायुत कत्रबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्वामा मिल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमिशन टूडे एट 2 PM रेलवे रोड केवल नगर बेलगीव में चार कोरी 4 बरिस के कथों कथों श्रीमती बसंती भागीरथी श्रीमती बसंती भागीरथी पैदाइशी नाम तुकई जन सांता के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजरगल हवन इंकर माती आज एक बजे इंकर बेटा धीरज भागीरथी के घर रेलवे रोड केवल नगर बेलगीव से उठा के अंतिम संस्कार खातिर ओलिविया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे एट 1 PM रॉयल रोड पायुत कत्रबोन में चार कोरी 13 बरिस के 93 श्री हेरामन अनूप श्री हेरामन अनूप जुन जगदेव के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजरगल हवनी करमाती आज 10 बजे कर घरे रॉयल रोड पायुत कत्रबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बालों सुल्फेनो के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 10 AM शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लॉक में तीन कोरी 9 बरिस के 69 श्रीमती पारो सीनोत श्रीमती पारो सीनोत पैदाशी नाम सुबा जुन पारो के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजरगल हवन इंकर माती आज दो बजे इंकर पति धनराज सीनोत के घरे शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लॉक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताई ब्लॉक के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 2 PM रामलोल स्ट्रीट कोंकारोल रिबिया दी क्रेओल में तीन कोरी 10 बरिस के 70 श्रीमती सुमित बना श्रीमती सुमित बना पैदाइशी नाम लड्रू जो सरोज के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर गलहवन इंकर माती आज 1:30 बजे आज 1:30 इंकर पति किशुन बना के घरे रामलोल स्ट्रीट कोंकारोल रिबिया दी क्रेओल से उठाकर अंतिम संस्कार खातिर डोम्बोलेन मेबर्ग के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे एट 1:30 PM जोर्ज विक्टर के वैन पोटलुई में तीन कोरी 9 बरिस के 69 श्री जयन कुमार फुलबोसिया श्री जयन कुमार फुलबोसिया जिन जयन के नाम से जस्ते जान जात्रालन और काली माई काशी के अध्यक्ष रहलन गुजर कल हवन इंकर माती आज 12 बजे इंकर घरे जोर्ज विक्टर के वैन पोटलुई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लेसानिन के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे एट 2 PM रॉयल रोड लालमाती में तीन कोरी 12 बरिस के स्वसंधुजों श्री सच्चिदानंद रामास्वामी श्री सच्चिदानंद रामास्वामी जिन सत्यानंद कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजरगल हवन इंकर माती आज ग्यारह बजे इंकर पत्नी मनीता रामास्वामी के घरे रॉयल रोड लालमाती से उठा के अंतिम संस्कार खातिर में जिन कौंदिमास के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 11 AM पावे रोड पिचकाफे में तीन कोरी 12 बरिस के स्वसंधुजों श्री ज्ञानदत्त भोला जिन ज्ञानदत्त के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजरगल हवन इंकर माती आज एक बज के आधा इंकर पत्नी नालिनी भोला के घरे पावे रोड पिचकाफे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोमास्काल पिचकाफे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमने संवेदना प्रकट कर थी जा
1: एट 819 KHz ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
2: इस समय 8:15 बज चुके हैं और आपकी मुलाकात करवाएंगे धक धक गर्ल से। जी हाँ, मोहिनी, जिनका नाम सुप्रसिद्ध हुआ फिल्म तेजाब के बाद, और 15 मई को उनका जन्मदिन है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना आज का ये कार्यक्रम हम बिल्कुल यादगार बनाएं माधुरी दीक्षित के सभी फैंस के लिए। और माधुरी दीक्षित जी, जिनका जन्मदिन और बिल्कुल 58 ईयर्स की, यानी 58 वर्षीय माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की एक ऐसी दिग्गज और प्रशंसित अभिनेत्री और नर्तकी हैं, जिन्होंने 1980s, 90s और 2000 के दशक में तेजाब, बेटा, दिल, हम आपके है कौन, दिल तो पागल है जैसी सुप्रसिद्ध फिल्में देकर बॉलीवुड पर राज किया। अपनी खूबसूरत मुस्कान और शानदार अभिनय के लिए मशहूर इतना ही नहीं, उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए आज की ये मुलाकात माधुरी दीक्षित के साथ और हिंदी फिल्मों पर राज करने वाली, बहुत ही समय तक उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी नृत्यांगना, एक नृत्य कला से वे सुप्रसिद्ध हुई। और जब हम उनके जीवन की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया जिसे आज के अभिनेत्रियों या अभिनेत्रियां अपने लिए एक आदर्श मानती है, एक रोल मॉडल मानती है। और 80s और 90s के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था, माधुरी जी जो थी वो पूरे देश की धड़कन बन गई। 15 मई 1967 यानी 15 मई 1967 मुंबई में मराठी परिवार में माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह थी, और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि माधुरी ने अपना जीवन साथी श्री राम नेने को चुना, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पढ़ने के बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की, और बचपन से ही उन्हें नृत्य में रुचि रही है, जिसके लिए माधुरी ने 8 वर्ष की आयु से कथक का प्रशिक्षण लिया। और सन 2008 में उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जब सिनेमा जगत की हम बात करें तो माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्री रही हैं, और उन्होंने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत सन 1984 में अबोध नामक चलचित्र से उन्होंने शुरुआत की, किंतु इनकी पहचान जो है 1988 की फिल्म तेजाब से उन्हें मिली, और इसके बाद उन्होंने अपने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं, और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों का कारवां इनको भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सिनेमा की सर्वोच्च अभिनेत्री बनाता गया। अब जब तेजाब फिल्म की बात की है तो मोहिनी का नाम ना ले, एक दो तीन गाने का नाम ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।

जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

0: भाई इस गाने की वजह से मोहिनी सभी के दिलों पर छा गई और सच में इनकी जो एंट्री थी इस फिल्म में क्या लाजवाब एंट्री मारी थी और इस गाने के साथ उन्होंने कई जवान दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ।
0: और वैसे भी आपको याद होगा कि ये एक ऐसा दौर था जहां पर बच्चे गिनती भी 1 2 3 के गाने से बहुत ही जल्दी सीख गए। जी हाँ, 1988 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। वैसे 1984 में चलचित्र आई थी अबोध, जी हाँ इस फिल्म में उन्होंने शुरुआत की थी, पर 1988 की फिल्म तेजाब ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलवाई। और इतना ही नहीं, 1989 में फिल्म आई राम लखन और त्रिदेव। उसी साल फिल्म आई त्रिदेव और बिल्कुल 1990 में किशन कन्हैया और फिल्म दिल। जी हाँ, इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था जिसमें वे एक बिगड़ैल लड़की के किरदार में नजर आई थी जो एक साधारण परिवार के लड़के से इश्क कर बैठती है। हालांकि इस फिल्म में उनकी जो भूमिका थी वो एक बहुत ही रईस लड़की की भूमिका थी तथा उसे बिल्कुल एक साधारण लड़के से प्यार हो जाता है और इससे उनकी जब शादी होती है तो फैमिली में किस तरह से बगावतें होती हैं, इस पर ये फिल्म आधारित थी। और इस फिल्म के किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इनको पुरस्कार भी मिला।

बिल्कुल, इस धक धक गर्ल ने, लड़कियों ने, वही कहते ना उस ज़माने में उनको रोल मॉडल माना जाता था और मैं खुद उनको देखकर बड़ी हुई हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 90s के ज़माने में कुछ ऐसी कलाकारा थी, कुछ ऐसी अभिनेत्रियाँ थी जो लड़कियों के लिए बहुत ही बड़ी रोल मॉडल रही हैं, और ये थी धक धक गर्ल। और इसी के साथ आज की मुलाकात, जी हाँ, हम कर रहे हैं माधुरी दीक्षित के साथ, और 1992 के दौर में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर वे नज़र आईं अनिल कपूर के साथ। और सच मानिए तो तेजाब फिल्म के साथ उनकी जो पेयरिंग थी, उनकी जो केमिस्ट्री थी अनिल कपूर के साथ, लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आ रही थी।

0: भाई केवल बातों में नहीं, उनकी अपनी सुंदरता, उनका नृत्य और उनके मजबूत पात्रों के लिए वे बहुत ही ज्यादा सुप्रसिद्ध हुई और उन्हें मिले लगभग 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स और 17 बार वे नॉमिनेट हो चुकी है, यानी उनका नामांकन किया गया फिल्मफेयर पुरस्कार में, जो बहुत ही बड़ी बात है। और बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए वे अपने फैंस के दिलों में जगह बनाती गई।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: 1992 की मूवी बेटा की तो बात हमने कर ली, पर फिल्म आई अंजाम 1994 में, और एक ऐसा अंजाम उन्होंने दिखाया कि मतलब ये फिल्म में उन्होंने एक एयर होस्टेस की भूमिका निभाई थी जिनकी शादी एक पायलट के साथ होती है, पर महज एक बार फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले एक रईस ज़ादे का दिल आ गया उनके ऊपर और उन्होंने उनकी जो जिंदगी थी पूरी तरह से तहस नहस कर ली। दीवानों की तरह चाहने वाले शाहरुख खान ने इसमें नेगेटिव रोल किया था और इस फिल्म के लिए भी लोगों ने उनकी जो एक्टिंग थी उसे बेहद पसंद किया। और इस फिल्म का वो जो गाना था, वो वाला जो उन्होंने एक शादी में डांस किया था, बहुत ही मजेदार सा गीत, भाई ये वाले जो फिल्मों के गाने होते थे ना उस जमाने में शादियों में, ऐसे गानों पर लड़कियां नाचती थी, उन्हें हूबहू कॉपी करती थी।

0: जो बन पे चुनरी गिरा के चली थी, हाथों में कंगना सजा के चली थी, चूड़ी टूटी चने के खेत में।
1: भाई यहाँ चूड़ी टूटी और वहाँ कितनों के दिल जुड़े। और इसी के साथ 1994 की जब हम बात करते हैं, फिल्म अंजाम के साथ ही एक और ऐसी धमाकेदार मूवी आई और वो थी हम आपके है कौन। हाय हाय वो पर्पल साड़ी, उनकी अदाएं, उनका जो नाच था, उनका लहराना, उनका बलखाना, उनका ठुमके लगाना,

भाई इतनी सारी फिल्में की कि हम क्या बताएं। सच में देखा जाए तो उनकी जितनी भी फिल्में रहीं लाजवाब से भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और वैसे आपको ये भी बताते चले कि आपने शायद माधुरी दीक्षित को नाचते हुए तो देखा होगा, पर क्या माधुरी दीक्षित जी को आपने गाते हुए सुना है? नहीं सुना? चलो सुना देते हैं आपको उन्हीं की आवाज़ का ये गीत जो उन्होंने गाया था गुलाबी गैंग फिल्म में, जिस फिल्म में वे नज़र आई थी 90s की एक और ऐसी अदाकारा के साथ, जूही चावला के साथ। वो भी तो एक ज़माने की रोल मॉडल थी सभी जवान लड़कियों के दिलों की। तो चलिए इसी फिल्म का ये गाना आपको सुनाते हैं जो माधुरी दीक्षित ने खुद अपनी आवाज़ में गाया था।

बिल्कुल, कहते हैं ना कि जो नृत्य कला के साथ जुड़ता है, जो संगीत कला के साथ जुड़ता है, वो कभी बूढ़े नहीं होते। और बिल्कुल 2007 में उन्होंने कमबैक किया था फिल्म आजा नचले के साथ, और इस फिल्म में भाई कोई नहीं कह सकता कि माधुरी दीक्षित दो बड़े बेटों की मम्मा है, और उन्होंने क्या लाजवाब परफॉर्मेंस दिया था। और इसी गीत के साथ आज के सेगमेंट को बस हम यहीं पूरा करेंगे। वैसे उनकी जीवनी पर पूरी बात करना मुझे लगता है एक घंटा कम ही लगता है।

ऐसे गाने बजे, हाथ में हो झाड़ू, तो कैसे हम माधुरी दीक्षित की स्टेप्स ना करें। झाड़ू लगाते लगाते बस कैलोरीज को बर्न कीजिए। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आज के सेगमेंट को बस यहीं पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे और हमारे बाद अगले सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगी किरण जानकी जी। हाँ, हमारी धरोहर कार्यक्रम

0: चलिए इसी स्फूर्ति के साथ जुड़ते हैं अगले सेगमेंट के साथ, और हम आपको याद दिला दें अभी 9 बजे के समाचारों के बाद आप जुड़ पाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम के साथ, जिसे प्रस्तुत करेंगी सुमिता सरकार, और इसका सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पाएंगे। MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देख पाएंगे, और रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पाएंगे। सामाजिक पहलुओं पर बात होती है मंगलवार के दिन, तो ज़रूर इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए, और भूलिएगा नहीं, अगर कुछ छूट जाए तो बस दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच इसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण तो नहीं पर रीब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। हर बरिस 21 मई के संवाद और विकास खातिर सांस्कृतिक विविधता विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट आयोजित करल जाला। न केवल दुनिया की संस्कृति के समृद्धि पर बात करे खातिर, बल्कि अंतर सांस्कृतिक संवाद के जो महत्व बा ओकर भूमिका पर बल देवे खातिर भी। अंतर सांस्कृतिक संवाद का है मतलब कि जो अलग अलग संस्कृति बा उ लोग के बीच एगो सामंजस्य आने के, एगो लॉमोनी आने के, और शांति और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करे खातिर ये बहुत ज़रूरी बा। यूनेस्को द्वारा 2001 में सांस्कृतिक विविधता के ये यूनिवर्सल डिक्लरेशन अपनैला के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा पहला हला 2002 में ये विश्व दिवस के घोषणा कर ले रहा है। समृद्धि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वैश्विक शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस मतलब सबको के जो अलग अलग संस्कृति बा उ सबके अपना के एक साथ जिए के जो साधन बा ओकर पर जोर देवे खातिर ई दिन मनावल जाला। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनावल गल सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 के एजेंडा, और दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनावल गल संस्कृति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संकल्प संवाद और सांस्कृतिक विविधता के अपनैला के बाद विश्व दिवस के ई संदेश पहला से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बा, जौन 17 गो सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित करल गल बा उ दुनिया के विविध संस्कृति के रचनात्मक क्षमता के आकर्षित करके और निरंतर संवाद के शामिल करके ओके स्थापित करे पर जोर देवेला। मतलब कि उ सब जो अलग अलग संस्कृति बा उ लोग के बीच एगो सामंजस्य आन के फिर क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक क्षमता के बढ़ावा देवे के इस सब पर ई दिन जोर देवल जाला। और ऐसन करला से ही सकल जाए ई विश्व में एगो ऐसन समाज के स्थापना करे जोन सकी सब समुदाय सब संस्कृति के लाभान्वित करे। संस्कृति के जोन विविधता बा ओके चाहिए हमेशा बढ़ावा देवे के और सकारात्मक परिवर्तन के एके एगो एजेंट के रूप में चाहेला देखे के, काहे कि एकर बल पर ही सकल जाए मूर्त और अमूर्त रचनात्मक उद्योग के बढ़ावा देवे जेकर में कल्चरल एक्सप्रेशन सांस्कृतिक अभिव्यक्ति संवाद बातचीत आपसी समझ और एनवायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ई सब कुछ इमें शामिल बा। सब कोई के आमंत्रित करल जाला ई दिन सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास के मूल्य में शामिल होवे के और ई क्षेत्र में अपन अपन योगदान देवे के। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
3: धरोहर
0: बजाते चला भैदानंद बीजन के आवाज में रखल एगो गीत के साथ आगे बढ़ब जा और हये गीत के साथ आज के कार्यक्रम हैजा पर समाप्त करब जा। बिल्कुल सुबह का नजराना कार्यक्रम यहीं तक रहा और हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी 10 बजे के समाचारों के बाद। तब तक के लिए जरूर साथ दीजिएगा।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मंगलवार 12 मई, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर सुमेरा आ चुकी है। सुमेरा, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार आदाब। आज राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी रखे जाएंगे। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम की गैर हाजिरी में अगिया नवोमा की अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान जवाब देंगी। सन 2014 से 2024 तक एमरसस द्वारा बेचे या खरीदे गए हवाई जहाजों पर सवाल जवाब होगा। एमरसस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राज रामलगन ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत थी तब जहाजों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाजों को बेचा गया था, जबकि एक रिपोर्ट में उच्च दामों का

0: जिक्र किया गया। इनसे बड़े नुकसान हुए। राजराम लगनर क्रोल जांच के बारे में भी पूछताछ करने की मांग करते हैं। राष्ट्रसभा में ही मॉरीशस और चीन के व्यापारिक संबंधों पर सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके अलावा बिजली के दाम में बढ़ोतरी, स्पोर्ट्स में शासन की बात, सार्वजनिक स्वास्थ्य और विदेशी कामगारों पर बहसें की जाएंगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई सवाल पूछे जाएंगे, खासतौर पर बुबासा कैद खाने में दो कैदियों की मौत के सिलसिले में। मॉरीशस में पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाए जाने वाला है। कैबिनेट की बैठक में नए एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू करने पर मंजूरी जताई गई। इस ढांचे के जरिए हवा की किस्म और कारखानों एवं इंसिनरेटरों से प्रदूषित उत्सर्जन पर काबू रखा जा सकेगा। कैथोबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते अधिकारी हल ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम करने का इरादा रखते हैं। अगर बहुतों के लिए मेट्रो एक तेज जरिया और कारगर परिवहन है, लेकिन कैथोबोन के बाशिंदों के लिए शहर में ही आने जाने के वास्ते ये प्रणाली मसला पैदा कर रही है। पीक वक्त पर ट्रैफिक की वजह से बहुत मुश्किलें होती हैं। अगर एक इमरजेंसी हो तो ये स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बन जाती है। कैथोबोन के रुदी ब्रायन केनु का कहना है कि इस हालत में सुधार लाने पर गौर किया जा रहा है। क्या मीडिया के लिए मॉरीशस में एक ओम्बुड्स पर्सन होना चाहिए? इस हफ्ते नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और पूर्व डीपीपी वकील सत्यजीत बुलेल ने फ्रीडम ऑफ प्रेस वैश्विक सप्ताह के संदर्भ में पत्रकारों के लिए मीडिया ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान फिर से ये मुद्दा उठाया। वकील बुलेल ने सन 2013 में जुरिस्ट ज्योफ्रे रॉबर्टसन की मीडिया लॉ एंड एथिक्स इन मॉरीशस नामी प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिश का हवाला दिया। इस दस्तावेज में एक आजाद मीडिया ओम्बुड्स पर्सन की बात की गई, जिसकी जिम्मेदारी ये होगी जनता की शिकायतें लेना, गलतियों में सुधार लाना और जर्नलिज्म पेशे को बाकायदगी से निभाना। इसके जरिए ना सिर्फ मीडिया पर नियंत्रण रहेगा बल्कि उनकी आजादी की हिफाजत करते हुए उनकी क्रेडिबिलिटी को मजबूत किया जाएगा। और विदेश की खबरों में ग्रेट ब्रिटेन में गृह सचिव शबाना महमूद उन कई कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं जो सर केयर स्टार्मर से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के उच्च अधिकारियों में तनाव पैदा हो गए हैं। ये समझा जा रहा है कि कैबिनेट में महमूद उन लोगों की माइनॉरिटी में है जो चाहते हैं कि सर केयर अपने पद छोड़ने का टाइम टेबल दे। आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई जाने वाली है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार राधा।
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: मंगलवार 12 मई रेडियो मॉरिशस पर और साथ ही जितने श्रोता और दर्शक हमें MBC के चैनल 3 के जरिए देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार। स्वीकार करें आज की चर्चा, इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। सुप्रभात आप सभी को। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम को इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसे आप देख पा रहे हैं MBC के चैनल 3 पर और इसका सीधा प्रसारण इस समय हो रहा है रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर। आपको ये भी याद दिला दें, इस प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही सपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। तो आज की चर्चा इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अभी से लेकर 10 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। और आज एक बहुत ही खास विषय को लेकर हम आ गए हैं आपके साथ। हर महीने मई महीने की 15 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और आज के समय में परिवार का क्या महत्व है, इस पर हम बात करेंगे। परिवार में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और परिवार से जुड़ी जो समस्याएं आजकल हमें आए दिन देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ साईवानी शंकर शंभू जी जुड़ चुकी है, जो एक साइकोलॉजिस्ट है और बच्चों और साथ ही बच्चों के माता पिता के साथ वो बहुत काम करती है। तो साईवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुमी जी,
0: और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है ना
1: जी,
0: क्योंकि परिवार ही हमारे जीवन का नींव है।
1: बिल्कुल,
0: हम जन्म लेते हैं, माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं और बड़े होने तक माता पिता के सानिध्य में हम रहते हैं। तो माता पिता के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और परिवार की बात करते हैं तो सिर्फ हम माता पिता तक सीमित नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी आते हैं जिनसे हमें बातें जानने को मिलती है, संस्कारों के बारे में, हमारे जीवन शैली के बारे में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का क्या महत्व है।
1: परिवार, फैमिली, ये शब्द शायद उनका महत्व सभी को नहीं आएगा, मतलब उनका जो गहराइयां हैं, क्योंकि परिवार से ही हम अपना जीवन की शुरुआत करते हैं। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो माता पिता के बहुत ही सानिध्य के साथ फिर आगे आगे चलकर उनके ही परवरिश से लेकर जब बड़े हो जाएंगे तो अपना परिवार शुरू कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो फैमिली दिवस है मनाया गया, लेकिन हम 15 मई को भी ये मनाएंगे। तो ऐसे परिवार, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, 6 टाइप्स ऑफ फैमिलीज है,
0: 6 तरह की कैटेगरीज में से बांटा गया है।
1: सबसे पहला है न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पर माता पिता और बच्चा या बच्ची,
0: जो अभी के समय में काफी कॉमन है।
1: पहले के जमाने में एक्सटेंडेड फैमिलीज होते थे, ये सेकंड टाइप। एक्सटेंडेड मतलब हमारे यहाँ दादा दादी भी है, चाचा चाची, जॉइंट फैमिली। हाँ, देन वी हैव सिंगल पेरेंट फैमिली, जैसे एक का शायद देहांत हुआ, एक ट्रेजिडी हुई या सेपरेशन हुआ, डाइवोर्स, सो सिंगल पेरेंट। फिर आता है चाइल्डलेस फैमिली, तो अबेंडन चिल्ड्रन, तब ये गवर्नमेंट आता है, CDU, ये सब। या दोनों माता पिता, कुछ कारण हो सकते हैं, उनका एक ट्रेजिडी हुआ, उनका देहांत हो गया, सो उनके माता पिता नहीं। फिर आता है स्टेप फैमिली, जो बच्चे को गोद लिया गया, अडॉप्टेड, सो इट्स स्टेप फैमिली। ओ एक पेरेंट ने फिर से शादी किया तो ये एक स्टेप फैमिली बन गया। फिर अंतिम आता है ग्रैंड पेरेंट फैमिली, जिनका बड़े बुजुर्ग है, नाना नानी या दादा दादी है, तो वो भी अपने नाता नाती पोते को संभालते हैं,
0: जिनके अपने माता पिता नहीं है।
1: जी। तो और ये भी अलग कारण हो सकते हैं, शायद माता पिता है लेकिन बच्चे को संभाल नहीं सकते,
0: या फिर कहीं बाहर काम करते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है,
1: या उनका देहांत हो गया, ये सब। सो ये 6 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, इसमें आदर्श वाला कौन सा है, द आइडियल फैमिली।
0: अगर इन सभी छह पर हम नजर दौड़ाए तो नंबर दो पर हमारी नजर जाती है एक्सटेंडेड फैमिली कहे या जॉइंट फैमिली कहे, जो अभी के समय में भी है लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि समय के साथ हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, हमारी जीवन शैली बदल गई है, बच्चे अपना घर चाहते हैं शादी के बाद, या फिर विदेश चले जाते हैं अपने करियर के बारे में सोचकर, तो ऐसे में जो है धीरे धीरे एक्सटेंडेड फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होते जा रहे
1: हैं। बिल्कुल, और ये कब होता है, जब जैसे आपने कहा ये जीवन का ही भाग दौड़ बदल गया, इट्स अ रश वर्ल्ड। फिर ऐसा भी सुनने को आया कि माता पिता बड़े बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स, जब बच्चे का ये विवाह हो गया तो वो स्वयं बोलते हैं आप अपना गृहस्थी अब बसाए अपने आप, आप आ जा सकते हैं लेकिन वी वांट सम पीस ऑफ माइंड। अब तो ये भी होता है, इट्स गुड, मतलब कई के अलग अलग पहलू होते हैं, सो इट्स अ मिक्स ब्लेसिंग्स। जैसे पहले के ज़माने में जब माता पिता के साथ दादा दादी नाना नानी चाचा चाची सब जुड़े हुए हैं तो बच्चे का संस्कार अलग होता है। यस, अब न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो रहा है, सब काम पर जा रहे हैं, जब बच्चे पाठशाला से लौटकर घर आते हैं तो वो अकेले अकेले पता नहीं क्या करते हैं, शायद अपना होमवर्क खत्म करेंगे या दोस्तों के साथ खेलने जाएंगे, कोई गाइडेंस नहीं है, निगरानी नहीं है,
0: देखने वाला नहीं है।
1: तो शायद वो कहते हैं परोस के, लेकिन परोस भी अपना बच्चा भी संभालेगा ना। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अब जो जमाना आ रहा है हम अपने बच्चों, क्योंकि वो ही आगे की पीढ़ी ले जाएंगे ना आगे आगे, तो उनकी परवरिश और उनके संस्कार हम कैसे जारी रखेंगे। पहले के ज़माने में तो नहीं हो सकता, बिकॉज पहले के ज़माने में इतना काम था लेकिन परिवार को बहुत महत्व देते थे, नाउ देते हैं लेकिन एक बदलाव सा आ गया है। कौन से बदलाव, अभी हम एन्यूमरेट बाद में बात करेंगे। सो वी हैव ऑल दैट। फिर आता है जो सिंगल पेरेंट्स, बहुत सारे जो बच्चे और पेरेंट आते हैं हमारे यहाँ फॉर काउंसलिंग, क्योंकि कुछ कारणों के वजह से उनका सेपरेशन हो गया, ठीक है, लेकिन जब सेपरेशन होता है तो ऐसा नहीं कि हम दुश्मन बन गए, क्योंकि प्यार से ही हम जुड़े थे, अब कोई कारण हो गया कि हम अलग हो गए, तो जब बच्चे आ गए तब इट्स वी हैव टू थिंक, बहुत सोचना पड़ता है सेपरेट होने से पहले,
0: क्योंकि अफेक्ट करता है सभी को,
1: सीधा बच्चे पर आएगा। क्योंकि बच्चे से पूछते हैं, बच्चे कहेंगे फैमिली मींस मामा पापा एंड मी, ओ मी एंड माय सिस्टर ब्रदर, ये एक स्ट्रक्चर है सेम। जब एक का निकल गया, शायद माता शायद पिता, तो उनका पूरा ये संसार टूट जाता है, बिखर जाता है, जैसे एक ग्लास को स्मैश किया, तो उनका ये संसार अब फिर से जुड़ने वाला तो नहीं, लेकिन उनकी परवरिश ठीक तरह से कैसे हो, तो एक पार्टनरशिप बनता है, इट्स ओके टू स्टार्ट लाइफ अगेन, ये होता है, इज गुड। लेकिन बच्चे का यू हैव टू कीप अ फ्रेंड काइंड ऑफ रिले, मतलब मित्रों के साथ की तरह, ताकि बच्चे का ये स्कूल हुआ, ये परीक्षा होने वाला है, ये छुट्टियां हैं, ये बीमार पड़ गई, यू नो चेक द होमवर्क, तो एक पार्टनरशिप जैसा, क्योंकि अपना अहम को साइड में रखते हुए बच्चों को ज्यादा ये
0: इम्पोर्टेंस देना चाहिए।
1: जी,
0: क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है ना, आने वाले कल का भविष्य है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान रखती है। और परिवार की बात करें तो माता पिता बड़े बुजुर्ग आते ही है, लेकिन बच्चे जो है मुख्य, मतलब कि एक सेंटर पॉइंट होता है ना, क्योंकि हर कोई जब परिवार के बारे में सोचता है तो बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। और अभी के समय में जिस तरह से परिवारों में जो है जो माहौल बन रहा है, हर कोई अपने अपने जीवन में व्यस्त है, बच्चे को समय तो दे रहे हैं लेकिन कभी कभार उस समय को हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी पूरा करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमें अभी के समाज में देखने को मिल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ही शिक्षा में किसी चीज़ की कमी है, या फिर हमारी जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई है कि हम उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट इसे आप कैसे देखती हैं?
1: जब माता पिता बहुत व्यस्त है, ये जाहिर सी बात है कि बच्चे वो अटेंशन पाना जानते हैं, जब फोन पर है या किस कोई अतिथि आ गया घर पर या एक सामाजिक इवेंट पर है, तभी ये बच्चा माँ के पास जाए।

0: रोने पड़ते हैं, मामा को ढूंढते हैं, ऐसा. तो जब आपने कहा कि पेरेंट्स मटेरियलिस्टिक से उनका ये समय पूरा करते हैं, तो क्या होता है, माता पिता प्रोवाइडर्स बन जाते हैं और बच्चे कंज्यूमर्स. जैसे हम एक शॉप में जाते हैं, हम कुछ कंज्यूम करने के लिए कुछ खरीदते हैं, तो उसी प्रकार इट्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जहाँ पर रिसर्चर्स ने देखा गया, ये बदलाव देखा कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ देंगे या समय देंगे तो बच्चे भी एक रोबोटिक तरह का जीवन बिताना शुरू करते हैं.
1: बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को फिर ये एक ये हो जाता है ना कि मैं ऐसे करूंगा तो मुझे इसके बदले में वो मिलेगा ना.
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि बहुत से माता पिता हम देखते हैं इसी चीजें हमारे भी नजर में आती है देखने को सुनने को कि ऐसे करोगे ना तो तब जाकर तुमको ये मिलेगा या वैसे करोगे तो जाकर, या फिर बच्चा जिद्दी हो जाता है, उसे पता है कि वो मांगेगा, वो रोएगा, वो जिद करेगा तो माता पिता को देना ही पड़ेगा. तो ऐसी स्थिति में जब माता पिता आ जाते हैं तो कभी कभार उन्हें मजबूरी में चीजों को करना पड़ता है
0: और फिर समाज की नजर में एक एम्बरेसमेंट होता है, तो चलो दे देते हैं ताकि लोग हमको ना देखें, है ना. तो ये बहुत कठिन होता है माता पिता के लिए क्योंकि अचानक से इट कैन बी अ बिजनेस काइंड ऑफ मीटिंग इवेंट, तो बच्चे भी अलाउड है. तो ये उनके संस्कारों में पड़ता है कि संस्कार की नींव से शुरू होता है कैसे हम व्यवहार करते. जैसे यहाँ हम एक स्टूडियो में है, एक शिष्टाचार होता है. हम एक मॉल में जाएंगे तो अलग होगा, है ना, परिवार में अलग होगा, लेकिन द फाउंडेशन जो नींव है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो माता पिता ही देते हैं. तो ज़्यादातर यदि मटेरियलिस्टिक ना दें और समय दें, इट कैन बी जैसे वी कॉल इट क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम मतलब एक घंटा दो घंटे ज़रूरी नहीं, शायद 10 मिनट भी हो, लेकिन क्वालिटी. कोई लैपटॉप फ़ोन टैबलेट नहीं, बच्चे का भी नहीं, आपका भी नहीं, है ना. आप पूरी तरह से बच्चे के साथ है, पूछेंगे, बात करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे या उनका किताब पुस्तक कॉपी बुक देखेंगे, उनकी शिक्षा. तो द 10 मिनट्स ये याद रखेगा बच्चे को.
1: और आपने कहा कि रूल्स जैसे सब पर लागू होते हैं, ये नहीं कि अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप ये नहीं करो तो पेरेंट्स करें. जैसे कि अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि इस समय आप फोन टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल ना करें, वहीं पर पेरेंट्स कर रहे तो इट्स नॉट फेयर, क्योंकि बच्चा देख रहा है आपको ना. क्योंकि अगर आप उस पर एक नियम लागू कर रहे हैं कि ये सही नहीं है या ये ठीक नहीं है, तो वही नियम आप पर भी लागू होना चाहिए. क्योंकि बच्चे जो है, जो आप बोलते हैं उससे ज्यादा बच्चा देख कर सीखता है, क्योंकि बच्चा सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, है ना.
0: और जो आप करेंगे वो ही पदचिन वो
1: वही
0: लेकर जाएगा. सो इसी कारण ये परिवार इज वेरी इंपॉर्टेंट. और परिवार बच्चे से ही शुरू नहीं होता. जब किसी का विवाह होता है तब से शुरू होता है, जब किसी प्यार होता है तब भी से शुरू होता है, है ना. क्योंकि व्यक्ति से हमने ये प्रेम कर लिया तो उनके भी माता पिता है या परिवार है, फिर दोनों के तरफ से. सो उस समय से ही ये माइंडसेट ब्रॉडन्स, मतलब बड़ा हो जाता है कि हाँ, यदि एक परिवार शुरू करेंगे, गृहस्थी में जाएंगे तो कैसा, व्हाट इज द प्लान, जैसे फैमिली प्लानिंग करते हैं ना, तो ये बहुत ही आवश्यक है.
1: चलिए, अगला सवाल हमारा आपसे ये होगा कि अगर हम बच्चों के मानसिक विकास की बात करें या बच्चे के किसी भी जो है डेवलपमेंट की बात करें, चाहे लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को ले लें, तो परिवार कितना बड़ा रोल प्ले करता है.
0: हाँ बिल्कुल. सो दोनों पहलू होते हैं, इट्स अ मिक्स ब्लेसिंग्स. जैसे कि कुछ आ गया स्कूल में, पाठशाला में, तो माता पिता को ये गौर रखना है, ध्यान रखना है कि बच्चे में बदलाव क्या क्या आता है बहुत कम उम्र से ही. यदि वो नेचुरली एनर्जेटिक है, वो कूद कर हंस कर कुछ बात करेगा, अचानक से सहमा सहमा सा बन गया, शांत में है, अपने कमरे में बैठा है, सो इट्स ऑलरेडी विजिबल, है ना. तो उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं है. यदि वो नहीं बोलेगा तो मित्रों के साथ या अध्यापक. ये दिस आर द 3 मेन कंपोनेंट्स फॉर अ चाइल्ड, जो पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके अध्यापक, उसके बाद मित्र, फिर परिवार, मतलब एवरीवन है, दादा. तो जब एक बच्चा एक कठिनाई से गुजर रहा है तो इमोशनल सपोर्ट एंड फैमिली सपोर्ट, कुछ ना कुछ हो हो जाता है, इट कैन बी द चाइल्ड इज टू बी ब्लेम्ड, उनकी गलती है.

0: लेकिन पहले से यदि हम डांटेंगे ना तो और भी दूर चलाता जाएगा, वो खोलेगा नहीं अपनी मन की बात, बोलेगा तो ये कठिन हो जाएगा. तो जस्ट लिसन, आप अपना समय दें, उनको सुने आराम से, उनको शांत करें, सूदिंग कि हम आपके साथ हैं. जो आपने किया शायद वो उसके उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आप ठीक है. भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, फिर बाद में अच्छा आपने किया, क्यों किया, क्या हुआ था, किसी ने मजबूर किया, स्थिति के अनुसार, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, स्थिति के आधार पर हम कुछ ना कुछ ये गलती कर बैठे, इंटेंशनली शायद नहीं है ना. तो जब ये आता है, अच्छा ये क्या कर सकते थे यदि ये ना करे, और ये ही संस्कार है. क्योंकि पहले हम गलती करते हैं, वापस से दोहराएंगे तो ये गलती नहीं होगा, क्योंकि हम जानबूझ कर करते हैं. तो इसीलिए जब बच्चे अपने मन की बात कहेंगे तो माता पिता ये सेपरेट करें, जो आपने किया वो गलत है लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं, फिर से आप नहीं दोहराएंगे, ये आप हमसे आश्वासन दें.
1: और कहीं ना कहीं ये चीज़ सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों पर ही लागू नहीं होती है. आई बिलीव ये सारी चीज़ें हर एक रिश्ते में आती है, क्योंकि परिवार की बात करते तो उसमें सिर्फ माता पिता ही नहीं आते, भाई बहन बोले, पति पत्नी बोले, या अन्य रिश्ते हो गए. मतलब कि कोई सामने वाला अगर गलती कर रहा है और वो आपके पास आ रहा है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हम उसे जज ना करें, इन अदर वर्ड्स ना, या फिर अपना जो है कंक्लूजन ना निकाले. पहले तो सुने, समझने की कोशिश करें. और बहुत से लोग इसलिए भी परिवार में एक दूसरे से शेयर करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उसे लगेगा कि आज मैंने अपनी परेशानी बोली, कल को हर बात पर मुझे उस पर ताना दिया जाएगा ना. ये एक काफी कॉमन चीज हो जाती है. तो फिर ऐसे में चलते, फिर वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि मैं बोलने जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा ही होगा.
0: हाँ,
1: तो इसलिए वो बोलता भी नहीं है, और समय के साथ वो दूरियां बढ़ते जाती है.
0: जी,
1: इस पर आप क्या कहेंगे?
0: कम्युनिकेशन पर आप आ गए, ये सेकंड है. सो पहले इमोशनल सपोर्ट, फिर आता है हेल्दी कम्युनिकेशन. हेल्दी मतलब जहाँ पर एक रिस्पेक्टफुल और ओपन वार्तालाप, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ से मतलब एक वार्तालाप में, जैसे अब हम कर रहे हैं, वी आर कीपिंग आवर पॉइंट्स, है ना, हम अपने पहलू दे रहे हैं, ये होता है फैमिलीज में. जब बच्चे भी परिवार के साथ वार्तालाप करते हैं तो इस तरह का भी ये होता है कि बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू हम सुने, फिर हम अपना भी दें, उनका ये नीचे ना दिखाने की कोशिश करें आपने जो कहा सही है, लेकिन हमारा भी ये सुने. फिर आता है जो एक डिस्कशन, जैसे कुछ गलत हुआ तो उस पर डिस्कस हो गया. कहते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम्स आ गए घर पर, बहुत ही ये आ रहा है आर्ग्यूमेंट्स. तो दो चीज़ होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशन. आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि कौन सही है, जैसे हम और आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो हम सही है, ये हम पूरी तरह से लड़ेंगे और कहेंगे कि नहीं हम सही, हालांकि हम गलत ही है, लेकिन वी आर नॉट थिंकिंग रैशनली. ये है आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट से बेहतर है डिस्कशन. डिस्कशन क्या है कि क्या सही है, जो चीज़ हम कह रहे हैं ना, ना कि व्यक्ति, ईगो को हम साइड में रखते हुए हम कह रहे हैं ये वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा है, ना कि जो आपने कहा. सो दिस इज व्हाट इज राइट रादर देन हु इज राइट. तो आर्ग्यू ना करते हुए हम डिस्कस करें. अब यदि बच्चे छोटे हैं, अनहेल्दी कम्युनिकेशन भी होता है, सो बच्चों के सामने ज़्यादा आर्ग्यू डिस्कस ना करें, क्योंकि ये असर उनको उनकर पर जाता है, और वो जानते नहीं किस विषय पर ये हो रहा है. वो सोचेंगे अरे हमारे कारण पापा और मामा लड़ रहे हैं. पहली चीज़ ये आता है, और ये ऑटोमेटिक है, नेचुरल है, इट्स इंस्टिंक्टिव.
1: और कहीं ना कहीं माता पिता में जो छोटी मोटी अनबन होती है उसका भी एक गहरा असर बच्चों पर पड़ता है.
0: बिल्कुल,
1: है ना, परिवार में जो है एक डिसबैलेंस आ जाता है, एक अशांति सी फैल जाती है, और बच्चे के मन में डर होता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो लोग आपस में बहस करेंगे.
0: इसी कारण वो अपने मित्रों की ओर जाते हैं या अलग लोग की ओर जाते हैं. शायद वो अच्छे लोग हो लेकिन बुरे संगत का भी शिकार बन सकते हैं. इसी कारण माता पिता को ध्यान रखना है. वी कैन हैव अ डिस्कशन विद द फैमिली, माता पिता कपल, तो बच्चे को कुछ चीजों में व्यस्त रखें और अलग कमरे में जाए, सॉल्व करें, फिर वापस आए.
1: हाँ, चलिए ऐसा करते हैं कि जितने श्रोता, जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो 4028085 है नंबर हमारा. आप हमें बेशक कॉल कर सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो मई महीने

कि 15 तारीख को हर वर्ष मनाया जाता है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो आप अपने विचार या आपके मन में कोई प्रश्न है तो बेशक आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए एक गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

0: चलिए आज की चर्चा प्रोग्राम, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, परिवार के महत्व को उजागर कर रहे हैं। और परिवार की बात करें तो आजकल हमारे परिवारों पर एक काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, काफ़ी बाहरी जो है दखल अंदाजी कहे, ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ही, हालात कभी कभार हमारे ऐसे हो जाते हैं जो इन्फ्लुएंस का काम करते हैं ना। तो किस तरह के जनरल इन्फ्लुएंसेस आजकल हमें हमारे फैमिली में या आपसी रिश्तों में नज़र आते हैं?
1: परिवार का ये भूमिका है बच्चों को और आगे की पीढ़ी को बढ़ाना, दैट्स द मेन
0: एग्जैक्टली
1: गोल ऑफ अ फैमिली है ना। तो परिवार जब शुरू होता है, हर किसी का एक पर्सनालिटी कैरेक्टर, अपना अपने पसंद की चीज़ें, प्रेफरेंसेस, ये सब होता है। तो ये पास डाउन होता है बच्चों पर, एटीट्यूड, बिहेवियर, अपना ये बर्ताव, कैसे हम कोप करते हैं स्ट्रेटजीज से, यू नो, कोपिंग डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ स्थिति आ गया, परेशानी है तो हम उसे कैसे फेस करते हैं, तो ये जाता है। तो टू अवॉइड, मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी है और निगेटिव भी है दोनों, क्योंकि एक मनुष्य परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ परमात्मा होता है, हम फिर भी इंसान हैं। सो हमारे में भी कमियां हैं, गुण है, अवगुण भी है, लेकिन ज़्यादा यदि हम जानते हैं हम बहुत क्रोध करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, तो एक एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम का शुरू करें, उनका फॉलोअप करें, या कुछ चीज़ें हो सकते हैं जैसे जो हमको ट्रिगर करते हैं एंगर, क्रोध करने पर, तो उससे थोड़ा हम अवॉइड
0: मतलब
1: करें,
0: वर्क ऑन आवर
1: सेल्फ, वर्क ऑन आवर सेल्फ।
0: पर बात यह आती है, जब हम कहते हैं कि हमारे बीच अंदर कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति खुद एक्सेप्ट नहीं करता है ना
1: जी।
0: कि अगर किसी को कहा जाए कि एक थेरेपी ले लो या एक सेशन ले लो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति किसी मेंटली डिसऑर्डर से जूझ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमें अपने आप को समझने में ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन आज भी इस बात पर एक टैबू है ना, लोग अपने आप में इन सभी कमियों को है ये मानते नहीं है, या फिर एक बच्चे में अगर कुछ ठीक नहीं है तो पेरेंट्स उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
1: यस, दैट्स सो ट्रू।
0: ये एक बहुत चीज है जो हमें देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में, कि कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे में या हमारे पार्टनर में किसी चीज की कमी है, और आपस में बात करके, कम्युनिकेट करके, या कोई एक्सटर्नल हेल्प लेकर अगर उसे हम सुधार सकते हैं, तो ये हमारे रिश्ते के लिए इट्स अ पॉजिटिव थिंग।
1: बिल्कुल, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट और एक ट्रोमा बन जाता है।
0: Exactly.
1: जैसे आपने कहा, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वो ऐसे हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि वो स्वयं ये बदलाव ऑब्जर्व नहीं किया, कई किसी और ने देखा और कहा, तो ये ईगो पर चोट आता है। तो तभी इट कैन बी ऑन आवर सेल्फ और इट कैन बी फॉर द चाइल्ड।
0: एग्जैक्टली। चलिए, यहाँ पर जितने सुनने वाले और जितने हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, 4028085 पर हमें कॉल कर सकते हैं। हम मिलते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार दीदी
0: जी, आपका स्वागत है।
2: परिवार को नमस्कार, जितने को बैठे हुए हैं,
0: नमस्ते।
2: आप सबको करजोड़ प्रणाम है।
0: कौन बोल रही है जी?
2: मोगू से नंदिनी नेपुल बोल रही हूँ।
0: जी नंदिनी जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या जोड़ना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
2: मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि आज के परिवार में संस्कार नहीं है बेटी
0: जी।
2: सबसे मूल मंत्र यही है, कैसे बोलते हैं, सौ के बात एगो बात, कि संस्कार नहीं था। जब संस्कार नहीं रही तब कुछ नहीं अच्छा रही। घर में बहुत डमाडोल रहेला, बड़ा आदमी के दादहो में, बड़ा आदमी के ओकर सेवा भी नहीं कर, ओके उठ के प्रणाम नहीं बोला, ओकर हाल चाल भी नहीं पूछ, ये इस संस्कार नहीं बा बेटी। मैं जो कह रही हूँ, मेरे घर में मैं भी इंसान हूँ ना, मैं भी एक दादी हूँ, नानी हूँ, लेकिन जो छोटा से मैंने बताई है, हमारा बेटा है, बहू है, बेटी, दामाद, नातिन, सब सूट उठ कर हमारा बेटा का बेटी, 3 बरस से मैंने उनको सिखाया, आज तक अभी HSC कर रही है, लेकिन बिना प्रणाम बोले मुंह धोवे नहीं जाला, जैसे उतरी तो प्रणाम दादी, प्रणाम दादा, दादा नहीं हवन, दादा रोलन तो उसने तब संस्कार चाहला दे के बेटी
0: जी।
2: हाँ, माँ बाप माओ बाप के आज के दुनिया में संस्कार नहीं बताओ, उन लोग के माँ बाप डरला नहीं दिलन जा संस्कार, समझ ला ना
1: जी।
2: काम तो सब कोई की है बेटी, काम नहीं रहल बीरो में लो औरत के तो हमने लीजिन में काम करते सब बहुत देरी से, बहुत देरी से, लेकिन काम रहल कान काटे जा, देपायास करे जा, गाय पोसा, बकरी पोसा, मुर्गी पोसा, लेका सुता के जा पानी आने, कुआरी खोल के झोंक के देखा लेका उठल बा कि नहीं, है पहले के समय रहल बेटी, है ये बोले के बा हमरा बेटी कि संस्कार सबसे प्रथम,
0: बहुत धन्यवाद नंदिनी जी आपके विचारों के लिए। बिल्कुल, जब परिवार की हम बात करते हैं तो संस्कार उसमें जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, क्योंकि संस्कार जो है हमारे हमारे हमारे बर्ताव में झलकता है ना, हमारे उठने बैठने में। और संस्कारों की बातें करें तो ये सारी चीज़ें लोगों को लगता है ये पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन ये पुरानी नहीं है, ये हमारे बोलचाल में दिखता है, हमारे पहनावे में दिखता है, हमारे लोगों के सामने वाले इसे हम कैसा बर्ताव करते हैं, कितना रिस्पेक्टफुली उनसे बात करते हैं। तो ये है बेसिक संस्कार, और कहीं ना कहीं ये बच्चों में हो, या हम स्कूल कॉलेज में जाए, या कॉर्पोरेट लाइफ में, या फिर शादीशुदा जीवन में, हर एक जगह पर ये उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है
1: जी। और एक चीज़ माता जी ने सही कहा, सब बिजी है, उस समय भी बिजी थे
0: एग्जैक्टली,
1: लेकिन संस्कार दिया अभी उनकी पोती या पोता जो भी ग्रैंड चिल्ड्रन उठते ही प्रणाम करते हैं दादी, ये सब तो ये महत्वपूर्ण है जब एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं।
0: एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ संस्कार नहीं, अपने आप में एक डिसिप्लिन भी है ना,
1: बिल्कुल
0: ना, क्योंकि डिसिप्लिन का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। इसे हम संस्कार कहे डिसिप्लिन कहे दोनों ही समान ही हैं। और जब एक व्यक्ति के लाइफ में संस्कार डिसिप्लिन होता है तो ऐसे व्यक्ति को तरक्की करने से कोई नहीं रोक
1: सकता, क्योंकि संस्कार से ही डिसिप्लिन आता है। जैसे महानुभाव हमारे माइथोलॉजीज में श्री राम जी, कृष्ण जी, जो भी ईसाई जी, तो ये सब एक स्पिरिचुअल और संस्कार मिले तब जाके उनका जीवन इतने अनुशासन पूर्वक हुआ और डिसिप्लिन और गर्व के साथ, हम भी गर्व के साथ कह सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम जहाँ पर जो कमियाँ माता पिता दे नहीं पा रहे हैं वो कमियाँ पूर्ण कर रहे हैं एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे दादी दादा चाचा चाची। फिर आता है, हम बात कर रहे थे जहाँ कैसे प्रभाव आता है परिवार और बच्चों पर, एक जैसे आपने कहा एक्सेप्ट नहीं करते है ना, स्वीकार नहीं करते। ऐसा ही एक छात्र उन्होंने रूलर को लायक तोड़ दिया था, तो टीचर से जाके कहा, टीचर ने कहा ठीक है आप ये मत करो, यू नो एक अनुशासन करेक्शन। फिर बाद में जो पेंटल्स है ना, पेंटल्स बहुत ही फ्रजाइल होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये ध्यान से सीखना चाहिए बच्चों को। तो क्या किया उस बच्चा, उन्होंने ये सारा जो टिप्स ऐसे करते करते तोड़ दिया, तो अंदर चला गया, मतलब यू कैन नॉट यूज, इट्स फॉल्टी। तो अदर फ्रेंड्स ने टीचर से कहा, टीचर कह रहे हैं एक किया कोई बात नहीं सारे बाकी ठीक है। तो बच्चे ने कहा नहीं, हम बोल रहे थे उनको ये मत करो, हमारे सामने उन्होंने सबका बिगाड़ दिया एक एक करके। सो द टीचर देन सेड इट्स बैड। फिर अगले कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मित्र का ये आंख ही निकालने की प्रयास की, यू नो, सो द लेवल ऑफ
0: अग्रेशन कह सकते हैं ना,
1: इल बिहेवियर, मिसबिहेवियर इज एस्केलेटिंग फ्रॉम ब्रेकिंग अ रूलर, पेंटल को खराब करना, और एक बच्चे का ये आंख ऐसा निकालना,

0: तो बाद में अध्यापक ने माता पिता से बात की, तो माँ आई, माता से ये सब कहा, फिर बच्चे भी आ गए, ये दिखाया, तो एक मतलब थोड़ा ये शोर
1: हुआ, हो गया। हाँ।
0: तो माता जी ने, मतलब यदि हम माता होते, आई मीन आई एम नॉट मैरिड, लेकिन जो माता पिता सुन रहे हैं, शायद आप क्या करते? आप पूछते, अच्छा ये किया, एक मिनट, बच्चे से पूछेंगे क्यों किया, ऐसा क्या हुआ, यू नो, माता इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, माई सन इज नॉट लाइक दैट, घर में वो ऐसा नहीं, वो कभी नहीं कर सकता, ये हो नहीं सकता, डिनायल। तो कौन सा उदाहरण, व्हाट डिड द चाइल्ड लर्न? हम कुछ भी करते हैं, हमारी माँ हमारे साथ देगी, फिर बाद में जब ये एस्कलेट होगा, पता नहीं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, क्राइम्स, यू नो, थेफ्ट, तो ये भी, तो उसका असर माता पिता को ध्यान देना चाहिए और बड़े को भी सुनना चाहिए।
1: बिल्कुल, चलिए अभी के लिए हम हमारे एक श्रोता को सुनते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो, नमस्कार।
2: हेलो, नमस्ते सुमित जी, मैं कॉटेज से आशा जाने बोल रही हूँ।
1: नमस्ते आशा जी, आपका स्वागत है, कैसी है आप?
2: मैं अच्छी हूँ, और आज के मेहमान को भी सादर नमन है।
0: नमस्ते।
2: हाँ जी, तो देखिए, ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार जो हमें मिला है वह है परिवार, और परिवार में सबसे जरूरी होता है प्यार। अब इस प्यार को, इस रिश्ते को किस तरह से हम निभाएं, इसके लिए सबसे जरूरी जो अहम चीज होती है वह है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को, पेरेंट्स को समझना चाहिए या पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए, बल्कि हम यानी कि हर उम्र में, कोई भी उम्र के वर्ग को, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। जरा सोचिए, सुबह से हम निकलते हैं काम पर जाने के लिए, और शाम को जब आते हैं तो हंसता खिलता परिवार देखकर मन को कितनी शांति मिलते हैं। अब उसी घर में यदि क्लेश हो, कलह हो कि मैं ये कर रही हूँ सुबह से, तुम कुछ नहीं हाथ बता रही हो, या बच्चे मेरे नेस रहे, अब ये छोटी छोटी बातों को अगर हम लेकर आगे बढ़ाएंगे तो परिवार में खुशहाली कभी नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी ये है हम साथ मिलकर किचन में एक दूसरे का हाथ बताए, साथ मिलकर डाइनिंग टेबल, और सबसे ज़रूरी जो बात होती है, कमरे में अकेले अकेले खाने के बजाय डाइनिंग टेबल में साथ मिलकर भोजन करने से प्यार और मधुरता और बढ़ती है। और एक बात जानना चाहती हूँ, जिस तरह से मैं सुन रही हूँ आप कह रही हैं कि हमें बच्चों पर किस तरह से ध्यान देना चाहिए, उसी प्रकार जब माता पिता थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम बच्चों को उनको समझना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए अब आप बूढ़े हो गए हो तो आपके आप हमारे बातों को क्या समझेंगे, हम तो इस उम्र के हैं, तो ये नहीं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए हम आज जो कुछ है उनके जैसे उनके आशीर्वाद से है, तो आज उनको हमारी जरूरत है, तो हमें उनकी केयर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और उनके दिमाग की तरह सोचकर उन्हें अपने पूरा समय देना चाहिए।
0: वेरी ट्रू,
1: धन्यवाद आशा जी आपके इन विचारों के लिए। बिल्कुल सही कहा कि जितना हम जो है परिवार की बात करते हैं, तो जितना ध्यान हम बच्चों पर देते हैं, उतना ही जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता के प्रति भी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, क्योंकि आज जो भी हम हैं कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से है, है ना, तो हमारा भी समय आता है जब हम उनको ध्यान दें, उनको समय दें, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो चलिए यहाँ पर बढ़ेंगे हम अगले। आजकल एक और चीज़ हमें बहुत देखने को मिलती है परिवारों में, कि जैसे कि हम अगर आम एक कपल की बात करें या परिवार के अन्य बड़े सदस्यों की बात करें, वो घर नहीं लौटना चाहते हैं ना। मतलब कि ऐसा लगता है कि घर पर आएंगे तो अनबन शुरू हो जाएगी, या इन डिफरेंसेस ना
0: प्लेजेंट नहीं है घर,
1: मतलब कि एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, चिड़चिड़ापन, इसके काफी फैक्टर्स है, काफी फैक्टर्स है, तो इससे हम किस तरह से मतलब कि टैकल कर सकते हैं?
0: ये कारण नहीं होना चाहिए कि हम घर ही वापस ना लौटे,
1: हमारे
0: मन नहीं है,
1: कब काम खत्म होगा तो कब हम घर जाएंगे, क्योंकि घर हमारे लिए एक सेफ स्पेस है, घर जाना, घर पर रहना। पर कुछ लोग होते हैं जो घर पर जाने नहीं, एक बार निकले तो घर जाने को नहीं देखते, क्योंकि परिवार से भागते हैं।
0: जो खुशहाल हैप्पी फैमिली सेफ प्लेस इतना अनप्लेजेंट कैसे हो गया कि अब लोग अपने ही घर में वापस जाना
1: नहीं पसंद करते,
0: मन नहीं है, लेकिन दूसरों के घर में जाना शायद पसंद है, ये भी है, यू नो, दे चूज अदर डायरेक्शंस। तो
1: या फिर कोई अलग, जैसे अलग, कि कहीं हाँ, बाहर समय बाहर बिताए जाना, दोस्तों के साथ
0: देर से लौटे जब सब सो गए होंगे हाँ। तो शायद घर में प्रॉब्लम नहीं है, घर के लोगों में कुछ है, क्योंकि उससे वापस आमना सामना करना हाँ। पड़ेगा,
1: या विचारों का मतभेद हाँ,
0: बिल्कुल हाँ। क्या बात करेंगे हाँ। सुनसान है, सन्नाटा है, पता नहीं कैसा है। सो पहले आइडेंटिफाई करें कि परेशानी क्या है, बात करें। एक व्यक्ति जो पहले से ही ऑफिस पहुंच जाता है, बाद में देर से लौटता है, लास्ट पर्सन टू गो बैक, और जब गाड़ी चलाता है जहां जहां ट्रैफिक हो वो उसमें घुस जाता है,
1: यानी कि ज्यादा देर से
0: घर लौटे, मतलब आई फाइंड इट। या एक व्यक्ति काम के बाद बस गाड़ी चलाता है ऑन द मोटरवे, ये मॉरिशस में है, घर जाने को नहीं, मन नहीं है, तो हम सोचे तो ऐसे पैसा केसेस, है फ्यूल के लिए,
1: ऐसे केसेस जब आपके पास आते yes. हैं तो आप उन्हें किस तरह की सलाह देते हैं?
0: तो पहले पूछना है कि परेशानी क्या है, ऐसी क्या अनप्लेजेंट चीज है घर पर कि आप जाना ही नहीं चाहते, उनको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद शायद एक चीज हो, ये एक स्थिति हो, या एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, ये भी होता है, ऑल काइंड्स ऑफ परेशानी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब ये व्यक्ति से हम पूछेंगे तब जाके एक एक करके, यदि एक व्यक्ति है तो उससे अच्छा संबंध नहीं हो पा रहा है, इट कैन बी इन द कपल, इट कैन बी ग्रैंड पेरेंट्स जैसे माता जी ने कहा, इट कैन बी चाचा चाची या कजिन, पता नहीं, या पड़ोसी भी जो बहुत परेशान करते हैं, तो उसके आधार पर उनसे उनका ये सलाह कैसे दे, हाउ टू हेल्प देम। पहले व्यक्ति से बात करें, यदि कुछ हो नहीं तो व्यक्ति आ जाए फॉर काउंसलिंग, थेरेपी, तो दोनों को फिर सुलझाएंगे। सुलझने के बाद तब प्लेजेंट माहौल बन जाता है, यदि कुछ चीज है तो उसका भी समाधान होता है। यदि पड़ोसी है देन वी कैन गो टू द गवर्नमेंट, क्योंकि पड़ोसी का लेवल, मतलब पड़ोसी को नहीं बोल सकते ना आप थेरेपी पर जाए, ये सही नहीं रहेगा, लेकिन वी कैन गो टू हायर पीपल, जो पड़ोसी शायद हम उनके माता पिता को जानते हैं, अलग पड़ोसी का साथ मिले, कोई झगड़ा नहीं, नो लड़ाई, लेकिन आप भी अच्छे से रहे
1: आपस में, बात हमको भी करके अगर हम सुलझा सकते हैं मसले को
0: हाँ, ये फिर आता है जो मन की स्थिति ही, घर पर सब ठीक है, शायद अपने में ही कुछ प्रॉब्लम है कि हम घर नहीं जाना था, ये भी होता है।
1: कभी कभार ऐसा होता है कि शायद वो प्रॉब्लम्स होते नहीं है
0: exactly.
1: लेकिन हम मन में सोच रहे हैं जी, शायद वो व्यक्ति बुरा नहीं है हाँ. लेकिन हम सोच रहे हैं
0: yes.
1: या फिर ऐसा लगता है कि वो हमें गलत समझ रहा है लेकिन वो हमें गलत नहीं समझ रहा है। तो कभी कभार हम अपने आप में ही उलझ जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और ये हमारे रिश्ते खराब होने के एक फैक्टर हो सकता है
0: बहुत बड़ा, क्योंकि हम अपने ही मन में जो भी बनाया हम इल्यूजन। तो फिर आता है उनको ये ध्यान पर आना चाहिए कि हमने ही ये क्रिएट किया, फिर यदि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस व्यक्ति से ये दूर करें, यदि ये स्वयं से ना हो सो ब्रिंग द पर्सन साथ में, इट्स कॉल्ड फैमिली थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग या कपल काउंसलिंग, तब जाके ये दूर होता है, क्योंकि यदि आप घर वापस नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यू नो, भटकना बहुत ही सरल है, इट्स इजी टू डिस्ट्रैक्ट एंड गो अवे,
1: आप भाग रहे हैं हाँ, ना अपनी समस्याओं से, फेस उसे सुलझाने का हाँ, की कोशिश नहीं कर रहे। और कब तक भागोगे,
0: बिल्कुल,
1: आखिर में तो आपको जाना वही है
0: एग्जैक्टली exactly. तो ये डर शायद कि कैसे करे, चैलेंजेस का सामना कैसे करे, उनका सुलझाव हम कहाँ पा सकते हैं। अभी यदि बार बार कुछ परेशानी आएंगे जैसे आपने कहा, तो टोकेंगे, ताना मारेंगे, तो अपने आप में ही वो अंदर बंद करके रखेंगे सारे चीजें, देन जब एक दिन आएगा वो एक्सप्लोजन की तरह होता है। एक्सप्लोजन मतलब जो एक स्प्राइट या कोक का बॉटल लेंगे ना, उनको शेक करेंगे है ना, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर अचानक से खुलेंगे तो पूरा ये फैल जाए,
1: होता है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति जब मन में चीजों को दबा कर रखते हैं फिर जब उसे निकालते हैं एग्जैक्टली तब वो इस तरह से रिश्ते खराब होते हैं, तब फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता
0: मुश्किल है। तो स्वयं भी एक मानसिक इलनेस पर पड़ जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होगा, डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी, फिर बाद में पता नहीं सुसाइडल थॉट्स, और अंतिम में ये कदम भी उठाते हैं। तो इसीलिए परिवार, और इट्स नॉट वन पर्सन टू बी ब्लेम्ड, हर समय एक ही व्यक्ति को हम दोष देंगे ये सही नहीं है, दोनों हाथ की आवश्यकता होती है ताली बजाने में, तो किसी ना किसी को एक समझौता करना पड़ेगा।

0: एडजस्टमेंट है ना, ताकि यदि बच्चे हैं या कपल में ही ये खुशहाली जिंदगी बिता सकते
1: हैं। हाँ। हमारे पास समय बहुत कम रह गया है और ये टॉपिक अपने आप में इतना इतना है। ये है कि शायद और एक दो एपिसोड हम करेंगे तभी भी शायद इस पर जो है बातें खत्म नहीं होंगी। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जाने से पहले, कोई संदेश, क्योंकि 15 तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने वाले हैं। पिछले रविवार को विश्व भर में मदर्स डे मनाया गया, मॉरिशस में तो मई महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अब तो माता पिता, भाई बहन, बच्चे सभी परिवार का हिस्सा है, तो कोई मैसेज, कोई संदेश आप जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनको देना चाहेंगे? अवश्य।
0: आज से लेकर शायद बहुत सालों बाद है ना, हजार शायद ओके हम और आप नहीं रहेंगे
1: जी,
0: तो एक दिन एक म्यूजियम में जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा था कि परिवार ऐसा होता है जैसे एक्सटिंक ना हो, यू नो, कि म्यूजियम में जाए, क्योंकि नाउ वी कैन फाइंड लेडीज पेरेंट बन रहे हैं, जेंटलमैन पेरेंट बन रहे हैं,
1: सेम जेंडर के लोग,
0: यस सेम जेंडर, किसी का प्रेफरेंस है कोई बात नहीं, लेकिन ये द आइडियल इज फादर मदर एंड चाइल्ड, जब तब जाके। तो इसलिए हमारा एक प्रोजेक्ट है और एक प्रोग्राम है, इसका होप कहते हैं। होप ऐसा होता है, होप ऑनर आवर पेरेंट्स एवरी डे, यस। तो यदि सब देख रहे हैं जो बोलते हैं सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स इन वट एवर यू डू इन लाइफ, और ऐसा ना हो कि कभी उनकी आंखों में आंसू ना पड़े, तो ये ऑनर आवर पेरेंट्स एवरी डे बहुत ही सुंदर, ताकि एक विजुअल है जब बच्चे देखने से ही ज्यादा सीखते हैं। सो टू सी ये मॉन्यूमेंट है, इट्स यूनिक इन मॉरिशस एंड इन द वर्ल्ड, ऐसे 11 है मॉरिशस में। ऑनर आवर पेरेंट्स एवरी डे कि ना केवल फैमिली डे पर, मदर्स डे पर, तब जाके हाँ मम्मा हम सब करेंगे, फिर बाद में फिर हम अपनी मनमानी करेंगे, नहीं,
1: बिल्कुल
0: प्रतिदिन। ये है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, फिर जो माता पिता हमको मार्गदर्शन दे, हमको भी जब बड़े हो जाएंगे उनकी देखभाल रख सके।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साईवानी जी, आप जुड़ी और परिवार के महत्व पर इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को, निज़ाम जी हमारे साथ रहे, अंजू, दीपशिका और जितने श्रोता और दर्शकों ने साथ दिया, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। नमस्कार आप सभी को।
2: आज की चर्चा 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के ठीक 10 बजे हैं, आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

0: अब कल केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने नैरोबी के स्टेट हाउस में एक राष्ट्र बैंक्वेट का आयोजन किया। राष्ट्र एवं सरकारी नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शामिल थे। नेताओं के अलावा सादेक इलाके के प्रतिनिधियों ने भी इस मौके पर अफ्रीका फॉरवर्ड समिट के पहले संस्करण में भाग लिया। अफ्रीका और फ्रांस के बीच टिकाव साझेदारी पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा समृद्धि बांटने, नवीनीकरण, व्यापार, निवेश और टिकाऊ विकास पर बल दिया जा रहा है। देश में बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से सुरक्षित रखने के मकसद से मॉरिशस टेलीकॉम ने माइटी प्रोटेक्ट पेरेंटल कंट्रोल सेवा की लॉन्चिंग की। इसके तहत नौजवानों को इंटरनेट और स्क्रीन के इस्तेमाल के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये पहल बढ़ते ऑनलाइन खतरों को लेकर माँ बाप की बढ़ती चिंताएं दूर करने का उद्देश्य रखती है। क्या मीडिया के लिए मॉरिशस में एक ओम्बुड्स पर्सन होना चाहिए? इसी हफ्ते नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और पूर्व DPP वकील सत्यजीत बुल्ले ने फ्रीडम ऑफ प्रेस वैश्विक सप्ताह के संदर्भ में पत्रकारों के लिए मीडिया ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान फिर से ये मुद्दा उठाया। वकील बुले ने सन 2013 में जुरिस्ट जेफ्री रॉबर्टसन की मीडिया लॉ एंड एथिक्स इन मॉरिशस नामी प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिश का हवाला दिया। इस दस्तावेज में एक आज़ाद मीडिया ओम्बुड्स पर्सन की बात की गई, जिसकी जिम्मेदारी ये होगी जनता की शिकायतें लेना, गलतियों में सुधार लाना और जर्नलिज्म पेशे को बाकायदगी से निभाना। इसके जरिए न सिर्फ मीडिया पर नियंत्रण रहेगा बल्कि उनकी आज़ादी की हिफाजत करते हुए उनकी क्रेडिबिलिटी को मजबूत किया जाएगा। कैथोबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते अधिकारी हल ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम करने का इरादा रखते हैं। अगर बहुतों के लिए मेट्रो एक तेज जरिया और कारगर परिवहन है, कैथोबोन के बाशिंदों के लिए शहर में ही आने जाने के वास्ते ये प्रणाली मसला पैदा करती है। पीक वक्त पर ट्रैफिक की वजह से बहुत मुश्किलें होती हैं। अगर एक इमरजेंसी हो तो ये स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बन जाती है। कैथोबोन के मेयर गुदी बायन केनू का कहना है कि इस हालत में सुधार लाने पर गौर किया जा रहा है। विदेश में यूरोपीय संघ के 27 विदेश मंत्रियों ने कल इसराइलियों के लिए नई पाबंदियों पर सहमति जताई, क्योंकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 में गजा जंग शुरू होने के बाद इसराइलियों के हमलों में काफ़ी तेजी आई। EU के विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि अब वक्त आ गया है कदम उठाने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। प्लेबोआ स्ट्रीट मेबर्ग में 80 साल की 80 years old मोहतरमा राबिया नासुर अली जो राबिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 11 बजे इनकी रिश्तेदार आंसू हाइडू के घर प्लेबोआ स्ट्रीट मेबर्ग से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए जुमा मस्जिद मेबर्ग और फिर दफनाने के लिए पॉइंट बोकुस रिविया दी क्रेओल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हम हमदर्दी हैं।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस की लहरों पर भक्ति धारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम फिर एक बार करजोड़ अभिवादन करते हैं इस भक्तिमय यात्रा भक्ति धारा में। माइक पर आप सभी का साथ दे रही है रत्ना, हमारा सप्रेम करजोड़ वंदन स्वीकार करें। इस यात्रा में आप हमारे साथ भक्तिमय मन से जुड़ेंगे, बस यही आशा रखते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे आचार्य सुरेश बद्री जी को ठीक 10:15 बजे वेद सुधा कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं इस प्रथम गणेश भजन द्वारा।

क्षमा समान न तप सुख नहीं संतोष समान, तृष्णा समान नहीं व्याधि कोई धर्म न दया समान। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि क्षमा करना बहुत ही बड़ा तप है और इसके समान दूसरा कोई तप नहीं। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं, किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं और दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम के समस्त आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन है। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की गई है कि सर्वप्रथम हम वेद पाठ एवं उसका भावार्थ सुनेंगे, तत्पश्चात एक भजन का आनंद लेंगे और अंत में एक वैदिक मंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं वेद पाठ। ॐ यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया संग्रणास्त्रीणि ज्योतिषिंषि सचते सषोडशी। प्रभु से बढ़कर कोई सूक्ष्म वा स्थूल नहीं, उससे बढ़कर कोई उत्तम और महान नहीं, इसलिए वही सबसे बढ़कर सूक्ष्म है, उत्कृष्ट है, वही सर्व

सर्वत्र सब लोक लोकांतरों में प्रविष्ट हैं, कोई भी तो ऐसा लोक नहीं या लोक में स्थित व्यक्ति व पदार्थ नहीं जो उसके बिना वर्तमान हो रहा है। ओम आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् पृष्ठम् यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् प्रजापतेः प्रजा अभूम स्वर्देवा अगन्मा मृता अभूम। प्रभु कृपा से हमारी आयु, प्राण शक्ति, चक्षु, श्रोत्र, पृष्ठ और यज्ञ, ये सब यज्ञ से समर्थ हो, सशक्त हो, हम प्रभु की सच्ची प्रजा बने, दिव्य गुण कर्म स्वभावों वाले बनकर हम सुख पाएं और अंत में संसार चक्र से छूटकर अमर हो जाए, मुक्त हो जाए। ओम सोमस्य त्विशिरसि तवेव मे त्विशिर्भूयात् मृत्योः पाह्योजोऽसि सहोऽस्य मृतमसि। परमपिता परमात्मा जैसे सौम्य गुणों का वा नानाविध ऐश्वर्यों का जग में प्रकाश करता रहता है, हमें चाहिए कि हम भी वैसे ही अपने जीवन में सौम्य गुण कर्म स्वभावों का प्रकाश करें, अपने कठोर परिश्रम से अनेक ऐश्वर्यों का जग में प्रकाश करें। और वह प्रभु ओजो रूप हैं, तेजो रूप हैं, पराक्रम युक्त हैं, वह सहो रूप है, वह सहनशील है, अत्यंत बलवान है, ऐसा सब प्रकार से सशक्त सबल अजर अमर प्रभु मुझे भी मृत्यु से बचाकर अमर बनाए। ओम युक्ते न मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे स्वर्ग्याय शक्त्या। हे सविता के उत्पन्न हुए संसार में हम एकाग्र साधकों को चाहिए कि वे दिव्य गुण कर्म स्वभावों वाले सबको उत्पन्न कर सन्मार्ग की प्रेरणा करने वाले प्राणों से भी प्यारे परम प्रभु के उत्पन्न किए हुए इस जगत में सांसारिक क्षणिक भोग विलासों के सुखों से ऊपर उठकर युगाभ्यास की रीति से शांत स्थिर एवं एकाग्र किए हुए मन से आनंद विशेष की उपलब्धि के लिए शक्ति भर पुरुषार्थ करके उस प्रकाश स्वरूप प्रभु की दिव्य ज्योति का साक्षात्कार करें। ओम शांति शांति।

ॐ विश्वदानिं सुमनसः स्याम पश्येमनु सूर्यमुच्चरन्तं तथा करत् वसुपतिर्वसूनां देवां ओहानो वसागमिष्ठः। श्रोताओ, यह वैदिक मंत्र अत्यंत प्रेरणादायक, कल्याणकारी तथा जीवन दर्शन से परिपूर्ण है। इसमें मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शुद्धि, सामाजिक समृद्धि तथा ईश्वर कृपा की मंगलमयी कामना निहित है। वैदिक ऋषियों ने केवल व्यक्तिगत सुख की नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना को अपने मंत्रों में स्थित दिया है। यही कारण है कि वेद मानवता को केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक जीवन दर्शन के रूप में दिशा प्रदान करते हैं। प्रस्तुत मंत्र भी उसी महान वैदिक चिंतन का प्रतीक है। इस मंत्र में मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारा मन सदैव शुभ, पवित्र और प्रसन्न रहे, हम निरंतर उन्नति और प्रकाश के प्रतीक सूर्य का दर्शन करें तथा संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी परमात्मा हमें दिव्य गुणों और श्रेष्ठ संपत्तियों से संपन्न करें। यह मंत्र केवल बाह्य सूर्य के दर्शन की बात नहीं करता, बल्कि आंतरिक

चेतना के सूर्य को जागृत करने का संदेश देता है। श्रोताओं, वैदिक संस्कृति में सूर्य को केवल एक भौतिक ग्रह नहीं माना गया है, बल्कि ज्ञान, प्रकाश, सत्य, जागरण, कर्मशीलता और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जब मनुष्य सूर्य के उदय का दर्शन करता है, तब वह केवल प्रकृति की एक घटना नहीं देखता, बल्कि जीवन के नए आरंभ, नई आशा और नई चेतना का अनुभव करता है। यही कारण है कि वेदों में प्रातःकालीन उपासना और सूर्य स्मरण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। श्रोताओं, मंत्र का पद पद अर्थ है विश्वदानिम, का अर्थ है सबको देने वाला, समस्त जगत के लिए कल्याणकारी। सुमनसः श्याम का अर्थ है हम उत्तम मन वाले बने, शुभ विचारों से युक्त हों। पश्येम नु सूर्यमुच्चरंतम, अर्थात हम उदित होते हुए सूर्य का दर्शन करें। तथा करद्वसुपति ही, वह धन एवं ऐश्वर्य का स्वामी परमात्मा, ऐसा करें। वसु नाम श्रेष्ठ संपत्तियों का, देवान ओहानह दिव्य गुणों को प्राप्त कराते हुए अवसा अगमिष्ठ अपनी कृपा और सहायता से हमारे समीप आए। इस प्रकार मंत्र का भावार्थ है कि हे परमात्मन, हम सदैव शुभ विचारों वाले बने, प्रतिदिन उदित होते हुए सूर्य का दर्शन करें और संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी परमेश्वर अपनी कृपा से हमें दिव्य गुणों एवं श्रेष्ठ संपत्तियों से संपन्न करें। श्रोताओं, यह मंत्र अत्यंत व्यापक अर्थ को धारण करता है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक जागरण, नैतिक उन्नति, सामाजिक सद्भाव तथा जीवन की प्रगति, इन सभी का समन्वय है। श्रोताओं, वैदिक साहित्य में मन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। यदि मन शुभ विचारों से युक्त हो तो जीवन में शांति, प्रसन्नता और उन्नति आती है। यदि मन नकारात्मकता, ईर्षा, द्वेष और क्रोध से भर जाए तो जीवन दुखमय बन जाता है। इस मंत्र में ऋषि सबसे पहले सुमनसः श्याम की प्रार्थना करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन की वास्तविक सफलता बाह्य संपत्ति से नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ मानसिकता से प्राप्त होती है। धनवान व्यक्ति भी यदि मानसिक रूप से अशांत है तो वह सुखी नहीं हो सकता। इसके विपरीत साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी यदि सुमनस्क है तो वह आनंदित रह सकता है। वेदों में मन की शुद्धि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वत, अर्थात हमारे पास सब ओर से कल्याणकारी विचार आए। यह वैदिक चिंतन मनुष्य को उदार, सहनशील और सकारात्मक बनाता है। आधुनिक युग में मानसिक तनाव, अवसाद, भय और असंतोष की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य बाहरी उपलब्धियां के पीछे भाग रहा है, किंतु आंतरिक शांति को भूलता जा रहा है। श्रोताओं, यह मंत्र हमें सिखाता है कि यदि मन शुभ हो जाए तो जीवन स्वतः सुंदर बन जाता है। सुमनस्क व्यक्ति समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भाव का वातावरण निर्मित करता है। वह दूसरों के सुख दुख को समझता है और मानवता की सेवा में तत्पर रहता है। श्रोताओं, प्रातःकाल उदित होते सूर्य का दर्शन करने से मनुष्य के भीतर नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि प्रातःकाल सूर्य किरणें स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। सूर्य का प्रकाश शरीर में विटामिन डी का निर्माण करता है, अर्थात मानसिक तनाव को

0: कम करता है तथा जीवन शक्ति को बढ़ाता है। किंतु वैदिक दृष्टि इससे भी आगे जाती है। वेद कहता है कि सूर्य बाहरी प्रकाश के साथ साथ आंतरिक अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार ज्ञान मनुष्य के जीवन से अज्ञान, भय और ब्रह्म को समाप्त करता है। वेद कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमया, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह प्रकाश केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक प्रकाश है। श्रोताओं, प्रस्तुत वैदिक मंत्र मानव जीवन के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है। इसमें मन की पवित्रता, सूर्य के समान तेजस्विता, परमात्मा की कृपा और देवत्व की प्राप्ति का महान संदेश निहित है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति है। वेदों का यही शाश्वत संदेश है कि मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर बढ़े। प्रस्तुत मंत्र उसी दिव्य प्रकाश का आह्वान करता है। यह केवल प्रार्थना नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को उत्कृष्ट बनाने का वैदिक मार्ग है। आदरणीय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। हमें विश्वास है कि वेद मंत्र की व्याख्या ने आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की होगी। इस कार्यक्रम को सजाने हेतु श्री यूसुफ जी का विशेष धन्यवाद है। आप सभी का स्नेह और श्रवण हमारे लिए अमूल्य है। पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

कबीर साहब कहते हैं, कछु कटे सत्संग से, कछु नाम के जाप, कछु संत के दश्ती, कछु दान प्रताप। अर्थात भक्त के पाप कई धार्मिक कार्यों से समाप्त हो जाते हैं, कुछ सत्संग वचन सुनने से, ज्ञान यज्ञ करने से, और कुछ नाम के जप मात्र से, कुछ संत के दर्शन करने से, तथा कुछ दान के प्रभाव से इंसान के, मनुष्य के कष्ट समाप्त होने लगते हैं। और आज मंगलवार का दिन है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान का दिन है। और जो आज के दिन बजरंग बाण का पाठ करते हैं, पवन पुत्र उन्हें सदा, उनका सदा कल्याण करते हैं। तो आइए, आप अगर दिनचर्या के कामों में व्यस्त हैं तो बस कार्य करते हुए बजरंग बाण का श्रवण करें।

श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति धारा कार्यक्रम का समाप्ति करने का समय हो चला है। आप सभी ने प्रेम और भक्ति भाव से हमारा साथ दिया, आप सभी को कोटि कोटि वंदन। और इसी के साथ आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे, यही शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति, फिर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा। नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। आज राष्ट्रसभा में विपक्ष नेता जुली जोंगा का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित रहेगा। संक्रामक बीमारियों के संदर्भ में आज की तारीख तक दर्ज मामलों, मौतों, उठाए गए कदमों, दवाओं, डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान आज कार्यवाहक प्रधानमंत्री अगया नवामाही से सवाल किया जाएगा और आज ही के एजेंडा में नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बिल को दूसरी पढ़त पर पेश किया जाएगा। आज राष्ट्रसभा के कार्य 11:30 बजे से शुरू किए जाएंगे। एमोरशस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राज राम लगन ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत थी तब विमानों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाज़ों को बेचा गया था जबकि रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया था। इनसे बड़े नुकसान भी हुए। राज राम लगन क्रोल जाँच के बारे में भी पूछ रहे हैं। कैथोबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते अधिकारी हल ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम करने का इरादा रखते हैं। अगर बहुतों के लिए मेट्रो एक तेज जरिया और कारगर परिवहन है, कैथोबोन के बाशिंदों के लिए शहर में ही आने जाने के लिए ये प्रणाली मसला पैदा कर रही है। पीक वक्त पर ट्रैफिक की वजह से बहुत मुश्किलें होती हैं। अगर एक इमरजेंसी हो तो ये स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण भी बन जाती है। कैथोबोन के मेयर ओदी पायन केनु का कहना है कि इस हालत में सुधार लाने पर गौर किया जा रहा है। विदेश में आसाम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सरकार के उम्मीदवार लगातार दूसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एक बड़ी भीड़ की मौजूदगी में हिमांता बिस्वा शर्मा शपथ ले रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। प्लेबुआ स्ट्रीट में बग में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड मोहतरमा राबिया नासुराली जो राबिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 11 बजे इनकी रिश्तेदार

0: आंसू हाइडू के घर प्लेबॉ स्ट्रीट मेबर्ग से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए जुम्मा मस्जिद और फिर दफनाने के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस रिविया दी क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फिनोरो टुडियर 11 AM रॉयल रोड पोस्ट डे फ्लैक में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री नवींद्र सोनाराम जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: शम्मे फरोज़ा।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये एक सूरा है जिसको हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को फर्ज कर दिया और इसमें साफ साफ आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो।

बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर हरगिज तरस ना आए। और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा किसी से निकाह नहीं करता, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता। और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है।

और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर चार गवाह न लाएं, तो उनको 80 दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल न करो, और यही बदकिरदार हैं। हाँ, जो उसके बाद तौबा कर लें और अपनी हालत संवार लें, तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है।

और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा और गवाह न हों, तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है, और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत। और औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती। और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हकीम है।

0: जिन लोगों ने ये बोहतान बांधा है वो तुम्ही में से एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा ना समझना, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है, और जिसने उनमें से उस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा।
1: سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

0: ये बोहतान लगाने वाले अपनी बात की तस्दीक के लिए चार गवाह क्यों न लाए? तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नजदीक यही झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शक्ल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता।
1: इज

जब तुम अपनी जबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था, और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बड़ी भारी बात थी।

और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों ना कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाएं। परवरदिगार तू पाक है, यह तो बहुत बड़ा बोहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम ना करना, और अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है।

जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है। और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है।

मोमिनों, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है।

और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब माल हैं, वो इस बात की कसम न खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ नहीं देंगे, और उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है।

जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है और उनको सख्त अजाब होगा, यानी कयामत के रोज, जिस दिन उनकी जबानें और हाथ और पांव सब उनके कामों की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला देगा और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक और हक को जाहिर करने वाला है।

0: नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन झूठों की बातों से बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है।
1: सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी आप समाअत फरमा रहे थे सूरह अन्नूर की तिलावत। सूरह अन्नूर कुरान पाक की 24वीं सूरह है, जिसमें माशरती अख़लाक़ियात पाकदामनी और ख़ानदानी क़वानीन पर ज़ोर दिया गया है। इसकी तिलावत के बड़े फ़ायदे हैं, इससे दिलो दिमाग को नूरानियत और हिदायत मिलती है, घर में अमन सुकून, बेहयाई का ख़ात्मा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकीज़गी के तस्करे के सबब इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत शामिल है। इसकी तिलावत ये फजीलत रखती है, बल्कि इसके अहकामात पर अमल करके एक पाकीज़ा मुआशरा कायम किया जा सकता है।

उस रब को पहचानो जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है। कई लोग जहर पी कर आते हैं फिर भी बच जाते हैं, और कई लोग बचने के लिए अस्पतालों में जाते हैं फिर भी मर जाते हैं। वाह मेरे रब, तेरी अजमत और शान के क्या कहने। मौज़ सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:27 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, मई की आज 12 तारीख है, और माह ज़िलक़द की आज 23 तारीख है। जितने भी लोग हज पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं उन सबको हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं,

5251707005, जी हाँ 5251707005 के ज़रिए आप हमें अपने पैगामात व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं।

अलावा बुआशरी से, जी हाँ बुआशरी से, बुआशरी से फातिमा कुतबाली अपने ससुर रसूल कुतबाली, अपनी सास खदीजा कुतबाली, अपने वालिद मरहूम महमूद अली जान, मरहूमा वालदा आसिया अली जान, अपने मरहूम शोहर अब्दुल वाहिद कुतबाली और मरहूम बेटे एहसान कुतबाली के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं और तमाम हाजियों के लिए ढेर सारी दुआएं भी भेज रही हैं। इसके अलावा न्यू कोफ की फातिमा, जी हाँ न्यू कोफ की फातिमा, तमाम हाजियों को, हज पर जाने वालों को हज की मुबारकबाद पेश कर रही हैं।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हम कमज़ोर और ख़ताकार हैं, हम तेरी रहमत के तलबगार हैं, हम पर रहम फरमा, हमारे दानिस्ता और गैर दानिस्ता गुनाह मुआफ़ फरमा, हमें खसारा उठाने वालों में से ना कर, हमारे दिलों को हिदायत के नूर से भर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。
1: 819 kilohertz, यह है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद। स्टूडियो की घड़ी में 2:30 बज रही है। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप जहां से भी हमें सुन रहे हैं, आप एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। कार्यक्रम है आपकी पसंद, आपका ये रोज़ाना प्रोग्राम आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे, तो हमेशा की तरह आपकी फरमाइश सराखों पे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। फ़ोन नंबर आपको पता ही है, हमारा फ़ोन नंबर है वो है 4028085। हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251700। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे, रेडियो मॉरिशस पे 2:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हम आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ अनीता जी है। अनीता जी हमेशा जो है हमारे साथ जुड़ी रहती है, और आप पिछवेजे सैपिया की रहने वाली है, और ये गीत जाएगा आपके 3 बेटियों के लिए, काजल, शीतल, दीक्षा, आपके दामाद है वितिश और आपके पति है बालदेव जी। साथ में है हमारे साथ आप नुवेल फ्रांस की रहने वाली माँ गायत्री जी है, ये गीत जाएगा आपके बेटे अजय के लिए। साथ में ये गीत जाने वाला है आपके लिए सुनीता जी, जो कि कांगोप की रहने वाली है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे आशा भोंसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप सुन पाएंगे।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस समय विद्या जी है, यूनियन पार्क की रहने वाली। और ये प्यारी सी गज़ल जाएगा उनकी चाची कुमारी के लिए। उनकी बहन है सती, साथ में है सुरेखा, वेदना, विमला, प्रीति और उनके सभी दोस्तों के लिए भी। और एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल है और ये गज़ल जो है आप सुन सकेंगे तलत अज़ीज़ की ज़ुबानी।

चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में दोपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार हम आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखेंगे इसी चैनल पे। तो चलिए, हमारे साथ जो है सरिता जुड़ी हुई है कथोबोन से, तो उनके नाम जो है ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। साथ में है साधना जी, रिविया डी क्रेओल की रहने वाली हैं और आपके सभी परिवारों की ये प्यारा सा गीत हम चला रही है।

नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। एक नई अफ्रीका ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा एकजुट और ज़्यादा लचीली, यही संदेश आज नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में शामिल लगभग 40 अफ्रीकी राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार प्रमुखों ने दुनिया को दिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम का सम्मेलन कक्ष में पहुंचने पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने स्वागत किया। राष्ट्रपति रूटो का भाषण, जो अफ्रीकी महाद्वीप के आत्म वित्त पोषण पर केंद्रित था, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला रहा। भाषणों के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण घड़ी फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों द्वारा अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने के समर्थन की पुनः पुष्टि करना रही। चिकुनगुनिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस और मॉन्कीपॉक्स के मामले मॉरिशस में दर्ज संक्रामक रोगों के प्रकोपों में शामिल हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने आज सुबह संसद में कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष नेता जूले शोंगो द्वारा पूछे गए एक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के जवाब में दी। मंत्री के अनुसार चिकुनगुनिया के 2816 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 102 मामले फिलहाल सक्रिय हैं। अन्य सभी मरीजों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ कर दिया गया है। इसके अलावा 5 मामले विदेश से दर्ज किए गए हैं। डेंगू के संबंध में 1 स्थानीय और 6 विदेशी मामले सामने आए हैं। सभी मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। लेप्टोस्पायरोसिस के 21 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। मृतकों में बीमारी के गंभीर लक्षण थे और वे अन्य रोगों से भी पीड़ित थे। 1 मामले में मरीज की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी जब लेप्टोस्पायरोसिस का पता चला। एमपॉक्स के 2 विदेशी मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें 1 मॉरिशस निवासी शामिल था। दोनों मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उनके संपर्क में आए लोगों में संक्रमण का कोई संकेत नहीं मिला है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया जाता है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नर्सेज स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। वे दिन रात मरीजों की देखभाल कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मॉरिशस में स्वास्थ्य केंद्रों में इनकी कमी को देखते हुए विदेशी नर्सों की भर्ती की जा रही है। कुछ निजी क्लिनिकों में इनकी बढ़ती संख्या भी देखी जा सकती है। और विदेशी खबरों में हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज के अंतिम यात्री भी अब उतर चुके हैं, जबकि अधिकारियों ने इस घातक प्रकोप से जुड़े 3 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की है। एमवी होंजेस कल टेनेरिफ से नेदरलैंड्स के लिए रवाना हुआ, जब उसके अंतिम 6 यात्री और कुछ सदस्य दल जहाज से उतर गए। इस जहाज पर यात्रा करने वाले 3 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 2 में वायरस की पुष्टि हुई थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। अवेन्यू डे पायों के मेजिन कॉन्डेमास्क में 82 साल के 82-year-old के जनाब भाई कसम गंगा पौसांड इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज शाम 5:30 बजे उनके बेटे मोहम्मद हनीफ गंगा पौसांड के घर अवेन्यू डे पायों के मेजिन कॉन्डेमास्क से उठाकर मेजिन कॉन्डेमास्क का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5:30 PM। रॉयल रोड से चमिल थ्रियोले में 55 साल के 55-year-old के श्री यशराज चंबित, जो आकाश

0: वर्ष से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज सफर बाद के 3:30 बजे उनके घर रॉयल रोड से चमिल थ्रियोले से उठाकर टेमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। रॉयल रोड पस द फ्लैक में 75 साल के 75-year-old के श्री नवेंद्र सुनाराम, जो विनोद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: आपकी पसंद।
4: चलिए श्रोताओं, हम फिर से वापस आ गए हैं आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर। सपहर के 3:05 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक। तो चलिए, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है आपके लिए। सुरेखा जी देपिने की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, साथ में वैदिक रहो की रहने वाली साधना जी ये गीत अपने समस्त परिवारों के लिए चलाना चाहती है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत है, विनोद राठौड़ की आवाज़ में ये गीत हम सुन पाएंगे।

शेयर की ओर हम बढ़ेंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज हमें प्राप्त हुआ है और आप है आशा जानू जी जो कि कॉटेज की रहने वाली हैं आप, और ये प्यारा सा गीत जो है आपके लिए फिल्म अशांति से लिया गया, और यही गीत जो है आपकी मामा कुमारी के लिए, आपकी नेफ्यूज़ है शुभम ऋषभ, साथ में है दीदी आरती, आपकी जीजू है राज, सभी जानू परिवार है, चित्रा जी है, भाई विजय है, और साथ में है नंदिनी जी, जेतिता है, और साथ में है धीरज और वीना आंटी। तो इन सभी लोगों के लिए ये प्यारा सा गीत जाने वाला है, तो ये गीत जो है आशा जानू जी की फरमाइश पे। तो चलिए श्रोताओं 4028085 पे बहुत ही प्यार के साथ आप निभा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे, आशा भोंसले और अमित कुमार की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत हम सुन पाएंगे।

चलिए, बहुत ही बढ़िया सा नज़ाना आशा जानू जी की फरमाइश पे मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे। चलिए, हमारे साथ इस समय संजय जी है पोर्टविस के रहने वाले और उनका ये मनपसंद गीत फिल्म दो रास्ते से लिया गया और ये गीत जो है आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन पाएंगे।

आपकी पसंद श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ इस समय मुंज है एक्वायो की रहने वाली और उनके पति है चांद। चांद अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो चांद जी को हम कहेंगे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तो आपके सभी बच्चों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आई है अविशा की तरफ से, साथ में है अभिषेक और अविनाश। आपकी बहुएं हैं जिंकरी, साथ में है नीलम, निया है, निक्षु है आपके नाती पोते, और समस्त फोकेचन परिवार है जो कि एक्वायो के रहने वाले। और जितने भी आपके दोस्त हैं, सगे संबंधियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए एक प्यारा सा गीत आपके समस्त परिवारों की तरफ से।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रख रहे हैं और 4028085 पे हमारा साथ शोभा जी ने दिया और उनका ये मनपसंद गीत जाएगा उनके सभी परिवारों के, खास गीत जाएगा उनकी माताजी के लिए। फिल्म का नाम है तलाश। तो चलिए शोभा जी की पसंद पे असदी बर्मन की आवाज़ में ये गीत हम सुन पाएंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। श्रोताओं, बहुत ही प्यार के साथ आप निभा रहे हैं, तो तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे हमेशा की तरह हमारे साथ निभाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है आप है लीला जी। लीला जी जो है बुआशरी की रहने वाली है, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत जाएगा उनके समस्त परिवारों के लिए, उनके सभी बच्चों के लिए। और फिर ये अगला गीत जाने वाला है केश जी के लिए। केश जी जो है कतबोन की रहने वाली है, ये गीत जाएगा उनके दो बेटियों के लिए, नेहा है, नीतिशा है, उनके दामाद है एल्विन, और उनके सभी परिवारों के लिए ये गीत जाने वाला है। और साथ में है उनके पति, जी हाँ उनके पति है आनंद जी, तो उनके नाम भी ये गीत जाने वाला है। और इस समय हमारे साथ जो है गीता जी है पोंफिया की रहने वाली, ये गीत जाएगा उनकी बहन के लिए जो कि मीरा जी है, उनका नाम न्यूगोव की रहने वाली, और ये गीत जाएगा उनके सभी बच्चों के लिए। साथ में है आदित्य, अरव, जानवी, तो उनके समस्त परिवारों के लिए। साथ में है रोहित जी, उनके पति के लिए भी। तो एक प्यारा सा गीत है, फिल्म का नाम है सागर, और आपको पता है फिल्म सागर के सभी गाने जो है बेहद ही हिट हुए, और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है हम शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। और ये प्यारा सा गीत SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओं, काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं कब उनका गाना जो है चलने वाला है। अनिता जी है त्रियोली की रहने वाली और उनका ये मनपसंद गीत जाएगा उनकी बेटी अंजू के लिए। उनके दामाद है वेद, बेटा है सचिन, बहू है पूजा और साथ में है कियान, शफिया, समस्त परिवारों के लिए ये प्यारा सा गीत जाने वाला है। फिर है शोभा जी है पोम्पे मुसिस की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो ये प्यारा सा गीत जो है शोभा जी के नाम भी हम करेंगे। और ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय सरिता जी है, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। ये गीत जाने वाला है उनके सभी परिवारों के, उनके दो बच्चों के लिए, अनिल है साथ में है तिशा और उनके सभी परिवारों के लिए। फिर ये गीत जो है हम चलाने वाले हैं हमारे साथ इस समय त्रिवेणी जी है गुडलैंड्स की रहने वाली और ये गीत समस्त मोहन परिवार के लिए।

तो चलिए, जन्मदिन हो तो दिन अपने आप खास बन जाता है। हमारे साथ अनीता जी है त्रियोले की रहने वाली, और साथ में है सुनीता जी कोविडाउंस की रहने वाली। उन्होंने कहा है कि उनकी मामी का जन्मदिन है, जो कि है देविका करनासी का जन्मदिन है। शुभकामनाएं पति प्रेमलाल की तरफ से, दो बेटियों की तरफ से भी। साथ में है जगदीश जिंगत जी का जन्मदिन है, शुभकामनाएं आई हैं पत्नी शोभा की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से। आकाश है, सावन है, समस्त जिंगत परिवार है, सभी दोस्तों की तरफ से भी जगदीश जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में देविका जी को भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ सभी परिवारों की तरफ से। और व्हाट्सएप पे इस समय काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। शरीफ जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप बेलवेडेया के रहने वाले हैं, तो आपके जन्मदिन पर शुभकामनाएं जो है भेज रही है आपकी बेटियों की तरफ से। रायसा है, रुकाया है, अरशाद है साथ में, और आपकी बीवी है वाविफा बिहारी, तो उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं। और साथ में आपके सभी भाइयों की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से शुभकामनाएं। समस्त बिहारी परिवार है और महमूद हुसैन परिवार है, ये सब जो परिवार है वो लोग बेलवेडेया के रहने वाले है, तो उनकी तरफ से भी, उन लोगों की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो चलिए, ये प्यारा सा गीत आप लोगों के लिए हम चलाएंगे। आप ज़िंदगी में उन्नति तरक्की करते जाए और साथ में आप हमेशा स्वस्थ बनी रहे, तो हमारी यही कामना है।

0: जियो हजारों साल साल के दिन हो पचास हजार तो।
1: नारायणी जी है लॉन्ग माउंटेन की रहने वाली, ये अगला गीत जो है उनके नाम हम करेंगे। और साथ में है इस समय दिलीप जी, आप कोंगमा के रहने वाले हैं, तो ये अगला गीत आपके नाम हम करेंगे आपके समस्त परिवारों के लिए भी। संगीता है, मनीषा है, किशनवी, निशान और दानन, तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम कर रही है। फिर हमारा साथ जो है इस समय आप सरिता जी है कथोबोन की रहने वाली, आपके नाम भी ये अगला गीत हम कर रहे हैं। और सुदेवी जी है वाकवा की रहने वाली और त्रियोले के समस्त परिवारों के लिए, रामरतन परिवार है, रामगुलाम परिवार है, कुआओ परिवार है, तो इन समस्त परिवारों के लिए ये अगला गीत, खास ये गीत दीदी ललिता जी के लिए और कुशल परिवार के लिए। दीदी सुनीता है, देविना है, चंदा, वंश, वैभव, वीर, निया, ये सब लोग जो है मालेंगा के रहने वाले हैं। तो चलिए ये अगला गीत हम सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है शिरीन फरहाद।

आपकी पसंद कार्यक्रम की अंतिम भेंट में फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर और इस फिल्म से लिया गया गीत है जाएगा। हमारे साथ इस समय जो है व्हाट्सएप मैसेज पे हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं, तो ये अंतिम नजर इन सभी लोगों के नाम हम करने वाले हैं। समस्त बंधु परिवार है त्रियोले के रहने वाले, हमेशा हमारे साथ जो है ये लोग जुड़े रहते हैं। और हमारे साथ इस समय जो है विश्वानी जी है हमारे साथ, विश्वानी रामरतन जी है हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये गीत है जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए। तो श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हुआ। जाने से पहले आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी साथ देने के लिए, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए। तो कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और आप तमिल भाषा में कार्यक्रम कलाईवाणी के साथ सुन पाएंगे। आप सभी को नमस्कार।

चलिए हमारे साथ विश्वानी डुमेन जी है वाकुआ की रहने वाली। ये गीत जाए गांव की सभी सहेलियों के लिए। नीला, प्रतिभा, शोभा, साथ में है गीता गजाधर और उनकी बहनें हैं इंदिरा और शारदा। तो चलिए इन लोगों का नाम हम जोड़ रहे हैं, काफ़ी देर से लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए आपके नाम ये प्यारा सा गीत हम कर रही है।

0: भोले बिसरे गीत हर गुरुवार रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: बिल्कुल जी, भूले बिसरे गीत को लेकर हम फिर हाजिर हो गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए चेक योर टाइम, 5:09 हो चुके हैं और आज है ट्यूसडे 12 मई 2024। की निशान तमाइक साथ देने के लिए ऐसे खूबसूरत पुराने नगमों को लेकर हम आ गए हैं जी आपका साथ निभाने के लिए और रहेंगे 6 बजे तक। फिलहाल के लिए चलिए जी उन गलियों में जहाँ पे पुराने गीतों की जादू छा गए हैं और वेरी मच हो कि आपको ये अगला गाना बहुत ही अच्छा लगेगा जो 1963 से लिया गया और ये है मूवी बांटिनी से और ये है आशा भोसले की आवाज में, खासकर उनके सारे फैंस के नाम।

0: भोले बिसरे गीत हर गुरुवार रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: बिल्कुल जी, हमेशा हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे गाने जो शायद आपका फेवरेट हो, शायद जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हो। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी कितनी भी तेज़ क्यों ना हो जाए, पुराने गाने हमेशा दिल को सुकून ही देते हैं। आज के इस खास शो में हम लेकर आए हैं बिल्कुल वो गीत जो हर जनरेशन को जोड़ देते हैं और प्यार और एहसासों को जैसे धागा होता है ना, मुस्कुराते रहने, क्योंकि ओल्ड बॉलीवुड मेलोडीज़ फिर से सजाने लगे हैं आपके इस खूबसूरत से आफ्टरनून को, सिर्फ और सिर्फ भूले बिसरे गीत में रेडियो मॉरिशस पर किनिशा के साथ। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: खरोश, हमले की तैयारी करो,
3: जल्दी करो।

0: आसमान में आओ, किले की दीवारें टूट रही।
1: दारान और शाह समान
2: वजीर बहर दुश्मनों के हमले का मुंह तोड़ जवाब।

तो चलिए जी, टाइम हुआ है 5:55 और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत गिनेशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, वैसे रेडियो के इस रंगीन सफ़र में आप सभी का हमने बड़े प्यार से साथ दिया है और हमेशा देते रहेंगे, और चाहते हैं कि अगले हफ्ते फिर जब हम आएंगे फिर से आपका साथ हम इतने प्यार से निभाएं, जहाँ हर गाना एक कहानी है और हर लफ्ज़ एहसास दिलाता है और हर धुन एक याद बन के रह जाती है। तो बस आप लोगों ने महसूस किए होंगे इन पुराने बॉलीवुड के जरिए, हाँ जी, पुराने बॉलीवुड संगीत का वो जादू जो आज भी दिलों में जिंदा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा, हम फिर आएंगे, फिर से आप लोगों का साथ देंगे भूले बिसरे गीत में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: सभी को हमारा नमस्कार। शाम के ठीक 6 बजे हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रंगनादन पदयाची द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट के बाद बैंक ऑफ मॉरिशस ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय बैंक स्पष्ट करता है कि 2025 में न तो 83 बिलियन रुपए की रकम के नोट की छपाई हुई है और न ही सरकार के मध्य इतने पैसे का ट्रांसफर हुआ है। एक नया अफ्रीका, ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकजुट और ज्यादा कारगर, ये संदेश आज नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन समारोह में एकत्रित लगभग 40 राष्ट्र और सरकारी नेताओं द्वारा विश्व को दिया गया। डॉ. नवीन राम गुलाम की अनुपस्थिति में आर्यन नवोमारी अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रही हैं। राष्ट्रीय सभा में आज उन्होंने सदन के प्रमुख के रूप में कार्यों की अध्यक्षता संभाली। कई बार अपनी जान खतरे में डालकर स्वास्थ्य कर्मचारी मरीजों की सेवा और उनका इलाज करते हैं। आज 12 मई को

0: मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मौका है उन फ्रंटलाइनर्स का आभार प्रकट करने का। इस संदर्भ में आज कई गतिविधियां आयोजित की गईं और इस क्षेत्र के कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। और विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा शांति प्रस्ताव ठुकराए जाने को मूर्खता कहा। उन्होंने कहा कि अब वे इस कमजोर युद्ध विराम पर और समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और अब पेश है समाचार विस्तार से। पूर्व वित्त मंत्री गंगाना डेन पदयाची द्वारा अपनी फेसबुक पेज पर किए गए एक पोस्ट के बाद बैंक ऑफ मॉरिशस ने आज सुबह प्रतिक्रिया दी। एक बयान में बैंक ने कहा कि उसने सोशल मीडिया पोस्टों और समाचार लेखों में 2025 में कथित तौर पर 83 बिलियन रुपए छापे जाने संबंधी फैलाई गई झूठी खबरों की जानकारी ली है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने स्पष्ट किया है कि 2025 में ना तो कोई मुद्रा छापी गई और ना ही सरकार को कोई धनराशि हस्तांतरित की गई है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने यह भी कहा कि लेन देन से संबंधित विवरण उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित बुलेटिन में देखे जा सकते हैं। एक नई अफ्रीका अधिक मजबूत, अधिक एकजुट और अधिक लचीली, यही संदेश आज नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में शामिल लगभग 40 अफ्रीकी राष्ट्र और सरकारी प्रमुखों ने दुनिया को दिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम का सम्मेलन कक्ष में पहुंचने पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने स्वागत किया। राष्ट्रपति रूटो का भाषण, जो अफ्रीकी महाद्वीप के आत्मवित्त पोषण पर केंद्रित था, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला रहा। और प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम विदेश यात्रा पर हैं और उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगियान नवामागी अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रही हैं। राष्ट्रीय सभा में आज उन्होंने सदन के प्रमुख के रूप में कार्यों की अध्यक्षता संभाली। पीएमक्यूटी सत्र के आखिर में उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल जैसा रहा। ज्यादा जानकारी करुणा लालू के साथ।
1: मंगलवार को 11:20 पर मुस्कुराते हुए फाइलें हाथ में लिए अंतरिम प्रधानमंत्री ने संसद भवन में प्रवेश किया।
2: Comment allez-vous? Bien, merci. Je suis sereine.
1: Agyana Wamagi के लिए ये बेहद प्रतीकात्मक दिन शांति के तहत बढ़ाया गया। फ्रंट बेंच में बैठकर उन्होंने दिन की संसदीय कार्यवाही की अध्यक्षता की।
2: PMQT members.
1: सांसदों के सामने उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित प्रश्नों के जवाब दिए, जो राष्ट्रीय महत्व के कई समसामयिक मुद्दों से संबंधित थे।
3: It's a great honor and privilege to host the first PQB631 of this PMQT to the first female DPM and acting Prime Minister of our Republic, B631.
2: Thank you. Third member for Port Louis North and Mont Island.
4: Thank you, Madam Speaker. Since this will be my first speaker address to the DPM, please allow me to address my sincere congratulations to Honorable Nawamari for her promotion.
1: PMQT के अंत में उन्होंने इस अनुभव को business as usual बताया।
5: Business as usual,
6: c'est une responsabilité que vous pouvez
5: assumer selon mes possibilités, mes moyens.
1: Ariana Wamagi अपने मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
5: On connaît encore trois questions là, donc questions posées par les parlementaires pour mon ministère donc matin.
1: PMQT के बाद कई सांसदों ने उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। ये संसद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले अनुभव के बाद समर्थन का एक संकेत माना गया।
0: अगियान नवामागी ने आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान 6 सवालों के जवाब दिए। ये सवाल ड्रग की जब्ती, रोड्रिक्स के मौसम संबंधी आंकड़ों और सड़क सुरक्षा से जुड़े थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार सड़क पर खतरनाक व्यवहारों के खिलाफ उपायों को और मजबूत कर रही है। एक बार फिर करुणा लालू को सुनते हैं।
3: B631.

0: प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान पहला प्रश्न रॉड्रिक्स के लिए मौसम और जलवायु संबंधी डेटा की उपलब्धता पर आधारित रहा। आगया नावामागी ने रॉड्रिक्स की जनता को सूचित करने के लिए पहले से मौजूद व्यवस्था का उल्लेख किया। गंभीर मौसम परिस्थितियों के लिए एक प्रोटोकॉल भी पाया जाता है।
1: Early warning bulletins related to severe weather conditions such as heavy torrential rainfall, strong winds, heavy swells, tropical cyclones and tsunamis are issued by the MMS for Rodrigues when the island is exposed to such risks.
0: 1 जनवरी 2026 से 7 मई तक सड़क दुर्घटनाओं में 51 लोगों की मौत हुई है। बिना इरादे की हत्या के 37 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें एक चालक भी शामिल हैं जो नशीले पदार्थों के प्रभाव में ड्राइविंग के लिए वर्तमान में जेल में बंद हैं।
1: It has been decided last week to amend the penalty point system by increasing from 3 to 6 points to 5 to 10 points for those using telephone while driving.
0: अंतरिम प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को हवाई अड्डे पर 16 किलो कैनाबिस और कैनाबिस रेजिन की जब्ती के बारे में भी जानकारी दी। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक फ्रांसीसी नागरिक और 2 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। पुलिस क्वार्टर्स के संबंध में 608 आवासों में से 545 में लोग रह रहे हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नए पुलिस क्वार्टर्स के निर्माण की कोई योजना फिलहाल नहीं है।
2: स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकुनगुनिया, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए पहले ही संचालन योजनाएं तैयार कर ली हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान ये बयान दिया। मंत्री अनिल बेचू ने पुष्टि किए गए मामलों के प्रबंधन और रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिन 6 लोगों की मृत्यु हुई वे इस बीमारी के गंभीर रूप से पीड़ित थे। और हंटा वायरस पर पूछे गए एक अतिरिक्त प्रश्न के जवाब में मंत्री अनिल बेचू ने कहा कि मॉरिशस के पास इससे निपटने के लिए एक तैयारी योजना मौजूद है। आस्था गोबिन चितामन को सुनते हैं।
3: स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने देश में फैल रही संक्रामक बीमारियों के मामलों पर जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक चिकुनगुनिया के 2816 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 102 मामले अभी भी सक्रिय हैं। डेंगू का एक मामला सामने आया, 5 इम्पोर्टेड मामले रहे, सब मरीज ठीक हो गए हैं। लेप्टोस्पायरोसिस के 21 मामले सामने आए, 6 मरीजों की मौत हुई, सभी 6 मरीजों को पहले से स्वास्थ्य परेशानियां थी। एमपॉक्स के 2 मामले सामने आए, 1 स्थानीय और 1 विदेशी, दोनों व्यक्ति मारागास्कर से मॉरिशस लौटे थे। दोनों का स्वास्थ्य ठीक है, उनके किसी भी करीबी व्यक्ति में इन्फेक्शन नहीं पाया गया।
4: Both have recovered. Their immediate contacts have been followed up, and none have shown any signs of infection.
3: स्वास्थ्य मंत्री ने इन बीमारियों से निपटने के लिए मंत्रालय की राष्ट्रीय रणनीति पर भी जानकारी दी।
4: Summarized, our strategy includes enhanced surveillance of suspected and confirmed cases, rapid reporting from hospital, clinics and laboratories, early clinical recognition by doctors and nurses, immediate treatment protocols, audit of deaths and severe cases to identify preventable factors, strengthening of laboratory diagnosis including timely testing, rodent control, environmental sanitation in affected areas.
3: अनिल बेचू ने कहा कि सभी इलाकाई अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के अलग इलाज और देखभाल की व्यवस्था मौजूद है। उन्होंने इन बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में नागरिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। इस संसदीय सत्र के दौरान विपक्ष नेता जुली रोंगो ने कई अतिरिक्त प्रश्न भी किए।
5: What specific factors are contributing to that high rate of death?
3: स्वास्थ्य मंत्री ने मॉरिशस और रीयूनियन टापू में दर्ज लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों की तुलना भी की। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में इस बीमारी का अधिक गंभीर रूप फैल रहा है और मृत्यु दर पर अन्य कई कारण भी असर डालते हैं।

0: comorbidities. Mauritius has a high burden of diabetes compared to Réunion Island. Chronic kidney disease, cardiovascular disease, and obesity. These conditions may worsen outcomes in severe infectious diseases, including
1: एक अन्य अतिरिक्त सवाल के जवाब में मंत्री अनिल बेचू ने डेंगू, चिकुनगुनिया और एमपॉक्स से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार योजनाओं की भी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि चिकुनगुनिया और डेंगू के मामलों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्यूमिगेशन के लिए रासायनिक उत्पादों के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि मच्छरों में अब इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है।
2: Has put a preparedness plan particularly at borders so that they are properly screened to avoid having any cases in Mauritius.
0: My ministry is maintaining vigilance through surveillance, clinical awareness, coordination with public health and environment services. And we are in contact with the international organization WHO and COI also. They are trying to give us all type of help. And in case of any case, if you come, is it a doubt, then of course we have got the National Institute for Communicable Disease, a laboratory in South Africa, and we passed there in Madagascar. We have got contact with them. We'll be going to send the urine for inspection and all.
3: और जैसा कि हमने कहा था, एक नया अफ्रीका ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकजुट और ज्यादा कारगर, ये संदेश आज नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन समारोह में एकत्रित लगभग 40 राष्ट्र और सरकारी नेताओं द्वारा विश्व को दिया गया। ज्यादा जानकारी एक बार फिर आस्था गोविंद चितामन के साथ।
1: अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 का आधिकारिक उद्घाटन मंगलवार सुबह नैरोबी के केन्याटा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है नवाचार और विकास के लिए एक मजबूत अफ्रीका। इस बड़े सम्मेलन में लगभग 40 देशों के राष्ट्रपति और सरकार के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल हैं। सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम का स्वागत किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों और राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। अपने उद्घाटन संबोधन में राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अफ्रीकी देशों के बीच अधिक एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि अफ्रीका आर्थिक और जलवायु भू राजनीतिक चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सके।
4: The times before us demand stronger cooperation, renewed multilateralism and partnerships grounded not on hierarchy but in sovereign equality, mutual respect and shared responsibility. Enduring partnerships must not be built on dependency, but on sovereign equality. Not on aid or charity, but on mutually beneficial investments.
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने कहा कि अफ्रीका का आर्थिक परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फ्रांस आधारभूत ढांचा, ऊर्जा और नवाचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अफ्रीका के साथ सहयोग जारी रखेगा। इमानुएल माक्रों ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका को स्थायी सीट दिए जाने के समर्थन को भी दोहराया।
5: Qui regarde avec lucidité le passé, qui veut réinventer la relation monétaire et économique, qui veut investir dans le sport, dans les industries culturelles et créatives, dans le co-investissement avec le continent, et qui, avec respect, veut être aux côtés de l'Afrique pour son propre agenda. Et donc la relation entre l'Afrique, elle est fondée en effet sur la lucidité, le courage, le respect et une volonté d'avoir au fond un agenda partagé.
1: यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अफ्रीकी देशों को अपने आंतरिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा, ताकि विकास की गति तेज हो और आर्थिक मजबूती बढ़ सके।
6: अफ्रीका एस एट द लीडरशिप इन सिक्योरिंग द सिविली कमिटमेंट टू एक्सपेंड द लेंडिंग पावर ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, टू मोबिलाइज प्राइवेट कैपिटल एट स्केल एंड टू डिलीवर रिलीफ from the debt burden crushing developing economies. It is African leadership through the African

0: African Development Bank that is advancing a bold vision to reform the continental's financial architecture from within, mobilizing African resources for African priorities and prosperity.
1: अफ्रीकन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने भी उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्रीय एकीकरण और अफ्रीका में विकास के नए अवसरों पर जोर दिया। अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 अफ्रीका और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदार देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सम्मेलन के अंत में नैरोबी डिक्लेरेशन अपनाए जाने की उम्मीद है, जो एक अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली अफ्रीका की दिशा तय करेगा।
2: सीबी के 25% उपभोक्ता यानी लगभग 1,28,000 परिवार बिजली दरों में 15% की बढ़ोतरी से प्रभावित नहीं हुए हैं। ये जानकारी मंत्री पत्रिका सेवादेन ने आज दोपहर बाद राष्ट्रीय सभा में दी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और सीबी मध्य पूर्व में जारी युद्ध के सीधे प्रभावों से सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए सभी प्रयासों में जुटे हुए हैं। उनको सुनते हैं।
3: Si le CEB avait choisi de répercuter l'intégralité de la hausse du coût de fuel load sur les consommateurs, le tarif d'électricité aurait dû augmenter d'environ 25%. Ceci n'a pas été le cas. Malgré la situation financière extrêmement tendue, le gouvernement et le CEB ont veillé à protéger les catégories les plus faibles, les plus vulnérables de la population, ainsi que les petites entreprises. Près de 128 000 familles clients du CEB, incluant les 8 000 bénéficiaires des kits photovoltaïques, ne seront pas affectés par la hausse tarifaire. Ces mesures concernent principalement les ménages enregistrés au Social Register of Mortgages. Au total, Monsieur le Vice-président, 25% de la clientèle du CEB bénéficiera d'un mécanisme de protection contre la hausse des tarifs.
2: भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने आज दोपहर बाद राष्ट्रीय सभा में दिए गए एक बयान में एक्स सीएचए घरों में अस्बेस्टस की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आंकड़ों में असंगति और पुनर्वास के लिए पात्रता संबंधी बाधाओं जैसी समस्याओं के कारण अब तक ठोस कदम उठाना संभव नहीं हो पाया है। शकील मोहम्मद ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कई उपायों को आगे बढ़ाने की बात कही। प्लेनलोजा स्थित सेंट्रल सप्लाईज डिवीजन, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के भंडारण केंद्र के रूप में कार्य करता है, को देश के मध्य भाग में स्थित एक नई इमारत में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही कापमालोगे और बेलिया में स्थित दो नई इमारतों का भी इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। ये कदम राष्ट्रीय सभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी की दवाइयों के भंडारण संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद उठाया गया है। इसके अलावा रामिटोरिया के अनुसार इस रिपोर्ट का दुरुपयोग राजनीतिक और जनता को लुभाने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष आद्रिया जुवाल द्वारा किया गया। इसी संदर्भ में रामिटोरिया ने पीएसी के 4 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक बयान जारी किया। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: हर साल स्वास्थ्य मंत्रालय 2 बिलियन रुपए से ज्यादा की दवाइयां और मेडिकल सामान खरीदता है। ऐसे में इन दवाओं को सही तरीके से संभालना और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इस काम में दवाओं की एक्सपायरी डेट पर लगातार नजर रखनी होती है, साथ ही खराब या एक्सपायर्ड दवाओं को अलग सुरक्षित जगह पर रखना भी जरूरी होता है। प्लेनलोजा में स्थित पुराना गोदाम 1965 से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब ये काफी पुराना और जर्जर हो चुका है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं और मेडिकल सामग्री को नए और बेहतर गोदाम में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की एक्टिंग डायरेक्टर बीबी वहीदा गोपी बताती हैं, प्लेनलोजा का सेंट्रल सप्लाई डिवीजन और कास्टेल का विभाग एक इकाई तले संगठित होने वाले हैं। हमने कापमालोगे और बेलिया में जगहों की पहचान कर ली है। ये नए मूल ढांचे हैं, वहाँ दवाओं को रखा जाएगा।
4: Là-bas, et ça va être si là, il me fait arranger et c'est en bonne condition.
1: 23 अप्रैल को

0: वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष अद्रियन जुवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के दवा गोदामों पर एक विशेष रिपोर्ट पेश की थी। 2021 से 2024 तक की ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित इस दस्तावेज में कई कमियों का जिक्र किया गया है, जैसे दवाओं को सही स्थिति में न रखना, बिजली की समस्या, एक्सपायर्ड दवाओं की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था में कमी। लेकिन 10 मई को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 5 सदस्यों ने एक बयान जारी किया। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और इससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य राम इतवारिया ने बताया,
1: Adrien Duval in faire, les films mettent en doute l'eau.
0: अद्रियन जुवाल ने लोगों के जहन में दवाओं की किस्म को लेकर संदेह पैदा किया है। पीएससी के अध्यक्ष होने के नाते ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग है। दवाओं का संचालन और भंडारण एक गंभीर मुद्दा है। किसी भी सरकार को इसका सही प्रबंधन करना चाहिए। इसके लिए सही जगह और सही परिस्थितियां होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक नए दवा भंडारण केंद्र के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मूल्यांकन का काम भी खत्म हो गया है।
2: हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जाता है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नर्सेज स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। वे दिन रात मरीजों की देखभाल कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मॉरिशस में स्वास्थ्य केंद्रों में इनकी कमी को देखते हुए विदेशी नर्सों की भर्ती की जा रही है। कुछ निजी क्लिनिकों में इनकी बढ़ती संख्या देखी जा सकती है। और विदेशी खबरों में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा शांति प्रस्ताव ठुकराए जाने को मूर्खता कहा। उन्होंने कहा कि अब वे इस कमजोर युद्ध विराम पर और समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ेगा। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और कभी कभी बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 20 और साहेली इलाकों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहेली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:30 बजे सूरज निकलेगा।

0: जिसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

जॉन कैनेडी स्ट्रीट निविया मिल थ्रियोले में 80 साल के 80 ईयर ओल्ड के श्री बुधन गंगा विसुन, जो हंसराज गंगा विसुन से ज़्यादा जाने जाते थे और हिंदी अध्यापक थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनकी पत्नी शेला ताकोरी गंगा विसुन के घर निविया मिल थ्रियोले से उठाकर टेमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। नंबर 32 कॉन्डोस लेन काथोबोन में 70 साल के 70 ईयर ओल्ड के श्री वेनी कावलिसा, जो सुनील से ज़्यादा जाने जाते थे

और जो पर्यटन मंत्रालय में उच्च अधिकारी थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भाई अमित कावलेसाव के घर नंबर 32 कॉन्डोस लेन काथोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM।

स्टेनली में 41 साल के 41-year-old के श्री कुमार रेशनंद संतोखिया, जो गॉस से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके भाई केनी संतोखिया के घर स्टेलियो टेलमार्क एवेन्यू खोते स्टेनले से उठाकर कोडेगार्ड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1:30 PM। शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल में 90 साल के 90-year-old के श्री भगवत गोकुल, जो अनिरुद्ध से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल से उठाकर बिकारा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। फ्लोरिडा लेन तेरूज में 76 साल के 76-year-old के श्री भरत हीरामन, जो जगदीश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर फ्लोरिडा लेन तेरूज से उठाकर वामौशों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमरो एट 11 AM। पावे रोड पिचराफ्रे में 72 साल के 72-year-old के श्री ज्ञानदत्त भोला, जो ज्ञानदत्त से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी नलिनी भोला के घर पावे रोड पिचराफ्रे से उठाकर मोमास्काल पिचराफ्रे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1:30 PM। नंबर 31 रू सेंट फामी सेंट क्वा में 66 साल के 66-year-old के श्री गणेश्वर नेवुल, जो रामेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भाई मनोज नेवुल के घर नंबर 31 रू सेंट फामी सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भूले वाले दे प्रेत्र की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। इंग्लैंड में 73 साल के 73-year-old के श्री सूर्यदेव रिमल, जो सुरेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी पत्नी तारा रिमल के घर सरे इंग्लैंड से उठाकर एमिताज रोड वॉकिंग इंग्लैंड का किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट नून। श्रीमेलागर रोजबेल में 83 साल की 83-year-old की मिसेस ताहिरा सोमाली, जो ताहिरा से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज रात 8:30 बजे उनके बेटे इरफान मुडाबकस के घर शुमेलागा रोजबेल से उठाकर रोजबेल का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

马里修斯广播电台听众朋友晚上好，欢迎收听音乐时光，下面就让我们来开启今天的节目。

मंजा चला पड़ा।

सादर प्रणाम दिव्या सज्जनों, मंगलमय संध्या की पावन बेला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं भक्तिमय कार्यक्रम भजरे प्रभु का नाम में। मैं हूं दिविना और हम सभी प्रभु भक्ति, श्रद्धा, संगीत तथा सकारात्मक ऊर्जा के इस दिव्य सफर में साथ रहेंगे। वैसे मंगलवार का यह शुभ दिन समर्पित करते हैं संकट मोचन भक्तवत्सल अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी को। वैसे कहा जाता है, जहाँ भक्ति में सच्चाई होती है वहाँ प्रभु स्वयं आकर भक्त का हाथ थाम लेते हैं। तो आइए जीवन की सभी चिंताओं को कुछ क्षणों के लिए विराम दें तथा प्रभु के चरणों में अपना मन समर्पित करें। और पहला भजन जो है गणेश वंदना है।

श्रोताओ, जिस मन में राम बसते हैं वहां भय तथा दुख कभी टिक नहीं सकते। जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि विश्वास अडिग हो तो हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं कि सेवा, समर्पण तथा साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।

आप सुन रहे हैं भजने प्रभु का नाम तथा वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है AM2 रेडियो मॉरिशस पर। मंगलवार की रात में जब हनुमान जी का स्मरण किया जाता है तो मन को विशेष शांति तथा शक्ति प्राप्त होती है। राम नाम की ज्योति जलाकर मन के अंधियारे दूर भगाओ, प्रभु की भक्ति में मन लगाकर जीवन अपना सफल बनाओ। प्रेषोताओं, कभी कभी जीवन की भागदौर में हम स्वयं को भूल जाते हैं, परंतु कुछ पल प्रभु के नाम के साथ बिताने से मन फिर से ऊर्जा तथा आशा से भर उठता है। अगले भजन का आनंद लेते हैं।

जहाँ श्रोताओं, भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि मन की सच्चाई तथा अच्छे कर्मों का दूसरा नाम है। यदि हमारे विचार पवित्र हो तथा हृदय में दया हो तो वही सच्ची आराधना कहलाती है। आज के इस मंगलमय अवसर पर आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा तथा सकारात्मकता को स्थान देंगे।

श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा है कि आज का यह भक्तिमय संगम आपके मन को शांति तथा नई ऊर्जा प्रदान कर पाया होगा। जाते जाते हम यही कहेंगे, प्रभु का नाम वह दीप है जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। इसी मंगल कामना के साथ दीजिए हमें अनुमति आपके आने वाला हर दिन हर रात्रि सुख शांति तथा प्रभु की कृपा से परिपूर्ण हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली, शुभ रात्रि।

ये दिल की दुनिया को मुअत्तर करने के लिए हाजिर खिदमत हैं महफिल शब प्रोग्राम के साथ निसार अख्तर। आप तमाम लोगों का दिले बेकरां से इस्तकबाल करता है। उम्मीद है ये महफिल आप सामईन की तवज्जो का बाइस बनेगी। आइए सामईन इस बज़्म शबाना का आगाज करते हैं इस खूबसूरत कलाम के साथ। मुलायजा फरमाइए।

मोहतरम सामईन, जब कोई मुसलमान ज़ियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा जाता है तो फरिश्ते रहमत के तोहफ़ों से उसका इस्तकबाल करते हैं। मदीना शहर मोहब्बत है, शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, तब से लेकर आज तक हर आशिक रसूल का दिल मदीने के लिए धड़कता है। इसीलिए शायर कहता है, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ऐ शहर मदीना, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ऐ शहर मदीना, गो हाज़री बार बार हो हसरत नहीं जाती।

चमक रहा है मदीना गुलाब जैसा, चमक रहा है मदीना गुलाब जैसा, नबी का रोज़ा भी रश्के माहताब जैसा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी शेर के साथ हमारा आज का शबाना प्रोग्राम महफिल शब अपने अख्तिताम की जानिब रवां दवा है। माना महफिल मुख्तसर थी, मगर यकीन मानिए हर लम्हा आपकी मौजूदगी से ख़ास रहा। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर पसंद फरमाया होगा। अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। नेक ख्वाहिशात के साथ हम आपसे रुख्सत हो रहे हैं। अगले मंगल की शब फिर आपसे मुलाकात होगी। शब बख़ैर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: नमस्ते उनके सब श्रोता लोग के
2: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम में तह स्वागत करते हैं। जब भोजपुरी तड़का तोहर कार्यक्रम है और ये अभी 9:04 होल बा, अभी से 11 बजे लेकर हमने के साथ रही, हमने संगे संगे रह जा और ये भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तोहर नाम करब जा। और ये अभी हमने भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जो चलता हमेशा करीते, आज भी तोह लोग 5251700 पर हमने के मैसेज भेजा जा या फिर 9 2 9 9 5 पर 4028085 पर हमने के टेलीफोन सक बजा करे और ये बोलिया जा हमने के कौन गाना सुनने खोजा था वजा। तो हर पसंद के गाना हमने के भोजपुरी तड़का में शामिल करब जा और ई तड़का के स्वाद बढ़ावब जा। चला अभी पहला गाना तो लोग के पपूरी गाना सुनवाब जा, भोजपुरी बॉयज के कलाकार लोग के गावल और ये गाना में कई गो गाना के संगम बा। चला सुनी जा और एक एंजॉय करी जा। चला, चला।

भी तड़का में तड़का लगाया जाए तो हर फरमाइश संगे और अभी हमने प्रस्तुत कर अब जा बहल गौरी जी के गावल और सुक्रीम गौरी जी के संगे संगे गावल गाना करम जरूर धमा दुआ चला ही गाना हमने सुनी जा और री गाना हमने विशाल जी के पसीन पर तोहरा सुनवावत है जा विशाल जी रहे लन्न फ्लाक और री वहाँ से गाना मंगले वन मोचिदा के मीरा जी के नाम तो चला सुनी जा हमने गाना में कौन सी बा आगे के जिन शब्द रहता हल इमें खूब उम्दा तरह से प्रस्तुत करल बा

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का
2: तो भोजपुरी तड़का में सुना था जहाँ हमने दामाद के कितना तरह से सिफारस करल जला चला तो दामाद जी के तक यही प्रकार से स्वागत हो हमके जो समाज बा एकर में हमके परिवार में। चलो अभी 9:15 होल बा और बढ़ते चलब जा कलकत्ता से निकलल जो जहाज उदहाज के मॉरिशस में हमने देखा जा। सरिता बुद्ध जी के एल्बम के ये गाना है और ये गाना हमने से मंगल हवन साझी जी रोज हिल से चला उनका बगल से उनका संगतियालो के नाम करी जाए गाना और ये सुनी जा। ई दहाज में कितना दर्द कितना पीड़ा कौन तरह से हमने के पूर्वज लोग सहते सहते आ रहा जा।

चला अब आगे बढ़ी जा, बढ़ते चली जा और प्रस्तुत करी जा सुनीता ननकू जी के गावल गाना। इस गाना हमने अमृता जी खातिर बजावत है जा पीतों के अमृता जी। गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर, अपन नातिन सोनिया और परी खातिर, और बेटा विशान और बहू मीनाक्षी तथा पूनम खातिर।

कृष्ण उखर जी के गावल गाना सुने थे जा अभी हमने और ये गाना हमने सुनवाए थे जा आत्माराम जी के पसंद पर आत्माराम जी गाना मंगले हवन सुदेवी जी खातिर बहन सुदेवी जी खातिर बहन ललिता बहन प्रभावती और बहन छोटी जी खातिर और यही गाना इसनु परिवार खातिर मंगले हवन आत्माराम जी बेलिया के

मामा और पापा और अगवा के लेके बहल गौरी और सुग्रीव गौरी जी के गावाली गाना हमने बजवाव थे जा अब्बू जी खातिर वाकवा से अब्बू जी गाना मंगले हवन आफिस असलम आयाज जायान जाहिरा रईस कालाचोती और अपन दोस्त अपी और उनकर पत्नी खातिर।

और अभी कुछ सुने जा हमने बड़का मामा, बड़का मामा गाना हमने सुना जा सुदेश बोजू जी के गावल, और ये गाना सब कोई पसंद करेला, और संगे संगे मीरा बाई जी पसंद करेला, मोदालबे ऐसे मीरा बाई

और गिरीश रूपचंद जी के गावल ये रोमांटिक नाना नानी के बारे में चला सुनी जा हमने तेहोश के शांति जी के पसंद पर दागोचे के उनकर पूरा मराठी परिवार खातिर अप्पा दागोचे के उनकर भगीना ओम खातिर गाना।

तो हम के गाना आगे बढ़ाओ अब जा। अभी हम के श्रोता से बात करत रली और ऐसा में हम के श्रोता के फरमाइश जल्दी जल्दी ले लेनी, उनका फरमाइश तो पूरी करबे करब जा। अभी चला सनी जा अभी पूर्णिमा फकी राजे के गावल एगो गाना और ये है एगो ललना। पूर्णिमा जी गाना मंगले हवन अपन दामाद रोशन दसोई जी के जन्मदिन के अवसर पर अभी काम करके आवत हवन। और ये अपन गुडलैंड के बेटी पिंकी कालियाचेती जी के जन्मदिन के अवसर पर तो इन लग के जन्मदिन बहुत मंगलमय रही। पूर्णिमा जी ई प्रार्थना करत हवन, ई आशीर्वाद देवत हवन और ये आशीर्वाद देवत हवन कि हमेशा सुखी रहियन, खूब तरक्की करियन उनकर लड़का लोग। पूरा फकीरा परिवार बगल से, दसोई परिवार बगल से और कालियाचेती परिवार बगल से पिंकी जी और रोशन जी के जन्मदिन के मंगल कामना हमने के पूरा टीम बगल से। चला सुनिजा पूर्णिमा फकीरा जी के गावल ई ललना, रोशन जी और पिंकी जी के नाम करी जा।

और भोजपुरी के कार्यक्रम तो हर नाम कर रहे थे जहाँ भी 9:46 हो बा और ये आगे मैडम तो हमने 11 लेके अभी जो गाना लेके आल है जा यहाँ विनोद शिवदत्त जी के गावल गीत भोजपुरी भाषा और भोजपुरी भाषा वाला गाना हमने ललिता जी के पसंद पर बजवात है जा उनकर बहन सुदेवी बहन ज्ञानी बहन देवीना खातिर छोटी जी खातिर प्रभावती जी हरीश जी और आत्मा राम जी खातिर सुखलाल मौसी खातिर और माला राम जवान जी खातिर

और ये गाना है उद्रदत्त पोकंजी के गावल गाना। ये गाना हमने से मंगले हवन तायाक से हमने के श्रोता रफीक मोहित जी और ये गाना मंगले हवन पर दोस्त शास्त्री बनोमाली जी खातिर मौत अबाके

फ़ोन्स के गायत्री जी के पसंद के गाना चलाई ला जा। गायत्री जी गाना मंगले हवन अपन बेटा अजय खातिर, अपन मामी कल्याणी मोहन जी खातिर, मेबग के अपन सखी गीता बाई जी खातिर, नुवेल फ़ोन्स के और लॉन्ग माउंटेन के अपन भाभी शकुंतला जी खातिर।

और चला अभी कुछ हमने सुना नयन जी के गावली को गीत सुनी जा और इस सुना नयन जी के गावली गाना हमने सुना थे जा सुनते रहो एल्बम से लेवल गली गाना हमने से राजन लक्ष्मण जी मंगले हवन और ये लाफ्टोगा से राजन लक्ष्मण जी गाना मंगले हवन अपन पत्नी माला जी खातिर बेटी प्रगति और प्रार्थना खातिर बहिन मानती खातिर अपन भगिनी उर्मिला तुलसी खातिर और ये वाशरी के पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर

रंभा राम तोहर जी के गावल रेशम के साड़ी गाना हमने बजावत है जा सुदेवी जी के पसंद पर उनकर बहिन ललिता जी खातिर कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवी ना मालेगा के राम रतन परिवार खातिर और ये गाना सुदेवी जी हमने के सब सब श्रोता लोग के नाम करत हवन।

और अब चला तनी चटनिया दाली ला जा हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में और कर चटकार बढ़ाई ला जा। ये गाना हमने से मीरा मोहन जी के गावल मंगले हवन फ्री कॉम्प्लेक्स से अनीता जी। मंगले हवन ये गाना अपन पूरा परिवार खातिर अपन सब संगतिया लोग खातिर और हमने के सब सुने वाला लोग खातिर बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी। चलत फ्लिक ऑन फ्लैक लिखते नहीं सन चटनी पहुंचा दे इलाजा मीरा मोहन जी के आवाज़ में।

मच्छी मरवा गाना चला सुनी जा हमने जय हरलाल जी के गावल और मच्छी मरवा के जीवन के बारे में तनसन सुनी जा ई गाना कल्याणी जी मंगले हवन हमने से मेबक के कल्याणी जी अपन भगिनी गायत्री जी के नाम करत हवन ई गाना उनकर बेटा अजय जी के नाम विलनुआ के भाभी सुनीता देवी दिन जी के नाम अपन बहिन बिंदु कालीचरण जी के नाम और अपन दोस्त के नाम

चले तेरी सर विदाई के गीत सुनी जा हमनी, और चंद्रदीप जी बुधन जी की आवाज में ये गाना सुन के हमनी उमा जी के पसीना तरह सुनवाला जा। फौजी साग से उमा जी चंद्रदीप जी बुधन जी के गावरी गाना मंगले हवन।

और अब सुना थे जी हमने बसंत सुपौल जी के गावल गाना यह दूल्हा राजा होला गाना। चलो दूल्हा राजा के बरियात में शामिल हो जाए लाजा हमने। और ये गाना हमने बजाओ था जब विवेक जी के पसीन पर, विवेक जी गाना मंगले हवन अक्षय के शादी के अवसर पर, उनकर शादी इस हफ्ते हुआ था, ये सप्ताहांत में हुआ था। तो चलो ये गाना हमने विवेक जी बगल से करे थे जा अक्षय जी के नाम।

बढ़े के बोलते हवा जाता बढ़ी जा हमनी सोना नयन जी की आवाज के गाना बगल और ये गाना हमनी से मंगले हवन बिहारी हरि प्रेम जी प्रियले से चला सुनी जा कौन फुलवा फूले ला तो रंग

गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर

अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने

संतोष महादेव जी के गावले को गाना चला सुनी जाओ। और ये गाना हमने पालमा के महेन जी के नाम करे थे, जो उन्हें करी फरमाइश, महेन जी के फरमाइश।

न धोखा दे के जाब न लाफरों जाब, अभी हम तोहर से विदा लेके जाब और अपन घरे जाब, मोरी सुई में जाब, बस विदा लेब। अब हम इस कार्यक्रम से हमनी के भोजपुरी तड़का में इतना भाग लेला जाए कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुणाल बाबूलाल के गावल ई गाना हमने सुनत है जा, और भोजपुरी बॉयज के ग्रुप के ई गाना है। गाना के संगे संगे हमने के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का समाप्त हुआ था। 11 बजे सुनिया जाए आज के सुनहरे पहल कार्यक्रम, पुराना गीत के कार्यक्रम प्रस्तुत करी नीतू शाह। आवत हला फिर मिलब जा, शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। एक बार फिर आपके नीतू आपके समक्ष रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और ये है सुनहरे पल कार्यक्रम। आइए आज आपको ले चली है यादों की दुनिया में एक ऐसे कलाकार से मिलवाते हैं, भले ही ना रहे लेकिन उनकी यादें तो हमेशा जीवित रहेंगी। आप थे सुनील दत्त।

हिंदी सिनेमा के उन महान कलाकारों में से थे जिन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं बल्कि अपनी इंसानियत, सिंप्लिसिटी और बड़े दिल से भी लोगों

के दिल जीते। उनका असली नाम बलराज दत्त था, लेकिन दुनिया उन्हें प्यार से सुनील दत्त के नाम से जानती है। बॉलीवुड में उनकी पहचान एक ऐसे एक्टर की थी जो हर किरदार में जान डाल देते थे, चाहे इमोशनल रोल हो, एक्शन हो, रोमांस हो या सीरियस सोशल मैसेज देने वाली फिल्म।

ने बहुत मुश्किलें देखी। देश के बंटवारे का दर्द उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में राज किया।

करियर के शुरुआती दिनों में सुनील दत्त रेडियो अनाउंसर के रूप में काम करते थे। रेडियो सेलन पर उनकी आवाज और उनका अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से हुई और धीरे धीरे उनका रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगा। उनकी पर्सनालिटी बहुत ग्रेसफुल थी, लंबा कद, गहरी आवाज और आंखों में एक अलग ही सिंसियरिटी नजर आती थी।

खान फिल्म मावा इंडिया से मिली। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस के बेटे का रोल निभाया था। फिल्म में उनकी एक्टिंग इतनी पावरफुल थी कि लोग उनके टैलेंट के फैन बन गए। इसी फिल्म के दौरान एक इंसिडेंट हुआ जहां शूटिंग के वक्त आग लग गई थी और सुनील

मिसेस सुनील दत्त की एक्टिंग स्टाइल बहुत नेचुरल और इमोशनल होती थी। वो ओवर एक्टिंग में यकीन नहीं रखते थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और आवाज की गहराई ही इमोशंस को इतनी खूबसूरती से बयां कर देती थी कि ऑडियंस खुद को उनके कैरेक्टर्स से कनेक्ट महसूस करती थी। वो स्क्रीन पर एक डिग्निफाइड और सिंसियर पर्सनालिटी लेकर आते थे। इसी वजह से उनके इमोशनल सीन्स लोगों के दिल छू जाते थे। सुनील दत्त ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी, जैसे साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, वक्त, पड़ोसन, रेशमा और शेरा वगैरह वगैरह। फिल्म पड़ोसन में उनका सिंपल और इनोसेंट कैरेक्टर आज भी लोगों को हंसाता है। वहीं मुझे जीने दो और रेशमा और शेरा जैसे सीरियस सिनेमा में उन्होंने अपनी एक्टिंग की गहराई दिखाई। उनकी वर्सटैलिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी।

एक्शन में उनका कॉमेडी टाइमिंग कमाल का था। किशोर कुमार और महमूद जैसे लेजेंड्स के बीच भी सुनील दत्त ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका सीधा साधा भोला कैरेक्टर ऑडियंस को बहुत ही पसंद आया और फिल्म हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन कॉमेडीज में शामिल हो गई। सुनील दत्त वैसे एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने मीनिंगफुल सिनेमा को सपोर्ट किया और ऐसी फिल्में बनाई जो समाज को एक मैसेज देती थी। उनकी फिल्म यादें एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म मानी जाती है जिसमें पूरी फिल्म लगभग सिर्फ उनके कैरेक्टर के आसपास घूमती है। ये उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस को दिखाता है।

0: गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। जब नरगिस कैंसर से लड़ रही थी, तब सुनील दत्त एक डिवोटेड हस्बैंड की तरह हमेशा उनके साथ खड़े रहे। नरगिस जी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने बच्चों और परिवार को संभाला। उनका अपने बेटे संजय दत्त के साथ रिश्ता भी बहुत गहरा था। मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। सुनील दत्त पॉलिटिक्स में भी आए और देश सेवा को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भी बना लिया। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने और उनके इमेज एक ऑनेस्ट और सॉफ्ट स्पोकन नेता की थी। वो हमेशा शांति, इंसानियत और यूनिटी की बात करते थे। उन्होंने कम्युनल हार्मनी और पीस के लिए भी कई पदयात्रा भी की।

उनकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा सुकून और गरिमा थी। वो बड़े सौर होने के बाद भी बहुत ही हम्बल और कहते हैं ना डाउन टू अर्थ थे। इंडस्ट्री में हर कोई उनकी इज्जत करता क्योंकि उन्होंने कभी अपनी सिंप्लिसिटी नहीं छोड़ी। सुनील दत्त एक ऐसे इंसान थे जो फेम के साथ साथ इंसानियत को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते थे। आज भी जब हिंदी सिनेमा के ग्रेटेस्ट एक्टर्स की बात होती है, सुनील दत्त का नाम बड़े अदब बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी फिल्में, उनकी आवाज, उनकी सिंप्लिसिटी और उनका बड़ा दिल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन इंसान, एक केयरिंग हस्बैंड, एक लविंग पिता और एक ट्रू जेंटलमैन थे। उनका जीवन ये सिखाता है कि असली ग्रेटनेस सिर्फ सक्सेस में नहीं बल्कि इंसानियत और अच्छाई में भी होती है। प्रणाम, शुभ रात्रि।

एक साथ धड़के हैं।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,